कलियों ने घूंघट खोले हर फूल पे भौरा डोले। मोहम्मद रफी जी आपको सुनाने वाले थे फ्रॉम द मूवी दिल ने फिर याद किया। मेरे बेचैन दिल को चैन तूने दिया शुक्रिया।

मेरे बेचैन दिल को चैन तूने दिया शुक्रिया। दिल कहे रुक जा रे रुक जा, यही पे कहीं जो बात इस जगह है कहीं पर नहीं। फ्रॉम द मूवी मन की आंखें से हम पेश करते हैं मोहम्मद रफी जी आपको सुनाने वाले हैं।

मन की आंखें, इसी फिल्म से हमने पेश किया है सुनने वालों। दिल कहे रुक जा रे रुक जा, मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले थे, और म्यूजिक दिए हैं लक्ष्मीकांत प्यारे लाल जी। देखा है तेरी आंखों में प्यार ही प्यार, मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले हैं। द टाइटल फ्रॉम द मूवी प्यार ही प्यार।

देखा है तेरी आंखों में प्यार ही प्यार बेशुमार। सुनने वालों, एक गीत हम चलाने वाले हैं आप सभी के वास्ते, और फिल्म का नाम है मर्यादा। इसी फिल्म से हम पेश करते हैं जुबा पे दर्द भरी दासता चली आई।

अभी आप सुन रहे थे सुबह पिदर्ड भरी दासता चली आई, बाहर आने से पहले हिजा चली आई। द मुए यानी द माइती मुकेश जी की आवाज़ में भी आप सुन रहे थे। भूले से मोहब्बत कर बैठा ना दा था बेचारा, दिल ही तो है

भूले से मोहब्बत कर बैठा, नादा था बेचारा, दिल ही तो है। फ्रॉम द मूवी दो रास्ते से हम पेश करते हैं दो रंग दुनिया के और दो रास्ते।

मैं ढूंढता हूँ जिनको रातों को ख्यालों में वो मुझको मिल सके ना सुबह के उजालों में। अभी आप सुन रहे थे द माइटी मुकेश जी की आवाज़ में। क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी हसरत छुपी रहे। फ्रॉम द मूवी इज्जत से हम पेश करते हैं सुनने वालों

क्या मिलिए ऐसे लोगों से, अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी जी की आवाज़ में फ्रॉम द मूवी इज्जत से हमने पेश किए है सुनने वालों। धीरे धीरे मचल ऐ दिले बेकरार, कोई आता है।

0: चलो मुंह हाथ धो लो, याद नहीं आज दावत पे जाने।
1: अभी तो बहुत वक्त है, नींद अधूरा रह जाए तो अच्छा नहीं होगा।
0: मुझे बहुत दुख होता है, मैंने अच्छी तरह से गाना सीखा।
1: जितना सीखा उतना ही बहुत है मेरे लिए अरुणा, उम्मीद से ज्यादा मिल जाए तो ऐसा मालूम होता है जैसे आदमी उसके लायक ही।
0: मैं बताऊं ऐसी बातें तुमने कहां से सीखी?
1: कहां से सीखी?
0: सीखी भी नहीं, चुराई है मेरी बातों से।

धीरे धीरे मचल ए दिले बेकरार कोई आता है। तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा। लता जी आपको सुनाने वाले हैं, चलिए मिलकर सुनते हैं।

मेरा साया साथ होगा, अभी आप सुन रहे थे तू जहाँ जहाँ चलेगा। जरा सा हम देखे तो चंद्रमुखी है फिल्म का नाम, इसी फिल्म से द टाइटल हम पेश करते हैं आप सभी के वास्ते।

नए निका चैन चुरा कर ले गए, कर गई नींद हराम। चंद्रमा का मुख था उसका, चंद्रमुखी था नाम। मुकेश जी आपको सुनाने वाले थे, सुनने वालों, महेंद्र कपूर जी और आशा जी आपको मिलकर सुनाने वाले हैं। इन हवाओं में, इन फिजाओं में तुझको मेरा प्यार पुकारे।

अभी आप सुन रहे थे इन हवाओं में इन फिजाओं में, आशा गीत जी के साथ में महेंद्र कपूर जी आपको सुनाने वाले थे। दिन है बहार के तेरे मेरे इकरार के, दिल के सहारे आजा प्यार करे। फ्रॉम द मूवी वक्त से हम पेश करते हैं एक बार फिर से आशा जी के साथ में महेंद्र कपूर जी आपको सुनाने वाले हैं।

अभी आप सुन रहे थे दिन है बहार के तेरे मेरे इकरार के, दिल के सहारे आजा प्यार करे। फरार है फिल्म का नाम और इसी फिल्म से हम पेश करते हैं जिंदगी क्या है यारों की बारात।

फ्रॉम द मूवी फरार से हमने पेश किए हैं द माइती मुकेश जी की आवाज़ में जिंदगी क्या है यारों की बारात सहमों की बारात। एक हसरत थी कि आंचल का मुझे प्यार मिले

एक हसरत थी कि आंचल का मुझे प्यार मिले। अभी आप सुन रहे थे द माइटी मुकेश जी की आवाज़ में फ्रॉम द मूवी जिंदगी और तूफान। सुनने वालों, एक बार फिर से फिल्म फरार से हम पेश करते हैं एक बहुत सा सुंदर गीत है, ये संसार है एक नदिया। क्षमा करना सुनने वालों, यानी फरार नहीं, रफ्तार है फिल्म का नाम। चलिए मिलकर सुनते हैं।

अभी आप सुन रहे थे संसार है एक नदिया फ्रॉम द मूवी रफ्तार से हमने पेश की है मुकेश जी की आवाज़ में। सुनने वालों, बोल रे कठपुतली डोरी कौन संग बांधी, लता जी आपको सुनाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी कठपुतली से हम पेश करते हैं।

बोल रे कठपुतली डोरी कौन संग बांधी, फ्रॉम द मूवी कठपुतली से हमने पेश किया है। लता जी आपको सुनाने वाले थे। सुनने वालों, तेरा जलवा जिसने देखा वो तेरा हो गया, मैं हो गई किसी की कोई मेरा हो गया। लता जी आपको सुनाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी उजाला से। चलिए मिलकर सुनते हैं।

तेरा जलवा जिसने देखा वो तेरा हो गया। अभी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी उजाला से हमने पेश किया है, सुनने वालों लता जी आपको सुनाने वाले थे। दिन सारा गुजारा तोरे अंगना, फ्रॉम द मूवी जंगली से आप सुनेंगे लता जी के साथ में, मोहम्मद रफी जी आपको सुनाने वाले हैं।

दिन सारा गुजारा दोहरे अंगना। अभी आप सुन रहे थे लता गी जी के साथ में, मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले थे फ्रॉम द मूवी जंगली से हमने पेश किए हैं। सुनने वालों, आ तू आ जरा दिल में आ, फ्रॉम द मूवी फूलों की सेत से हम पेश करते हैं लता जी के साथ में। मुकेश जी आपको सुनाने वाले हैं।

फूलों की से छह फिल्म कराम इसी फिल्म से हमने पेश किए हैं। लता जी के साथ में मुकेश जी आपको सुनाने वाले थे आतुआ जरा दिल में आ अय्या सुकु सुकु। आई आई

अय्या करूँ मैं क्या, सुकू सुकू अभी आप सुन रहे थे सुनने वालों, फ्रॉम द मूवी जंगली से हमने पेश किए हैं, मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले थे। इस रंग बदलती दुनिया में इंसान की नीयत ठीक नहीं, निकला ना करो तुम सज धज के। मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी राजकुमार से हम पेश करते हैं सुनने वालों, और ये गीत खास करके मांग की ये है मून जी बोध जी, अपनी प्यारी प्यारी प्रीतमा माला जी के वास्ते बहुत बहुत प्यार और मोहब्बत के साथ।

कांधे से हटा लो सर अपना, ये प्यार मोहब्बत रहने दो। कांधे से हटा लो सर अपना, ये प्यार मोहब्बत रहने दो।

फिल्म का नाम है सीमा। इसी फिल्म से हम पेश करते हैं जब ये दिल उदास होता है जाने कौन आस पास होता है। मोहम्मद रफी जी के साथ में शारदा जी आपको सुनाने वाले हैं, चलिए मिलकर सुनते हैं।

अभी आप सुन रहे थे, जब भी ये दिल उदास होता है जाने कौन आस पास होता है, शाडा के साथ में मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले थे। फ्रॉम द मूवी सीमा से हमने पेश किया है। सुनने वालों, हमने अपना सब कुछ खोया प्यार तेरा पाने को, सरस्वती चंद्र है फिल्म का नाम। चलिए इसी फिल्म से हम पेश करते हैं मुकेश जी की आवाज़ में।

हमने अपना सब कुछ खोया प्यार तेरा पाने को। दमायती मुकेश जी की आवाज़ में भी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी सरस्वती चंद्र से हमने पेश किए हैं। सुनने वालों, मुझे तुमसे कुछ भी न चाहिए, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। कन्हैया है फिल्म का नाम। एक बार फिर से मुकेश जी आपको सुनाने वाले हैं।

मुझे तुमसे कुछ भी ना चाहिए, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। अभी आप सुन रहे थे नमायती मुकेश जी की आवाज़ में, फ्रॉम द मूवी कन्हैया से हमने पेश किए हैं। तेरी याद दिल से भुलाने चला हूँ, फिल्म का नाम है हरियाली और रास्ता।

0: शाद दिल से भुलाने चला हूँ कि खुद अपनी हस्ती मिटाने चला हूँ। फ्रॉम द मूवी हरियाली और रास्ता से हमने पेश किए हैं सुनने वालों, गायत है फिल्म का नाम। इसी फिल्म से हम पेश करते हैं, दिन ढल जाए हाय रात न जाए, तू तो ना आए तेरी याद सताए। मोहम्मद रफी जी आपको सुनाने वाले हैं।
1: लेकिन जब उतरता है

दिन ढल जाए हाय रात न जाए, तू तो ना आए तेरी याद सताए। मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले थे, फ्रॉम द मूवी गाइड से हमने पेश की है। सुनने वालों, हमने जो देखे सपने सच हो गए वो अपने, परिवार है फिल्म का नाम। इसी फिल्म से हम पेश करते हैं आप सभी के वास्ते लता जी के साथ में महेंद्र कपूर जी आपको सुनाने वाले हैं।

हमने जो देखे सपने सच हो गए वो अपने भी आप सुन रहे थे। फ्रॉम द मूवी परिवार से हमने पेश किए हैं सुनने वालों, और आपको सुनाने वाले थे लता जी के साथ में महेंद्र कपूर जी। तेरे दिल में जरा सी जगह अगर मिले, मोहम्मद रफ़ी के साथ में लता जी आपको सुनाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी अनोखी अदा।

0: राकेश नमस्ते, ये लव लेटर आपने मेरे नाम लिखा है?
1: लाइए ना।
0: ये अब सीधे अंकल के पास ही मिलेगा।

तेरे दिल में जरा सी जगह अगर मिले, अभी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी अनोखी, अदा से हमने पेश किए हैं सुनने वालों। तेरे नैन मेरे नैन देखते रहे, मोहम्मद रफी जी के साथ में लता जी आपको सुनाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी रखवाला से।

दिल ने दिल से न जाने क्या कहा, तेरे नैन मेरे नैन देखते रहे। अभी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी रखवाला, से हमने पेश की है मोहम्मद रफ़ी जी के साथ में, लता जी आपको सुनाने वाले थे तुमने मुझे देखा होकर मेहरबा। मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी तीसरी मंजिल से आप सुनेंगे।

ने मुझे देखा होकर मेहरबा, तीसरी मंजिल से हमने पेश की है सुनने वालों, फ्रॉम द यानि मोहम्मद रफ़ी जी की आवाज़ में भी आप सुन रहे थे। चुप गए सारे नज़ारे, ओए क्या बात हो गई। मोहम्मद रफ़ी जी के साथ में लता जी आपको सुनाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी दो रास्ते से।

चुक गए सारे नजारे, ओए क्या बात हो गई। अभी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी दो रास्ते से, लता जी के साथ में मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले थे। गोरे रंग पे ना इतना गुमान कर, गोरा रंग दो दिन में ढल जाएगा।

मित्रों, मैं आपको इस भजन के माध्यम से कुछ बतलाना चाहता हूँ। जो लोग मंदिर जाते हैं, मतलब सभी नहीं, कुछ लोग जो मंदिर जाते हैं, तीर्थ करते हैं और कहाँ कहाँ ये पूजा स्थल पर जाते भी हैं, तो उन लोगों से हम ये कहना चाहता हूँ कि इस भजन को सुनिए। अगर आप इसी श्रेणी में पढ़ते हैं, लागू हैं, तो जरूर सुधर जाइए। और अगर आप इस लाइन में नहीं हैं, तो आगे चलते रहो, चलते रहो।

मित्रों, आत्मविश्वास, भरोसा अपने आप पर और दृढ़ निश्चय, प्रेरणा और समर्पण के साथ अपने आप पर और अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखें। और यदि आपको विश्वास है कि सभी चीज़ों संभव है और आप इसके लिए प्रयास करते हैं तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। आप लगभग कभी नहीं गिरेंगे या निराश होंगे।

साथियों, भरोसा एक रबर यानी एक इलास्टिक की तरह है जिसे दो लोग खींचते हैं। जब तक दोनों पकड़े रहते हैं तब तक वे खुश रहते हैं, लेकिन जैसे ही उनमें से एक चला जाता है तो दूसरे को भयानक दर्द होता है। इसलिए ये अति अधिक सलाह दी जाती है मित्रों कि किसी पर भी भरोसा ना करे या उससे कोई वादा ना करे, और करना है तो समझ बूझ कर जानो किस से वादा और किस पे भरोसा करते हैं। मित्रों, क्या आप कृपया इसे सोच समझ कर अपने जीवन में लागू करेंगे?

साथियों, जब हम अपने चारों ओर निरंतर अशांति और प्रजातीय घृणा देखते हैं तो शांति के बारे में बात करना भी व्यर्थ लगता है। और ये संतोष की स्थिति है, वे हमें शांति का एक निजी स्रोत खोजने के लिए मजबूर करता है, ताकि हम इससे शांति पाकर हमेशा शांति से रह सके। फूलों को देखो मित्रों, वो भी लगातार परेशान परिस्थितियों में रहते हैं। उन्हें इस भौतिक संसार का प्रदूषण अपने साथ ले जाना पड़ता है, लेकिन वे जहां भी पाए जाते हैं, चाहे वे व्यस्त सड़क के किनारे, कांटों के बीच, दलदल के पास हो, या कभी कभी गोबर के ढेर पर भी, वो सुगंध के साथ हमेशा सुंदर खिलते रहते हैं और अपनी खुशबू फैलाते रहते हैं। तो मित्रों, फूलों का प्रयोग हर अवसर पर किया जाता है। फूल शांति के प्रतीक है, ये उसका स्वभाव है। और साथियों, हम भी फूलों की तरह है, हम भगवान के बगीचे के फूल हैं। हम भी दैनिक प्रसिद्धि के इस सांसारिक असीमित बगीचे में प्रदूषित और बहुत परेशान और अप्रिय स्थितियों का सामना करना पड़ता है। और मित्रों, फूलों के रूप में हमसे अपेक्षा की जाती है कि हम अपनी प्राकृतिक शांति की स्थिति में रहकर हर जगह अपनी खुशबू फैलाएं। मित्रों, कोशिश करते रहना। ऐ मेरे कृष्णा, मेरे अंतर्यामी, तुझसे अब क्या कहूँ मैं। सबों से दुखी और हार कर अब आकर तेरे पास बैठा हूँ।

एक बार फिर यहाँ से आपको हार्दिक से स्वागत किया जाता है। इस बार यहाँ से आपके स्पॉन्सर भजन कार्यक्रम आरंभ करने को जा रही हूँ। वक्रतुंड महाकाया सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। आकाशवाणी रेडियो फाउन के सुनने वालों, प्रिय आत्माओं, प्रिय भक्त जनों, स्वीकार कीजिए सेविका शांता की प्यार भरी नमस्कार। आज से बेहतर कुछ भी नहीं, आज से बेहतर कुछ भी नहीं, क्योंकि कल कभी आता नहीं और आज कभी जाता नहीं। सभी को हार्दिक से स्वागत है स्पॉन्सर भजन कार्यक्रम में। आरंभ को करने जा रही हूँ देन हाग लेस्कफेन फोर पार्क से। देन हाग लेस्कफेन फोर पार्क से बाउ एंड ऑनर हाउस बदरेव इनका मालिक जो है श्रीमान हरिदत्त रोहित देव नारायण जी, इनके तरफ से हम यहाँ से आरंभ को करने जा रही हूँ हनुमान चालीसा।

जय जय हो उदित नारायण जी की आवाज में यहाँ से हमने श्रवण की है। आज के प्रोग्राम में हनुमान चालीसा के साथ आरंभ किया गया है जो शुभ कार्य

से हनुमान चालीसा के साथ आज स्पॉन्सर भजन कार्यक्रम आरंभ किया गया है। देन अगला इसका फेम फोर पारक से इस बार है आनंद अर्जुन शर्मा। आनंद अर्जुन शर्मा अखरोट हांडल बेफे के साथ सुनेंगे हम गणेश जी की आरती।

गणेश जी की सुंदर सा भजन यहाँ से हमने श्रवण की है, पेश किया गया है दनहा खलैस कफेन फोर पार्क से आनंद अंजू शर्मा खरोधान बेफी के तरफ से। दनहाख से श्रीमती लन बाबू राम जी के तरफ से हम यहाँ से श्रवण करेंगे एक बार फिर सुंदर सा गणेश भजन। बेहतरीन कल के लिए, बेहतरीन कल के लिए आज को बेहतर बनाना पड़ेगा।

अति सुंदर अति सुंदर। बिना स्वार्थ किसी का भला करके देखिए, बिना स्वार्थ किसी का भला करके देखिए, आपके तमाम उलझने ऊपर वाला सुलझा देगा। पेश किया गया देन हाँ के रहने वाली श्रीमती लेन बाबू राम जी की तरफ से। देन आखलास के फैन फोर पार्क से इस बार है बाव एंड ओनर हाउस बद्रेफ। बाव एंड ओनर हाउस बद्रेफ इनका मालिक जो है श्रीमान हरिदत्त रोहित देव नारायण, इनके तरफ से सुनेंगे।

सुंदर गणेश, भजन आपके लिए पेश किया जाता है आप ही का स्पॉन्सर भजन कार्यक्रम जो फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से हम यहाँ से आपके लिए प्रस्तुत कर रही हूँ। शब्द शब्द में ब्रह्म है, शब्द शब्द में ब्रह्म है, शब्द शब्द में सार है, शब्द शब्द शब्द ऐसा कहो जिसमें उपजे प्यार। पेश किया गया है दनाखलास कफेन फोर पार्क से बाव एंड ऑनर हाउस बद्रेफ, इनका मालिक जो है श्रीमान हरिदत्त देव नारायण के तरफ से हमने श्रवण की है। आपको लेकर चलते हैं दनहाख के रहने वाली श्रीमती लिलियन मोतीराम जी के तरफ से शुभ प्रभात कहते हुए सभी को।

अति सुंदर अति सुंदर, चलो खुशियों का जाम हो जाए, लेके बप्पा का नाम कुछ अच्छा काम हो जाए। पेश किया गया है दनाख से श्रीमती लिलियन मोतीराम जी की तरफ से, सभी को एक शुभ दिवस, मंगलमय जीवन, मंगलमय जीवन और मंगलमय दिवस पेश कर रही है। सुरीनाम अली फॉर्नो मैन का नाम हुक इंदिरा गांधी वैक्सीन, श्री भक्तराज शिव पार्वती मंदिर से श्री पंडित सुभाष महावीर खूबसूरत दिवस में भजन माला कार्यक्रम में शुभ प्रभात कहते हुए।

के दाता गजाधन श्री गणेश श्री गणेश श्री गणेश आप सभी को गणेश जी की कृपा से हर दिन फलदायक हो हम सभी का पेश किया गया दनहाखमा का इसरात नंबर 6 से हिंदू बासो स्कूल फाहुन फरेनखेन अलखमेन हिंदू ऑनरवेस नीदरलैंड के तरफ से आगे चलते हैं सुनने के लिए हे क्नुटरस्ट्रात नंबर 10 से संस्था हिंदी प्रचार जो परिवार चांगुरबिन के निर्देशों में श्रद्धा भक्ति के साथ

अति सुंदर, एक बार फिर अति सुंदर प्रथम पूज्य भगवान गौरी पुत्र गणेश जी की कृपा से आपका हम सबका दिन सुखद में और मंगल में रहे। पेश किया गया है देन हाखे कुनीतो स्त्रत नंबर 10 से संस्था हिंदी प्रचार, संस्था हिंदी प्रचार जो परिवार चांद गुरबिन के निर्देश में है। आपको लेकर चलते हैं इस बार रोटरडम, रोटरडम हॉगवलीट टेक्सास वेग नंबर 5 से श्री विष्णु मंदिर संस्था जागृति, संस्था हिंदी सेवा संघ श्री गंगा माता मंदिर साथ में रोटरडम वेस्ट ब्लॉक माकर स्ट्रात सेशन फेयर तक से श्री सरस्वती माता भवन से मंडली सभापति श्री पंडित राजकुमार महातम जी के तरफ से शुभ प्रभात और एक शुभमय दिवस, एक शुभमय जीवन हम सबको अवश्य इनके लिए प्रार्थना करता है।

मंत्र पुष्पांजलि यहाँ से हमने श्रवण की है। हर सुबह एक नई शुरुआत होता है, हर सुबह एक नई शुरुआत होता है, एक नई आशीर्वाद, एक नई आशीर्वाद, एक नई आशा है। सुख सुबह जैसा होता है, मांगने पर नहीं पर जागने पर मिलता है। पेश किया गया है रोटरडैम होपफुली टेक्सस वैक नंबर 5 से श्री विष्णु मंदिर संस्था जागृति संस्था हिंदी सेवा संघ श्री गंगा माता मंदिर से और रोटरडैम वेस्ट ब्लॉक मार्केटस्ट्रैट से श्री सरस्वती माता भवन से मंडली सभापति श्री पंडित राजकुमार महाथम जी की तरफ से ये सुंदर सा पुष्पांजलि मंत्र पेश किया गया आपके लिए। फाहोन रेडियो की स्टाफ डायरेक्टरी पर्सनल सभी फ्रेवेलर्स की तरफ से मेरे प्यारे सुनने वालों तोहफा के रूप में सभी स्पॉन्सर सभी सुनने वालों सभी भक्त प्राणियों के वास्ते

जाने जाने हनुमान जी। अच्छे ख्वाबों के साथ सोना और नई उम्मीदों के साथ उठना जागना, और इसके बाद तो गणेश जी की कृपा हर दिन हम सब पर फलदायक दे। पेश किया गया फोन रेडियो की डायरेक्ट स्टाफ पर्सनल के तरफ से और सभी फेरावेलकर के तरफ से मेरे प्यारे सुनने वालों, तोहफा के रूप में सभी स्पॉन्सर, सभी सुनने वालों, सभी भक्त प्राणियों के वास्ते आपके सेवा में पेश किया गया है। सभी भक्त प्राणियों के वास्ते, सभी सुनने वालों के वास्ते भजन माला कार्यक्रम को तमाम खुशियां, खुशनसीबियां पेश किया जाता है। स्पॉन्सर भजन कार्यक्रम सुनने के लिए आपको दिल से धन्यवाद किया जाता है, और स्वीकार कीजिए सेविका शांता की प्यार भरे नमस्कार। एक शुभमय दिन, एक शुभमय दिन हो, शुभ प्रभात, मंगलमय दिवस होवे।

0: Costa Rica mangiare.
1: Uzbekistan se ye sundar sa गीत आपके लिए यहाँ से चला दिया गया है। ये पल आपको बहुत सारे खुशियाँ लाए, जहाँ पे भी हो, जिस वक्त पे भी जहाँ आप रहे, वहाँ के माहौल जरूर से, वहाँ के महफिल, वहाँ इर्द गिर्द जो है, जब जिस समय बस मुस्कुराते हंसी खुशी में बीते। यहाँ से कुछ दो लाइन आपके सुनाना चाहती हूँ। लाइन के बोल ऐसा शुरुआत है, घटिया लोक घटिया लोक। उसके एक उदाहरण है, उदाहरण की जगह से हम आपको सुनाएंगे कि घटिया लोक कैसे होता है। उदाहरण के रूप में ऐसा है कि प्याज को जितना भी प्यार से क्यों ना काटे, आंखों में आंसू ला ही देते हैं। उसी प्रकार कुछ लोग भी हमारे जिंदगी में ऐसे ही होते हैं, जिन्हें हम कितने भी प्यार सम्मान और इज्जत दे, लेकिन वो आखिरकार अपनी घटिया हरकतों दिखा ही देते हैं। प्याज के उदाहरण से घटिया लोग के एक उदाहरण दिया गया है, तो आपसे हम यहाँ पे बांट ली है। जी हाँ, आपके लिए अल्ताफ राजा जी।
2: जाने प्यार के नाजुक रिश्तों की गहराई को, मेरी आंखों ने झेला है रातों की तन्हाई को। मेरे दिल की हालत क्या है मैं जानू या दिल जाने, मेरे अलावा कौन बताए जाके उस हरजाई को।

दर्द को जाहिर करने से तो दर्द का सहना ही अच्छा है। दर्द को जाहिर करने से तो दर्द का सहना ही अच्छा है। अपनी ही रुसवाई होगी, कुछ ना कहना ही अच्छा है। कौन है अपना इस बस्ती में, किससे दिल का भेद बताएं। ओ हर जाई तेरे बारे में, चुप रहना ही अच्छा है।

जीना इसी का नाम है मेरे दोस्त, जीना इसी का नाम है। तो चलो हम आपसे बता दे कि जीना किसका नाम है। जीना इसी का नाम है कि शरीर को चंगा रखो, शरीर को चंगा रखो और दिमाग को ठंडा रखो, जेब को, जी हाँ जेब को गर्म रखो। जेब को गर्म रखो और यानी कि ढेर से पैसा उसमें होना चाहिए। और आँखों को, आँखों में शर्म रखो। जुबान, जुबान को नरम रखो। जी हाँ जुबान को नरम रखो। दिल में रहम रखो, दिल में रहम रखो और क्रोध पर लगाम रखो।

व्यवहार, व्यवहार को साफ रखो, व्यवहार को साफ रखो, और खास तौर पर होंठों पर, होंठों पर मुस्कान रखो। अगर आपके होंठों पे मुस्कान जो आ गए ना, तो आपके आंखों में शर्म रहेगा, जुबान नरम रहेगा, दिल रहम रहेगा, क्रोध पर आप यूं ही यूं लगाम रख पाओगे और व्यवहार आपके तो साफ हो जाएगा।

शामिल कर दिया गया है फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो के प्रोग्राम में पंकज उदास जी को। घर में दर्पण लगाते समय ये गलती कभी ना करना। आपने ठीक सुना, घर में दर्पण लगाते समय ये गलती कभी ना करना। दर्पण को कहते हैं आईना, स्पीकल। कहाँ पर आपको दर्पण नहीं लगाना चाहिए? पहला है मुख्य द्वार के सामने दर्पण ठीक नहीं है लगाने में। मुख्य द्वार यानी कि होफ एन खांग, बैत के सामने यानी कि स्लाब कामर में आपके बिस्तर जहाँ है उसके सामने दर्पण लगाना ठीक नहीं है। बैत के सामने दर्पण लगाना ठीक नहीं है। दक्षिण दिशा में दर्पण लगाना ठीक भी नहीं माना जाता है। दक्षिण यानी कि सौदन। दर्पण को अंधेरे में रखना ठीक भी नहीं माना जाता है। और कमरे में बहुत सारे दर्पण होना भी ठीक नहीं माना जाता है। सीढ़ियाँ के सामने दर्पण लगाना भी ठीक माना नहीं जाता है। सीढ़ियों के सामने दर्पण होना ठीक नहीं है। टूटे या धुंधले दर्पण का इस्तेमाल करना ठीक भी नहीं है। टूटे या धुंधले दर्पण। रसोई में दर्पण लगाना ठीक नहीं है। और दर्पण का मुंह नीचे की ओर रखना भी ठीक नहीं है, यानी कि मुंह नीचे यानी कि स्कंस। दर्पण को गंदा या धूल भरा रखना भी ठीक नहीं है। हेडब्रेंड अलेमा नेगेटिव एनर्जी अट्रैक्ट ओक नेगेटिव एनर्जी। ये सब बात आपको बता दिया गया है वास्तु शास्त्र के अनुसार।

पंकज उदास के आवाज में कि आइए ये मौसम आपके लिए। इस संसार का सबसे मजबूत इंसान वही है जिसका हृदय टूटा, सपने भी टूटे, अपनों भी रूठे, फिर भी कहते हैं मैं ठीक हूँ।

जब किसी पर से भरोसा उठ जाता है ना, जब किसी पर से भरोसा उठ जाता है तब सामने वाले चाहे आंसू बहाए या कसमें खाए, असर नहीं होता। नो, जिंदगी दोबारा वापस नहीं मिलता है, जो वक्त गुजर गया सो गुजर गया। आज में जी लो, आने वाला कल का पता नहीं, पर भरोसा में है हम जीते हैं। जिंदगी दोबारा वापस नहीं मिलता, इसलिए इसे दुख में, गुस्से में, नाराजगी में, नफरत में या किसी से ईर्ष्या झगड़ा करने में बर्बाद मत करना।

कच उदास पंकज उदास के आवाज में सुंदर सा गजल पेश किया गया। क्या क्या दोपहर में सोना चाहिए, जिसे हम कहते हैं मेदाख दुच, इस दात वेल खुद इस द फ्राग। क्या दोपहर में सोना चाहिए, जरूर सोना चाहिए, जरूर से सोना चाहिए। तो आपको यहाँ हम बता देते हैं क्योंकि क्या फायदा है अगर आप दोपहर में थोड़ा से सो जाए। दोपहर में 15 या 20 मिनट तक आप जो सो जाए तो उसका फायदा क्या होता है, हम आपको यहाँ से बता देते हैं आप ही का फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से। द एनख एख्त आप ही का फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। अगर आप दोपहर में 15 से 20 मिनट तक सोते हो तो ये शरीर के लिए फायदेमंद होता है। दिस हेल्पफुल फॉर यू लिखम, हमारा दिमाग बेहतर काम करता है। हमारा दिमाग बेहतर काम करता है, दोपहर के नींद से याददाश्त बढ़ती है। ब्लड प्रेशर जो है, ब्लड ग्रुप का खतरा भी कम होता है और दिल स्वस्थ रहता है, तनाव कम होता है। Door 15 tot 30 minuten te liggen op een middag heeft zijn voordelen. Moet je 's middags slapen? Een paar voordelen wat het slapen 's middags doet. Als je 's middags 15 tot 30 minuten slaapt, is het goed voor het lichaam. Onze hersenen werken beter. Middagslaap verbetert het geheugen. Ook het risico op een hoge bloeddruk neemt af en het hart blijft gezond en stress vermindert. Dus het heeft zijn voordelen. Als u in het gelegenheid bent, gewoon doen. Even 10-15 minuten hoog uit 30 minuten. Als u uitrust, bent u opgeladen. In sommige landen heb ik gehoord en ook gelezen dat ze tijdens het werk gewoon moeten stoppen om 15 tot 30 minuten om gewoon uit te rusten. Ze zijn gewoon verplicht om dat te doen, om het te kunnen opladen om verder te kunnen. और वैसे हम सूरीनामों में भी मेदाह दुच लेते

दूर की आवाज़, दूर की आवाज़ आपके करीब और पहुंच आ गए है। फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से मेरे प्यारे सुनने वालों,

मेरा भी दिल बोले, मेरा दिल भी दिल बोले कुकू कुकू। क्या मौसम है, क्या नजारा है, क्या हकीकत है। और यहाँ से आपको लेकर चलते हैं फिर से सुनने के लिए मुकेश जी की आवाज में।

के चांद माथोर जी और लता जी की आवाज में की चांद तेरा मुखड़ा यहाँ से फरमा दी है। और कहते हैं मेरे प्यारे सुनने वालों, और क्या कहते हैं जरूर से आपको बताएंगे। नदी का पानी मीठा होता है, नदी का पानी मीठा होता है क्योंकि वो पानी देते रहते हैं। सागर का पानी खारा होता है, खारा यानी कि कड़वा नमकीन। सागर का पानी खारा होता है क्योंकि वो हमेशा लेते रहता है, हमेशा लेता रहता है। और नाले का पानी हमेशा गंदगी दुर्गंध देता है क्योंकि वो रुका हुआ होता है। यही हम अपने जिंदगी के साथ तुलना कर सकते हैं। यही जिंदगी है, देते रहोगे तो सबको मीठे लगोगे, लेते रहोगे तो कड़वे लगोगे, और अगर रुक गए तो सबको बेकार लगोगे। यही है लगभग जिंदगी का। जिंदगी का तुलना आप ऐसे भी कर सकते हो। रिफियर वाटर इज सुद ओमदात वाटर ब्लाइव गेवन एंड से वाटर इज साउथ ओमदात है आल्टेड ब्लाइव नेमन हेट अफुर वाटर रोक आल्टेड स्लेक्ट दैट वेट ही ओक ओमदात हेट गेस्टॉप्ड इज। Dit is het leven. Als je blijft geven, mijn lieve mensen, word je door iedereen, ben je door bij iedereen geliefd. Als je blijft nemen, zal het zout smaken. En als je stopt, lijk je voor iedereen nutteloos. तो आप सोचो कि आप कहाँ पे हो, कैसे हो और क्या कर रहे हो। सुख हम बलांस अरेन।

adil na toro raja babu se nikal diya gaya hai. Aha, jeevan ka sabse bada guru waqt hota hai mere dost. Ha, jeevan ka sabse bada guru waqt hota hai. क्योंकि वह जो सिखाता है वो कोई और नहीं सिखा सकता है।

मैं चुप रहूंगी। हाँ हाँ, मैं तो चुप नहीं रहूंगी, बल्कि फिल्म का नाम है मैं चुप रहूंगी। ये सुंदर सा दुएत आपने सुने हैं लता और मोहम्मद रफी जी से। मेरे प्यारे सुनने वालों, मैं चुप रहूंगी फिल्म का नाम जैसे हमने कही है, सुनील दत्त और मीना कुमारी का इसमें अपना कला दिखाई है। मौका मिले तो जरूर से समय निकाल कर और देख लेना ये सुंदर सा फिल्म। द बेस्ट लेयर मेस्टर इन एट लेफन इज द टाइट मैन लिफमेंस। द बेस्ट लेयर मेस्टर इन एट लेफन इज द टाइट वो द टाइट ओंस लेयर कान निमांत ओंस लेरन।

जी मेरे प्यारे सुनने वालों, कि तुझे पहचान लिया है और आपको अपना मान लिया है, कितनी सुंदर बयान है आपके लिए पेश किया गया।

नहीं तो गंगा पर इतना भीड़ क्यों है। जो कर्म को समझता है उसे कर्म, जो कर्म को समझता है उसे धर्म को समझने की जरूरत ही नहीं। पाप शरीर नहीं करता विचार करते हैं, और गंगा विचारों को नहीं सिर्फ शरीर को धोती है। आप समझ गए ना मेरे दोस्त।

0: उमर खयाम के सगे क्यों लुटिया डुबोने वाला है? अगर पुलिस आ गई तो सीधे जेल जाएंगे।
1: पुलिस जहांगीर का क्या बिगाड़ सकती है? अब्बा हुजूर अकबर आजम से कहकर इन पुलिस वालों की धज्जियां उड़वा दूंगा। मलिका आलम नूरजहां।

0: जानती हो मैं कौन हूँ?
1: जानती, मैं दीवानी क्यों, तुम दीवानी?
0: हर रोमियो
2: दीवाना
0: हुआ करता है मेरी जूलियट।
1: जूलियट?
0: हाँ, तुम जूलियट और मैं रोमियो। तो देखो, तुम बालकनी में खड़ी हो और मैं नीचे गा रहा हूँ।

0: क्या
1: हमें पकड़ लिया याने रोम वाले
2: नहीं हिंदुस्तानी जेल वाले।
1: हिंदुस्तानी जेल वालों ने और सारी दुनिया की हसीन तरीन औरत क्लियोपेट्रा को पकड़ लिया।

तो सोचो जहाँ तू है वहाँ पर चांदनी को फिर कौन पूछेगा, आओ प्यार करे, आओ प्यार करे, तो पता चलेगा कि जहाँ आप है तो वहाँ पर चांदनी को कौन पूछेगा। फिल्म का नाम है मेरा दोस्त, फिल्म का नाम है आओ प्यार करे, मोहम्मद रफी जी की आवाज में रोमांटिक सॉन्ग आपके लिए। आप ही का फाहन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से पेश किया जाता है। वे इस नोइत बंक फोर है तोंकर, वे इस नोइत बंक फोर है तोंकर, द मांस कैंट ओक्सनाक्स ऑब्स्टाकल सैन नित हेट एंड फन द रेस, ऑब्स्टाकल्स सैन नित हेट एंड फन द रेस, गेदुल्द लेट tot een weg, geduld leidt tot een weg. Geen enkele moeite is verspild. आपने ठीक सुना कि geen enkele moeite is verspild. Elk stap wordt een ervaring. जी हाँ, elk stap wordt een ervaring. Falen is geen nederlaag. No, no. Falen is geen nederlaag. Een mens groeit door strijd. Een mens groeit door strijd.

एक बार फिर आपको हार्दिक से स्वागत किया जाता है आज के प्रोग्राम में, इस पल के प्रोग्राम में। खामोशी से मतलब नहीं, खामोशी से मतलब नहीं बातों से है मेरे दोस्त। दिन तो गुजर ही जाएगा, मसला रातों का है। पल ये समय आपको बहुत सारे बधाइयां दे रहे।

स्पेशल स्पेशल सॉन्ग्स आपके लिए चुनकर और लाई हूँ आज के वक्त में। फाउन हिंदुस्तानी रेडियो से हम सब जुड़े हैं, स्पेशल स्पेशल आप ही के लिए है।

ये 2 पल की जिंदगी है मेरे दोस्त, इसे जीने के लिए सिर्फ दो ही उसूल बना लो। हाँ, सिर्फ दो। रहो तो फूलों की तरह और बिखरो तो खुशबू की तरह। जिंदगी के हम सफर में हो तो बात पे यकीन तो नहीं था, पर तुम आए तो यकीन हुआ। और सफर जो है मोहब्बत ही से भर गया है।

आज 13 तारीख हो चला है, 13 तारीख यूनी है, यूनी हाँ, छठा महीना चल रहा है सेस द मंथ इस साल का तो हो गया है। और आज शनिवार का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं।

फिल्म दिल चाहता से सुने हम शेखर महादेवन शान और के की आवाज में कि दिल जो भी कहे परवाह नहीं, हम तो अपना राह सीधे चल रहे हैं। इन लेफन हु द्रोक यहत ओक हैप मैन लिफ मेंस भाइयों बहनों इन लेफन हु द्रोक यहत ओक हैप नेम द तैत नेम द तैत Om met je dierbaren te praten, wat doe je anders met die tijd als ze daar niet meer zijn?

अच्छा समय अच्छा गीत आपके लिए। हमारे अच्छे अच्छे लोग जो सुन रहे फाओ हिंदुस्तानी रेडियो, दुनिया के जिस गली में आप जहां भी जैसे भी हो, आपका इंटरनेट है तो आप वर्ल्ड वाइड सुन सकते हो फाहोन हिंदुस्तानी रेडियो।

आके घुंघरू टूट गए। इसी वक्त वही से मैं यहाँ सोचकर और सोचते रहते कि घुंघरू कैसे ही टूट गए पता नहीं। मेरे दोस्त कहते हैं कि ये कहते हैं कि जैसे सोचोगे वैसा ही बनोगे। विचार ही आपकी पहचान है मेरे दोस्त, विचार ही आपके पहचान है।

Zware tornado's laten sporen van vernieling achter in VS. Honderdduizenden mensen in de staten Illinois en Indiana zitten zonder stroom. ये फेस का बात है, ये फेस के समाचार यहाँ से आपके लिए रख

ये तो बहुत अच्छा बात है कि आप मिलकर और बताओगे। अच्छा बात है, हम इंतजार भी कर रहे हैं उस पल के लिए। वी द मुथिफ द वार है द अनफार्दन। वी द मुथिफ द वार है द वार है द अनफार्दन एंड द इंटेंसी हेफ ओम द फरांदरन कान फेल फेल लेरन हो फेल मेंशन हर kennen ons, dat doet er eigenlijk niet toe. Maar als u bereid bent de waarheid onder te aanvaarden, dan gaat u zeker heel veel verbetering vooruit. Fibromyalgie, mijn lieve

फिल्म वॉर से निकाल दिया है जय जय शिव शंकर। सीटी भी बजा दी है आपके

0: तुमसे मिलकर दिल का और यहाँ से है वो लड़की है कहाँ, सोचो तो।
1: Over 11:30 Saterdagochtend programma.

फिल्म धूम नंबर 2 से निकाल दिया गया है, जिसमें कलाकार है ऐश्वर्या राय, ऋतिक रोशन, सुनिधि चौहान। इश्क है, हाँ इश्क है।

ஒரு மொஹப்பத் ஔர் மொஹப்பத் சிரிஃப் மொஹப்பத் ஜோ ஹே வோ பஹுட் படா காம கா சீஜ் ஹே ஔர் கபி கபி மொஹப்பத் மே பஹுட் பஹுட் கல்தியா ஹோ ஜாதே ஹே தோஸ்தோ ஔர் கல்தியா தோ ஹமாரே லோக் கா பீ ஏக் ஹிஸ்ஸா ஹே ஹமாரே தோஸ்தோ तो आज हम आप लोग को कुछ प्यार भरी शायरी सुनाएंगे, कुछ गाना हम सुनाएंगे एक घंटे के लिए, और उसके बाद तो हमारा प्रोग्राम को और आगे को हम बढ़ाएंगे। कहते हैं तेरे ख्याल में जब बेख्याल होता हूँ, तेरे ख्याल में मैं जब बेख्याल होता हूँ, जरा सा देर को ही सही बेमिसाल होता हूँ। थोड़ा से देर होइगे बाकी फिर भी बेमिसाल होता हूँ। तो हम चलते हैं दोस्तों, मुझे नींद न आए, आपको आते हैं, आपको क्या आते हैं, अभी क्या आएंगे दोस्तों, लेकिन आएंगे जरूर। हम चलते हैं एक पुराना नंबर की ओर।

और मुझे नींद न आए, और मुझे नींद न आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का ये फिल्म दिल मूवी का नाम है दोस्तों। अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण ने ये गाना को गाया है। और हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों, और यहाँ से हम अपना प्रोग्राम को और आगे को चलाएंगे और सुनाएंगे, और कुछ शायरी एक दो बीच बीच में हम कर देंगे। और हमारे प्यारे प्यारे सुनने वालों, हम चलते हैं, और ये दर्द की बात है। और दर्द में क्या होता है दोस्तों, दर्द में आंस गिर जाता है, दिल रोई पड़ता है, दिल धड़क जाता है। और जब दिल धड़क जाता है तो क्या होता है, आप खुद ही सुनिए।

क्या हुआ जो तूने छू लिया, और जो अगर छू लिया तो उसके आगे आपको क्या होता है दोस्तों, ये मैं क्या करूं, आप तो खुद ही जानते हैं। और कहते हैं होठों पर मोहब्बत की फसाना नहीं आती, होठों पर मोहब्बत की फसाना नहीं आती, साहिल पर समंदर की खजाना नहीं आती। और आगे को हम चलते हैं दोस्तों कि कहते हैं इश्क मोहब्बत दीवानी ये बस लफ्ज ही थे, जब तू मिला तब इन लफ्जों को मैंने मिले। और दोस्तों ऐसे ऐसे कुछ शेरे आज आप लोग को हम जरूर सुनाएंगे, और हमें यही आशा है कि आपको जरूर अच्छा लगेंगे। कहते हैं फूल खिलते हैं बहारों का शमा होता है, फूल खिलते हैं बहारों का शमा होता है, ऐसे मौसम में ही तो प्यार जवान होता है। दिल की बातों को होठों से नहीं कहते, ये फहसाना तो निगाहों से बयान होता है। यस मींस रोकेर, फूल खिलते हैं बहारों का समा होता है, ऐसे मौसम में तो प्यार जवान होता है। दिल के बातों का होठों से नहीं कहते, ये फसाना तो निगाहों से बयान होता है दोस्तों। और इस बयान में हम आप लोग के चलते हैं सुबह से लेकर क्या होता है, खाना तो नहीं होता है दोस्तों, और कुछ होता है, वो क्या होता है आप सुनिए।

हम चाहते हैं सिर्फ प्यार करो दोस्तों, और हम अपना प्रोग्राम को और आगे लेकर चलते हैं। हमारे प्यारे प्यारे सुनने वालों कि कहते हैं, प्यार करने वालों कहते हैं कि कब तक वो मेरे होने से इनकार करेंगे, कि कब तक वो मेरे होने से इनकार करेंगे। खुद तो करके वो एक दिन मुझसे प्यार करेंगे, प्यार की आग में हम उसे उसको इतना जलाएंगे कि सारी दिन हमसे प्यार ही करते रहेंगे। यस मेंस, आज हम प्यार के मूड में हैं, इसीलिए प्यार के कुछ शायरी हो जाए। और कहते हैं कि एक पल मैं जो आकर गुजर जाऊं, एक पल में जाकर गुजर जाए, ये हवा का वो झोंका है और कुछ नहीं। प्यार कहते हैं दुनिया जिसे, एक रंगीन धोखा है और कुछ नहीं दोस्तों। तो ये सब बात शायरी में लोग लिख के धर दिया है, और आज अपनी जिंदगी के कुछ बातें हम आप लोग को सुनाएंगे, और वो क्या है दोस्तों, आओ मिलकर सुना जाए।

मेरे जिंदगी में जब आप आए हो तो बहार बन के आयो हो, आए हो। और फिल्म राजा हिंदुस्तानी का ये गाना है दोस्तों जो आपके हमने सुनाया है। और हम चलते हैं और आगे को दोस्तों। मुझे उस जगह से भी मोहब्बत हो जाती है, आप तो जानते हैं जो लोग कभी मस्त हो जाते हैं तो वो जगह नहीं छोड़ता है। जगर उसको कुछ सोचना है तो जाकर वहाँ पर बैठ जाता है और बैठ के, और जैसे दोस्तों जब हम कुछ लिखते हैं तो मुझे वो स्पेशल जगह होता है जहाँ पर हम बैठ के कुछ लिखते हैं। ऐसे ऐसे कितने लोग हैं जब जो प्यार के मूड में होता है तो वही जगह वो खोजता है और कहते हैं मुझे उस जगह से भी मोहब्बत हो जाती है जहां बैठकर एक बार तुम्हें सोच लेता हूं। जी हां दोस्तों, और कहते हैं इस दुनिया में लाखों लोग रहते हैं, इस दुनिया में लाखों लोग रहते हैं, कोई हंसता है दोस्तों तो कोई रोता है, पर सबसे सुखी वो होता है जो शाम को दुई बोरल मार के सोता है। एक शायर हुई के भैया ये हंसते हुए, सिर्फ प्यार भरे नहीं लेकिन हंसते हुए, नजरे करम मुझ पर इतना न कर कि तेरी मोहब्बत के लिए बागी हो जाऊं। नजरे करम मुझे पर इतना न कर, मुझे पर इतना न कर कि तेरी मोहब्बत के लिए बागी हो जाऊं। मुझे इतना न पिला इश्क के जाम कि मैं इश्क के जहर में आधी हो जाऊं। दोस्तों हम चलते हैं कि अगर आपके दिल ने किसी चुरा लिया है तो ये गाना आपको जरूर सुनना चाहिए।

बसी चुरा लिया है और चुरा लिया है क्या भैया, दिल के बात होता है, दिल के बात होता है हमारे प्यारे प्यारे और सुनने वालों। और दिल बेस्टमैन से हम चलते हैं एक रीमिक्स गाना की ओर, यानी कि रीमिक्स भी बजाना चाहिए और तुम दिल के धड़कनों में रहते हो उस गाना की ओर जाते हैं हम दोस्तों। अभी हम वापस आ जाएंगे।

बस तुम दिल की धड़कन में और रहते हो अलका का ये गाना है और इस फिल्म में काम किया है अक्षय कुमार, शिल्पा शेट्टी और सुनील शेट्टी ने इस फिल्म में काम किया है हमारे दोस्तों। और हमारे प्यारे दोस्तों ये गाना है जब बारिश आता है तो ये गाना सुनने में और अच्छा लगता है। हमारे प्यारे प्यारे सुनने वालों फिल्म का नाम है सूर्यवंशी, अक्षय कुमार कैटरीना कैफ के, और इस गाना में इस फिल्म में यानी गाना को गाया है उदित और अलका ने। आओ मिलकर सुना जाए तो अभी हम वापस आ जाएंगे।

गुरु दोस्तों, टिप टिप करता और क्या करता है टिप टिप भैया, बारिश होता है टिप टिप, और जब बारिश होता है तो क्या करना चाहिए दोस्तों, आपके तो खुद मालूम होगा। हम चलते हैं और आगे को, और बचना ऐ हसीनों, बचना किससे है दोस्तों, उससे बचना है जो दिल के लुटेरा होता है, उससे बचना।

तमाम रेडियो फोन के सुनने वाले को हमारा राम राम नमस्कार प्यार भरी राम से श्रीकाल। जॉनी नंबर वन है हमारा नाम, आज का समाचार सुनाना है हमारा काम, यही है हमारा मोहब्बत भरी प्यार का पैगाम। दोस्तों हर हफ्ता की तरह आज भी हम अपना सूरीनाम या देश विदेश के समाचार लेकर आ चुके हैं। तो दोस्तों क्या क्या हुआ है अपना देश सूरीनाम में, विदेश में क्या क्या हुआ है, उसके बारे में आपको हम जरूर बताएंगे। और दोस्तों आज भी हम फेसबुक के माध्यम से आज हम लाइव है दोस्तों, और जितने लोग हमें देख रहे हैं आपको हम प्यार यहां से प्यार पटाते हैं रेडियो फाहुन के माध्यम से दोस्तों। तो और चला जाए तुरंत हम चलते हैं अपना देश सूरीनाम में। भैया क्या हुआ है, भैया एक वो नीदरलैंडर है नीखन दर तक यारखा एक आदमी है। तो ये भैया के सिपाही बहुत दिन से खोजे भैया इंटरपोल पे रहा कि कहाँ रहा, और ये आदमी दौक रहा लुकान रहा। तो ये आदमी भैया चल गए और गईल है यानी कि सूरीनाम से कोलंबिया में भाई। और तो जाने कोलंबिया में क्या होता है दोस्तों, कोलंबिया में जब गए ले भैया तो वहाँ ड्रग्स के कारोबार में और एक के सबन पकड़ ले इसे ड्रग्स ट्रांसपोर्टन के बारे में, और बोले द एरस्टासी फोसात रख छे तारीख जुनाई के, और बोले ना द मान अलांगर तेज इंटरनेशनल खे सीनियर से सबन के खोजत रहा। अब एक पाई गए भैया सिपाही कोलंबिया के, और जे एक पाई गए है तो तुरंत बंद कर दे इसे, और हिया नीदरलैंड बोले हमें तू अदमिया के लीवर कर वो के हम लोग खोजिला नीदरलैंड विल न मान लातन आउट लीवरन सो दैट है दार फॉर द रेक्टर कान फर्स्काइनन द फर्दर अफहांडरिंग फॉर द जाक लिख न्यू बेड बत्रोकन जिसील ऑथोरिटेटन के पास है। दोस्तों और चलते हैं हम जोगी महेंद्र जोगी के ओर हम जाए भैया, ये वही महेंद्र जोगी है सरमक्का वाला फेहा पे के देना ले थे महेंद्र जोगी, और बोले वो क्यूनन खीर आर बेदर फिंदन ओम तवेरकन बोले हम लोग के यहाँ सूरीनाम में कम करते हुए नाम मिले है काम करे खातीन, और बोले है कम करता इंदर दाद में से जो सूरीनाम में जइयो तो कम करता नाम मिले है भाई। तू चिराग लेके खोजियो पहले मैया लोन बोला था फरामो लेके खोजियो तब वो कम करता सूरीनाम देश में ना मिले है, बाकी यही के सुनिए बोले बारा पीना करेला बोले बारा पीना करी बोले स्टोइना सागी मिनो गिमुआ बीरीनो, अब बोले आओ हम आप रसिया तरी से हार कर दे तो बोली कितना भरिए। तो ये बात है दोस्तों वो क्यों नहीं आर्मेनियस फिंदर ओम तो वर्कन बोले फेट इस दर बफोल्क नीच स्लेक्ट कंपन हीव में द प्रॉब्लमेटिक फन वाटर उपलास एंड बिसोंडर स्लेक्ट वीकन तरवेल वो vergeten dat we geen arbeiders kunnen vinden om te werken. Bedrijven zitten verlegen terwijl we vergeten dat de banken hoge rentes en hoge rentelasten vragen. Het zou haast onmogelijk zijn om de vervangingsinvesteringen te plegen in het land mensen. Alhoewel er regelgeving bestaat binnen het CARICOM-verband kan Suriname haar vleugels niet uitspreiden naar de overige CARICOM-landen met haar diensten te producteren mensen. तो सूरीनाम के बात है जो कि भैया बोले कम करता ना मिले भैया वहाँ इंद्रदान फिर मान जाइयो खोजे टेमड़े मान जाइयो खोजे तो कम करता इंद्रदान ना मिले भाई। तो लोन जानो है पुलिसी ब्यूरो में भाई पुलिसी ब्यूरो है इस फ्लाइट में, और वहाँ पर भैया बहुक चोरी भैल हैगा भैया दूध के बाल्टी में सब धरे रहा हाँ बाल्टी में टैंक में धले रहा अकुएक चोरी हुई है
बारे में जोगी बोले है कब का बोले हम लोग के हनीस मनोरथ बोले बोले नो टच मी ते ही खत बोले उसको तो के टच करे तो घर में मसे चोरी हुई गए हैं। तो हेमन बुद्धो आपको हम स्वागत करते हैं हमारा प्रोग्राम में जुड़ गए हैं, साथ साथ धर्मेंद्र श्री भी आ गए हैं। आप सबको यहाँ से बहुत प्यार देते हैं, दुलार देते हैं और कहते हैं हमारा प्रोग्राम में भाग लेते ही रहो। तो यहाँ बताए गए अब वो चीज कहाँ मिली भैया क्वेक के बारे में गो इंस्पेक्टर हमें यहाँ इंस्पेक्टर पिनास गए लॉन्डर सुख करे सगरों गए ताके इंस्पेक्टर लेन कि कैसे चीजों आ भैल और चीजों अख्तर द ट्रेन फॉर पुलिस ब्यूरो खैर फ्लाइट में से चोरी भैल है। और दोस्तों जैसे शायद आप लोग को याद होगा कि बहुत चीज खैर फ्लाइट ब्यूरो में से चोरी हुए है ना, ये पहला दाएं भैया रखेरे और प्रखेरे जब सुनिए ये कुछ गैल हैं तो पुलिस ब्यूरो खैर फ्लाइट में से गैल है। और ये बात है द पुलिस फ्लाइट नीड एट क्वार्टर टर्मिनल ऑन हाउ द सिल प्लांट फिन एट हेड ओपन द ऑन द सुक मुड ब्लैक एंड द पुलिस अमतनार ऑल ना नीड बत्रोकस एंड कमिट बेड फॉर ड्वेनिंग इन फॉर द गफालक स्टफ मेन से। लेकिन बात ये है कि कितना बार सब बोले भैया हम लोग के हनीस मनोरथ के और सबसे बड़का आर्टिफिशियर है हाइतियान और वो हैगा तुलन जाने शाया तो शाया लगे जाओ और पूछो कि कैसे चीजवा है। तो बातचीत यही है भैया लोन

जा हैं। फेलिक्स हेड कैमरा चाहेंगे पुलिसी ब्यूरो में लगावे के, सेल्फ जहलीवन लगे चाहे लगावे के कि जो भगी तो देखिए कौन कमाली तुर के ऊ भगल है। तो यहाँ बोले बफेलिक्स की तकोर एड फॉर लूप के बफ्राइजेंस ब्लैक दर बफेलिक्स फान द पुलिसी ट्रेन ernstig tekortkoming vertoon. De ontrastingen rondom het terrein is op verschillende plaatsen beschadigd en er ontbreekt een toegangspoort poort door het hyena bhaiya te jarur chori huiga hyena batia bhaiya buddhu to poort na bhaiya chor loon ke vrije toegang hai. Aap log ko baat aur bataye bhaiya Hemant Buddhu aur jitne log ko hai Suriname jagah jameen hai जगह जमीन है धर्मेन जे के तुलो जानो है फिया पी कर खेरे पांच बरिस बैठल हाँ तो उसे बोले रहा कि अपन जगह जो तुल के हैगा हिर परसील ख्रंत के बोले तुल के मख है जाई के एक दम करवावे के ओकर बारे में ख्रंत कॉन्फ्रेंसी के कांतोरु खुलल हाँ अपन बस के लिए जाइए तो ख्रंत इंस्पेक्सी पठाई मिनिस्टर लगे तो मिनिस्टर तो के बोले जा इतना पैसा भर वन इतना के फिर कांत में इधर तो जगह है ओकर बाद में जाइए नोतारस में खूब ढेर के पैसा भइयो ओकर बाद में तोर कागज जाएगा खलेस में तो खलेस वहाँ पर जाए के सब में स्टैंपल मारी तो ओकर बाद में तोर जगह सब एखन दम हो जाएगा। तो इरमा राम तहल सिंह आपको हम स्वागत करते हैं। तब तोर जगह हुई तो पांच बरिस में कानी कैन हजार आदमी ख्रोन कॉन्फ्रेंसिस अपन जगह सब एक दम करी से तो आए ले भैया मिनिस्टर फन के बे बेगो मलाई आए ले भैया पेल के और उबा अन स्टैनली सूरो पा वीरो फन ख्रोन बलेन एंड बॉस बहिर के बे बे के तो ई का बोले है गा हम बोले जितना ख्रोन कॉन्फ्रेंसिस के जैसे अब जैसे आए है बौथर्स के रखेरिंग एनडीपी के रखेरिंग जैसे आए है हेल मा ख्रोन कॉन्फ्रेंसिस के चीज अब बंद कर दे से कि अब कोई के ना मा अपन जगह एक दम करे बाकी कितना आदमी अब पैसा भर चुकल ला सेंट्रल बैंक में ओकर साख चले हैं बाकी जैसे ही रख रहे हो आयल बंद कर दी न्यू फ्राक रिमेन से हीर कि जनता जो आयल जनता खात आयल है कि अपन खात आयल है जनता के खात तो आयल बाटे बस सब बंद कर दी से गा और यह का स्टेनली सूरो पावीरो फन खरोन बलेट एम बोस बहिर के खई भी के तो बातचीत ये हुए भैया राज लगा आपको भी प्यार से स्वागत करते हैं। तो राज तो इमराई जो आयल है खई भी में तो बोले खरोन कॉन्फ्रेंसी के चीज बंद हुई अब क्या बोले हैं बोले जितना खरोन कॉन्फ्रेंसी के आदमी चीज ले रहा बोले सबका पैसा हम लोग तुरंत भरब बोले सबका पैसा तुरंत बोले बोले जखियन बोले सही सब तुरंत ड्राई हुए के तो एकर बारे में बहुत घींचा तानी दे आना हमें भइल है तो उसे पूछेगा तो के 300 मिलियन अपने रैक्साक चले तो के पैसा है अदमियन के भरे के अब ओकर बारे में हम बता कितना रैक्साक चले है खेबीबी के बारे में जो आदमी रैक्साक पान करी से और खेबीबी के चाहे वो पैसों भरे के आदमी लोग के और इस सब के पैसा है ये ना और बोले है जो अदमियन अनफ्राक कर ले रहा बोले वो अदमियन के बोले कि पैसों में तुरख कर जो जगह एक दम ना हो पावे तो एक बारे में बहुत जुगू जुगू भैले बहुत फ्राक ओके स्टेल करी से तो अब ई का बोले है स्वार्थो नन्ना स्वार्थो स्टेलनी सूरो पावीरो बोले है गा बोले ना बोले चीज ऐसे ना है बोले जो अरमियन के सकुआ अब रोंत ना भैले और सेंट्रल बैंक में पैसों भर दे से बोले ऊ पैसों बोले तुरंत भरवे मैं जो आदमी के साख रोंत हो गए जेकन ट्रांसपोर्ट मिल गए है अखिलेश के और बोले ओके बोले हमें ना मा के तरह दराई के नहीं इस सब के चलत तो ओहु एक दमोल ले लेवत और अपन आदमी लोग के बांटर भैया हमार बात तो सफा है तो लो जानो है खड़ा मजूरी चोखा काम उजोनी के काम है बतावे के सोझा रास्ता हम कोई पॉलिटिक के नहीं देखी जैसे है वैसे हम बताएंगे दोस्तों। तो आप ये बोले हैगा एरफ पख रेखत नार एक नम रीज फॉर लीडर है बन अफगरोंद नीट इन अमेरिका कोमर फॉर तुरख बताले फंड दार फॉर बताले बदरागन alleen personen op rechtspersonen die het gronden conversietraject niet volledig hebben kunnen afronden, zullen de door hergestorte gelden van de overheid terug ontvangen. De minister stond er uitgebreid stil bij deze kwestie en benadrukte dat het beleid gericht is op zorgvuldige afhandeling van lopende en niet afgeronde grondconversies aanvragen. Toch, deze baat heeft

Maar een onderzoek naar zandafgraving. Grand Kijk wordt voorgezet. Grand Kijk met via Santi Kodawe Sarma Kame. A minister bolle ikar onderzoek. Khali illegaal kam hoe we maar deze met via. Oor je kunt weet hoe ik het heb de kia betawe. Dwangsommen drukken zwaar op begroting van GBB. Bolle minister John bolle hega. Bolle hamlukke etana dwangsommen hega. Van 300 miljoen SRD bedrag. Bolle deze uitgavenpost legt een aanzienlijke druk op de begroting van het ministerie. Volgens Suropawire is het noodzakelijk dat dergelijke schulden in de toekomst worden voorgenomen. Voorkomen. Euro apparetto mange het meelijke paisabare bolle die me moest kalayahe. 300 miljoen, 300 miljoen abetore moeri pe karja artu mange jonen meer ketoa van kina traha. Oker paisabare bhar paie paisua toke hai paisua bareke. To is abamate santo kito. Sab koi ke bolle raha ki je ke je ke panjaga chalo khron khron fersi se ek dom kalo admi lo kari se jo no ke seeker hai the kitra admi hai wo transport dhar ke kagaj khet ke aur karja nikali se bank mein aur jaye ke ghar bau karke hua rahe hain kitre admi hai ga dekhi so ke ek dom kaaj shuru kari se out break kare ka panjaga jameen aur malai aail hai do ek bari se aur mange sab cheez nikare and that is unearlig means that is seeker unearlig तो हम जाए तरी तिलवा के बारे में भैया तिलवा के बारे में अमेरिका सऊदी अरबी की ओर हम जाए ना फरेनर स्टेटस स्टोटन सऊदी अरबी से फन troon als grootste olie-exporter wereld. De Amerika bolle he, sabse barka grootste olie-export jon kare dunia pe, u Saudi-Arabië he, hebben de Amerikaan een positie ingenomen die decennia lang werd gedomineerd door Saudi-Arabië en Rusland. De verschuiving markeert een belangrijke verandering in de mondiale energiemarkt en versterkt de invloed van Washington in de internationale oliehandel kebaat ke. To pauze khatam ho gaya hai हां दोस्तों तो ये बात है हमारी जनता की अमेरिका बोले हैगा अमेरिका बोले है बोले हैगा सऊदी अरबी फन ट्रोन अस ग्रोस्ट ओली एक्सपोर्टर वीरल तो बहुत लंबा चौड़ा इसके बारे में लिखा गया है तेल के बारे में दोस्तों लेकिन आप लोग को हम छोटे रूप में हम बतावत है कि कैसे है और कैसे ना है हमारे प्यारे प्यारे जनता अब देखो भैया एगो 14 बरिस के बातचीत हुए फिर 3 यारख के और मन अन खौन जो ने को 14 बरिस लड़की के मिसब्रेक करेला भाई मिसब्रेक कर ले रहा हां रांच द्रिय फे तक यारख को आदमी द्रिय फे तक यारख के आदमी ई भैया का करे रहा ई ससुरा का कर ले रहा मंगलवार के भैया मंगलवार के एगो 14 बरिस के अपन बीर मैशे के एगो लड़की के भैया सेक्सुअल मिस ब्रेक करी से ओकर माई द मदर फन स्लाख तो फॉर दे द अनगिफ्ट और बतावे कि लड़किया बोले नर फोर कोम द मैन हैड मैशे में टूस्टेमिंग फन द मदर अन लिफ्ट गिवन सो हेवन न लतूर मैवा बिटीवा के एगो लिफ्ट देवाय रहा बीरमान के संगे तुन द मदर इवन लातर बेल द लातर जे बेल कैसे अपन बिटिया के तो ओकर बिटिया घरे ना रहा तो न रीस टाइस वास नाम से इस दिन सांसी नीट ऑप इस दिन आई तार ना उठाई से ओकर बाद मिल रही से तो ये रमिया का करे भैया उन लड़किया के 14 बरस के लड़की के ले दे ले भैया तू जाने खोरदेनुआ वाला घरवन बहुत ढेर है सर नाम में समझ गए ले ना घरवा आज मैं तू रहे हैं पेंशन वन के बाद बोली ला मौसा लोन हमारे जाने हैं कि कौन खोरदेनुआ की बात हम बोली ला पेंशन वन भैया वो तो लेके जइयो पाछे खोरदेन लग जाए जैसे नाटक के पर्दा खींच दिए समन कि भीतर में कोई ना देखे कि कौन मां जा है और कौन चकल से हुआ अंदर हुए है तो ये बात है श्री नाम के खोरदेनुआ वाला घरवन के बाद बतियाई ला तो ये आदमी 14 बरिस के लड़की के जो मैया बोले रहा बीरमान हमा बिटीवा के तेरी घरे पहुंचा दियो तो ये आदमियों के ले के लगा लगा जाए के खोरदेन वाल घर में घुस गए भैया और ओके जाए के वहां पे मिस ब्रेक करी सेगा सेक्सुअली ही मिस ब्रेक इन
pension. Nadat zou het meisje thuis afgezet hebben. De moeder schakelde natuurlijk. Op je eigen buitenkie. Hoe heb je gordijlen waar lag er mee? Naar loha waar lag er mee? Op een hitje kiepje. De loha ke ghar mee. Op utrali ke pietje jijke. I bhaiya ho ya i baat hoe. Latour ke baat hoe. Dosto. Latour me keer he. Aap loon jano he. तो ये सब लातूर के बात है जो आप लोग को हम यहां पे बता दिया है। तो दोस्तों हम चलते हैं अपना प्रोग्राम को बढ़ाते बढ़ाते। अब देखो भैया सेशन 20 मिलियार्ड के बातचीत हुए सूरीनाम में भैया एसआरडी के सेशन 20 मिलियार्ड रैम सेशन 20 सॉरी मैंने सेशन 20 मिलियार्ड खात नार द स्कुलन लास्ट स्कुलन जो कर्जा भैया ओकर पैसा भरा है सेशन 20 मिलियार्ड भाई यहां पे बताए गए हैं बोलेगा दिस यार टू इरेशन सेशन 20 में wordt opgeslokt met door rente, oplossing andere financieringskosten en staatsschuld. Uit de nota van de wijziging blijkt dat de via het ministerie van Financiën en Planning 26 miljard is uitgetrokken voor financiële verplichtingen die voortvloeien uit bestaande schulden. Maar ja, te deko, hier heb ik ketra cheat legale paisa ke baare mein, miljarden ke baan cheat hove hiya dosto. Hum bolu itlo ke bata de ki directoraat financiën 25,38 miljard euro hiya batawe hai. En belasting ke 0,91 miljard. To aise aise paisa ke baare mein bahut lamba chauda likha le dosto. Aap log khud padho aur samjho. Baur Suriname bhaiya hamare sarname garhan lagal bhaiya जैसे कोई के शराब लगल है भाई। अरे जब पानी से छुट्टी ना है तो चोरन उधिया है। चोरन जब उधिया है भैया तो हमारे रखेरे कुछ करना पावे। फन ठैख है स्त्रात सब चिन्नम छित्तिर के भित्तिर होएगा भैया रास्ता। बरखा मारी से देश इन बुराई के धरती से भैया सोचो। और मित्र लोग इसे दिन बोलेगा ऑफिशियल द टेरकुर फन एल नीनो इन द स्टिल ओशियन बफेस्टर दैट नेचुरल क्लाइमेट इफेक्ट कैन उइग्रोइन टू द क्रैक्टिगस्ट एल नीनो सिंस द बिगिन फन द मीटिंग। तो बताए गए हैं भैया सूरीनाम में घर में आदमी के पानी है यहां फोटो देखी घरवा आधा बुड़ गए भाई आधा बुड़ गए है। और बोले है का बकिन फन मीटिंग नेगेटिव इफेक्ट में एक्सपेक्ट वाज क्यू करेला कि वायरल तो एक्स्ट्रा गर्म होएगा जैसे इसे पानी इतना जोर बढ़े है ओवर स्ट्रोमिंग हुए है झूरा हुए है आग लगे है क्रख्त स्ट्रोमिंग होएगा। और अमेरिकन से मित्र ट्रोल के दिस नोआ इज एर कंस फन 63% दैट इज एल नीनो इन द नायर इन द विंटर पीक एंड दैट बहुत तो द ग्रोस्ट ओइ रजिस्टर्ड। तो इतना पानी हम लोग के देश में भरे भैया चारों बगल बुड़ल है गाय गोरु के बड़ी आफत है जानवर के बहुत आफत है खाना पीना का आफत है हमारे जनता के आफत है काम धंधा ना जाए सके करे ठीक से भैया। तो ये सब बात है हमारे जनता बड़े को फनो को है स्ट्रार के रास्ता इतना चित्तिर के बित्तिर है और कोई बनावे ना है जो उन समय पे संतों की रत सब कोई नूर मोहम्मद वागरियावत रहा नूर मोहम्मद वा करियावत रहा बोले ई का करे फे हा फे के करियावत रहा। अब तो भैया और खराब हुई है रस्तवा और बने न है। अब सब बोले बैताली का करे बैताली बोले हम बदरई बाटी ऐसे थोरो बोले मीवान लुक मोनी वसी फॉर ट्रैकिंग फन फन हो स्ट्रार को फॉलो फन ट्रैक आउटफुरिंग्स फोनस एगो फोनस चल ले भैया बैताली के और फोनस वा पढ़े के इतना लाती हुई है रस्ता सब चितराई गए हैं। एमा बोले हैगा वन आईडीबी अने बोले वन आस द आईडीबी बैंक इज स्टार्ट इज ऑन स्टार्ट सूरीनाम एरफान तो वेर होदन ए रेक्लक फोनस आउट टू फोन बतेगन दैट है डि फैक्टो दैट ऑल सूरीनामसे बिदराइवन बाय टेंडर्स फ्रॉम द आईडीबी बैंक नीट मेयर कैन रीगन ऑफ द सूरीनामसे रेक्लक मख। तो ये मां बहुत लंबा चौड़ा भैया बैताली के बोले है आनी में बत रहे बैताली बोले फरतराखिंग भैल है रिहैबिलिटेट प्रोजेक्ट फन फन रूख स्ट्रात स्रंगन हो स्ट्रात के बातचीत है बोले है का स्टार्ट ओम खान फोनल भैल कोर्ट तक दिन 10 तारीख जुली 2025 में और बोले है बदरेव रिया के दार में नमस्कार के पॉलिटिकल डिस्कशन
die de afgelopen periode over het project is ontstaan. De kabani kabanabani van 7 januari kreeg op bezwaar gelegd op de wijze waarop her een beoordeling was uitgevoerd volgens Baitali. Volgde pas 29 april een uitnodiging over te hopen van ja, vonnis ons dit raadje. Usab thore dekhe ki urgent hai janta itna dukh kaate hai isakwam irdar are kaabul oplos kar le ki hum log ke deswa ke rastwa swa tari bane uchi chhua pe thoro bhaiya hua alles kom khud a bole tamara he are ki bole morkha kom morkha bihan tamara de morkha karat hamara janta morkha karat hum log ke और रास्ता और खराब हो गया जनता बहुत दुख काटे तरी जाए आम्स्टरडाम की ओर भैया आम्स्टरडाम में और परी आदमी पकड़ा ने भैया आम्स्टरडाम में एगो जबर एक्सप्लोसिव भेल आम्स्टरडाम में बीते हुए रातों में और बोले है क्या कितना ओ तो बस खाद खोइएगा एमा सिपाही सबके खोजे है कि कैसे है कैसे ना है इन नख वन दोनदाग और फ्राइडाग के एगो बड़का एक्सप्लोसिव भेल है एगो स्पोर्ट्स स्कूल है रिमेनन में और उस दौर पर बन में आम्स्टरडाम में इतना बड़का एक्सप्लोसिव भय रहा तो ये बात है रकेश मुझ भी आ गया हमारा प्रोग्राम में तो भाई रकेश आपको भी हम बहुत प्यार से स्वागत करते हैं तो जनता हम जाए तरी अमेरि वेत है भैया अमेरिका बोले उज्जर घर हाँ उज्जर घर है श्वेत है ईरान अकॉर्ड में ऑन मंडलन फन कैरन प्रोग्रामा अरे भैया कैसे में के विश्वास करी तुम के भाई ई बेर बेर बोले है ना ना भैया ना रकेश बेर बोल खुरुचेस आई तरह थैंक यू रकेश तो बोले वाशिंगटन बोले हैगा अकॉर्ड ईरान कर दे कि जितना ओकर कैरन वापस सब ऑन मंतल करे है हम ना जानी विश्वास करी कि ना करी दैट लाइक नीड ओवर इन द कोमे में द बरेखते ने ईरान से स्टार्स मीडिया दिस टेल देम दैट ईरान फर्स्ट होत ऑन द ए सेल्फ द कंट्रोल द होल्डन ओवर द फरेक्ट यूरेनियम और बोले हैगा ई बोले है त्रिम बोले है और ईरान बोले ना बोले हम अपन यूरेनियम के अपरे से बोले कि हम ओके कंट्रोल करबे बोले ना अमेरिका करेगा मगर फोकस अमेरिका तेहरान में बोले है बोले इंस्टेम कर दे से न्यूक्लियर मटेरियल फॉर नीतक वर्ड वो फॉर नी सो ईरान अकॉर्ड सेड मेट इट ओपन फॉर स्ट्रार फॉर हॉर्मुज एंड सो हैड लैंड पास टू हंग कैगन तो सेन बफरोरन तो खुदन अस हे सेन फॉरप्लिक्टिंगिंग फॉर अ ओवरइनकम्स इस नाक कोमन वन ईरान के से मन बफरिश कर दे से बोलो मांगे हॉर्मुज कोलेस्ट्रार हॉर्मुज जो बोटियर पास है हम लोग का तेलवा सस्ता है तो रजेश किशुन भी आ गया है रजेश आपको भी यहां से हम बहुत प्यार देते हैं सूरीनाम देश तक तो इस तेल के बारे में भैया जे ओ तो चलावे वही जाने का वजह रहेगा लेकिन हमें जाना एक दो नी तरी सस्ता भले आज हम बोर्ड तो पास भली तो तरी हम देख ली बाटी भैया कि कैसे है और कैसे तोरिया ना है हमारी जनता तो और आगे को अपना प्रोग्राम को हम आम बढ़ाते हैं सुनाते हैं तो यहां पर देखो क्विक के बारे में जो रहा हम बताया रही क्विक दीपस्ताल जो स्केयर फ्लाइट में रहा और यहां पे आए नवा न्यूज आई लेम देखी ले दोस्तों बतावे मोकल का बत्रों के नहीं पॉलिसी ऑन द सॉक इन साकर क्विक दीपस्ताल अरे बोले सिलेंडर है जाने खास फ्लेशोन सिस्टम है तो सिलेंडर 11 को चोरी भैले पॉलिसी ब्यूरो खैर फ्लाइट पे बताए रही और बतावे हैगा और फॉलन इज कि ई केमिकलियम जोन है और इसे पे को कंटेनर में बंद रहेगा अख्तर पुलिस को ट्रेन पे सिपाही के और ऑफ द इन कैपिटल द इलेक्शन ऑन सुख करे कर बारे में दोस्तों और बोले द सिलेंडर्स वेयर रेकनोमेन बे इन ब्रांग बे द कंटेनर तो यहाँ पे भी बतावे द पॉलिसी वर्स के उधर खबर एक फन क्विक स्कार्ड लिख इस फॉर द सामेन लीविंग क्विक वन अमिलल है बाकी हो फ्लाइन वापली मुखलक बत्रों के नहीं पॉलिसी ऑन द सॉक इन साक अने क्विक दीपस्ताल के बारे में तो लोग जानो क्विक वास सब हम सोना खोजे है ओमा जहर है भैया और क्विक इस खफार में से और क्विक इतना सब हम बेन लांत में खबर करे कि क्विक के मछली चिरी खाए लाइक ना भैया वहाँ सब में बीमारी है क्विक इस दी खेमिस इस
तो ये बात है हमारी जनता अब देखो जाए तरी ब्रुंसी को वो लगे भाई ब्रुंसवेग का बोले हमारा ब्रुंसवेग तुम्हारा ब्रुंसवेग एक्सपीपी बोले एनडीपी पार्लियामेंटर बोले ईबी जोंस बोले है बोले फ्रांसिक आफवार ओम डोनी ब्रुंसवेग बोले कि इतना नेगेटिव बतिया एनडीपी के बारे में बोले जो क्वालिटी मुबा तब बोले जो ना कर पाए तो कहनु निकल जाए फोकस एनडीपी इज दिस मनीर ओम तो खान बोले हाँ पर क्वालिटी पार्टनर से लेकिन तुम लोग जानो भैया ब्रुंसवेग के मुंह जो है भैया जबड़ है उस बोले है और इन सबके नाम वही लगे है 100 ओम खान अपन क्वालिटी पार्टनर से बोले ही प्रोकृत है वो बोले ब्रुंसवेग वर्ड सुप नोइ सो हेट खेतन आल्सो वर्ड अपखदीन और ये बात है जो उस बोले है एनडीपीयर बोले काहे के बोले क्यों इतना नेगेटिव बतिया है तो चिनुआ के देश में जाए भैया वायरल ट्रेंड ओरी प्राइस रिलेटिव लाख हो अरे भैया चिनुआ बोले रिलेटिव दुनिया भर के तेल के प्राइस सका करे के बोले 20% फॉर वायरल ट्रेंड ओरी फोर्सिंग एंड वेक फॉलन और हमारे नाम में मांगेगा सिटुएशन का बोले सब्सिडी निकारे और तेलवा और महंगा हुई हमारी जनता ये बात है सूरीनाम के सूरीनाम के अब देखो भैया कड़ाका में सूरीनाम में को जगह नाम बा कड़ाका बोले कोकाइन जरा बड़ा जोर से मन करे हंसे के कि कोई सुन न पावे वो बतिया है तू तो बोले कड़ाका में 100 किलो कोकाइन 100 किलो मरवाना बोले जरैली बाटी है भगवान सिपाही कुआं कैसे विश्वास करिए तोरे घर में से कुएं चोरी हो जाए तू जइयो भैया कोकाइन जरावे अरे भाई पिसान नस्कार सो जाए भैया बड़े बलावे के समझ गए लो हम कुछ ना बोली ला तो कराका में भैया इतना ढेर बोले कोकाइन सेवन जराई से लेकिन सोशल मीडिया पे अनी चिल्लाए खखार खखार हंसे हैं हम लोग के पॉलिसी के सना में विश्वास ना करे भैया बैंक में से ना उस सबके क्लेश में से भैया सोनिया चल जाए पैसा चल जाए दृश्य चल जाए क्वेक चल जाए तो ई कई कौन कैसे तू बोलियो भैया कि कोकाइन जराई से और हमारा नहीं मनोरथ बेचारा बोले मी आनू बोले नो तेज मी बोले हमें ना तेज कर बोले हमारा हाथ बड़ी लंबा है तो यहाँ बतावे गए भैया हेड किंग ऑफ ड्रग्स प्रियोड सीफत इन मार्च 2020 तक तो सीफत यूनी तो मार्च में पूरी मिलल है भैया को कहीं ना मिलल है तो होएगा वो होएगा भैया तरी सोचो तो सिर्फ यूनिट तक बोले कि ना द फर्स्ट कोकीन वेट ओ सिर्फ 1350 मिलीलीटर फ्लुई बार कोकीन फर्नीता फर्दर बस्तों द पार्टी एट 189.64 ग्राम मरवाना 12,706.68 ग्राम हाश 235.5 किलो अने असीसी पेलन और ऐसे ऐसे हैगा तो बड़ा मोइल के विश्वास करे के राजा का बोली हम सोची तो लोग के एगो मोई वाला सोका सोका सुना दी तो लोग जाने सोका सोका तो अरे दादा प्रिंस हलीमा भैया चटनी सोका सोका अभी हम आ जाएंगे इस गीत के बांध में हमारे जनता

Lee और क्या क्या सुका सुका प्रिंसेस हलीमा का ये जोंग है और ये चटनी सुका थी हमारी जनता जाने सुका सुका पे ओ तो मातिस गोड़वा हतवा हिले लगे तो तुलो जाने चीजवा कैसे जा तो दोस्तों हम चलते ही और आगे को लेकर तो अर्चना देवी का हरनाम भी आ गया है हमारा प्रोग्राम में जुड़ गई आपको हम स्वागत कर चले हैं अर्चना जी तो आप लोग जानो है जेकर जेकर जन्मदिन होवे फरियारी होवे है तो गाना होवे है बजाना होवे है नाच होवे है खवा कटा है कहीं कहीं मुर्गा कटा है कहीं कहीं क्या क्या होते भैया माँ वे माँ का अलमाल अनहील ली के दाम में फरियार दा खुद यार रख है दरबीर वाला माल हुत खांत अलमाल इन ओवरऑल इस दाद सो वाद नहीं लाओ सिर मार इट इस वेल इट्स अंदर्स न्यू मेंस से एको फिर फिर तक यार के आदमी भैया वो कर जन्म दिन रहा अरे अरे मिया बजर मजन में रहा खूब नाचत रहा गावत रहा ओ हीरो आई ओके को तू पकड़ के और हांद बोई करके और लेके ओके चला गए ले मैया ना गए खबा खवावे किनवावे ना पकड़ के बन करी से धोई लात मार के फर ये रिये के रोज भैया ये रमिया का कर ले रहा ये रमिया का कर ले रहा ये रमिया 2020 जनवरी में एरो अमेरिका डॉलर सफर दस्तर कर ले रहा अपन वेरखी फर के बोले पे वरों को दापे ही मुझियांग उच जुआ कर ले रहा तो बोल बोले ये रमिया ना दर बिने और एक हल माता की इधर बहुत अंतलेग बोले पैसवा कहाँ जा है तसब जो ऑन द सुख करी से भैया करीब 8 million एसआर दे ये आदमी काम पर से फॉर दस्तर कर दे रहा भैया और मेरकल इस दर फॉर दस तो ये जो रोज फरियारी है वो ही रोचक ओएम और खड़बोट के लिए के चला गए ले वो कर फरियारी मनावे तो अपन पास के ही इतना बना दे हिल करी से मीन्स बोले है चोरी करियो भैया तो कर सजा तो भुगतना पड़ेगा है कि ना आप लोग सबको जानो रमावतार सिंह के वो हैगा का बोलेगा फेस के आदमी है एक रूम है रमावतार वेस्ट तो रमावतार सिंह के बाद बतियाला एक बारे में रमावतार सिंह बोले हैं बोले 405 तक दर्जन अमेरिकन डॉलर से नाम भरी सेगा वेहीकल लाइसेंसी किनी सेगा एसटीफीएस खातिर क्यों वहाँ पे समा वही का देख सके हैं और बोले है फीस प्रेसिडेंट जोतर इस्लाम किनी से बफेस्त करील है और बोले दही समा त्रियाल बतरे फन खफूल अंदर वेर स्टेल एक नो वेस्टर मौतार सिंह ने प्रोग्रामा लाला ऑब्जर्व वेब पे बोली सेगा दिस ना ब्रोथ एंड स्पेलन अनबिडन एंड हेड फुल खरीद इरफान वर्ड दोर हिन खस्तियाल एंड वही का खाद मोरखन फर्स्टात इन मैं बोले मैं एक्शन हुई तो शुरू हुई है दोस्तों और बोले हैगा अने अने यो किस तो भी नंगा अफोलक इबाद बोले है इन नींद रखे रहे सो बस लेते हैं और खेन वही का अत्यसंदन यो किस तो भी नंगा फॉलक बना दृक्त दे एक नंबर मावतार सिंह खेफ अंदर रखे रहे इन सेंस वेल द बकराई पर यू विल वेल ब्लाइव फंसे तन यू विल नीट वे खयाक्त वर्दन ओम दैट ये खेन ब्रूट एंड स्पेलन हैप आंखबोधन वर्दन आदर्क एरोप कले दौर द रमोतार से बेना मी कोट मी बांधी या बोले वो बोले एक्टर बोले प्राइस कार्चे ना देते बस कोइंग वर्क नोमन तो बहुत मांगा था रमोतार सिंह के बारे में और बताई सेगा कि इतना इतना पैसा लंटी भरी से और लाइसेंसी किने की किसी नाम में तुम वी का देख पाओ भैया या भैया एक आदमी भैया तुलो जाने गियरबॉक्स कौन ची के बोले तो हमने नीलांद में बोले ला कॉपलिंग्स ब्लॉक हेल सिंपल कॉपलिंग्स ब्लॉक व्हाट इन नीलांद का सेक्स इन नाम में बोले गियरबॉक्स है दर्जे ग्रर चेक करे तो गियरबॉक्स का नाम कैसे आया भैया पहले जब मोई से अपन कॉपलिंग्स कॉपलिंग वाला था भैया इन्हें क्लच प्लट वाला था भैया तो जब दर्जे बोले ग्रर तो कब बोले गियरबॉक्स कि गियर में चल गए बॉक्स वही नाम श्री नाम में अब तक से बोले गियर बॉक्स मही कॉपलिंग्स बॉक्स तो
ik ben 49 jaar ken me bij gearbox ke bole datara het is jana sina me sab ka de batya bole amana datara yo har ek chi je koi ku jane banan bole datara chi jo ki yaar tu jano datara hai te bhaiya ke hum bhi bole lai datara raha ego beide hi bhaiya lekin ye datara gearbox ke kaun chakalas kari se hui to batya hai ha ये भैया लोग ये गियरबॉक्स के अदमिया भैया ये दतरा का कर रहे गियरबॉक्स के दतरा आदमी लोग से सूरीनाम से डॉलर लेवत रहा अमेरिकन डॉलर लेवत रहा एरो लेवत रहा अब बोले तो हम कॉपलिंग्स बात मतलब गियरबॉक्स हुआ बोले एकदम मोटर रिफिसी कर अब कि जैसे नवा हो जाए हाँ बोले जैसे नवा हो जाए बोले कि हम ऐसे तो मौका बोले गियरबॉक्स बना लेवे और आदमी लोग से पैसा लेवे भैया और बोले तो नीतू हेवन आठ आदमी बोले गैल है बोले दतरा के ऊपर गैल है नालिश करे कि हमार गियरबॉक्स हुआ बोले ना बनाए से और पैसुआ खाली से ये के बोले दतरा भैया द पुलिस इज लाइक नीत एदर मेर पर्सोनन स्लाक्टोफर सेन कोऑर्डिनेटर फॉर द वर्कवेजर फॉर द फरदाक्टर इन इट कादर फॉर personen die ineens geld hebben betaald voor reparatieonderdelen om import van voertuigen onderdelen zonder het afgesproken te hebben ontvangen. Toen ik gearbox aan de kabel gearbox kreeg me van ja in de garbarijen. Maar ja, hier hebben we een heel jammer foto uitgehaald. Likale barka me sun pe kabinet van president een monster dat ons verslindt. Arre dada, iets iets ke bol deze bhai. Ja, bataye gaye hai ki voor 2026 me bole president ruim 1,2 miljard SRD toegewezen. Van dat bedrag gaat bijna 830 miljoen aan salarissen van 2200 personeel lenen uit Kamkarten. 1,2 miljard, maar 830 miljoen Kamkarten ke paisa bhara hai. Een gigantische som die in geen verhouding staat op de prestatie van dit apparaat. Van efficiëntie naar inflatie 1990 mee. En bole 50 kam karten ke bole mopstijden. Bhaiya bari lamba chowda ekar bare mein likhal hai. Lekin hum upar bata dela ho stuk likhal hai. Cabinet van de president a monster dat ons verslindt. To ekar bare mein Rupesh Jagannath adviesraad DNL gelikie sê Suriname kan zich niet model niet lager veroorloven. Het kabinet moet worden teruggebracht tot een functionele kern. To ye baat hai dosto. To Tony aa gaya hai. Tony Sri bhi aa gaya hamare program mein jud gaye hai. To bhaiya Tony ji aapko bhi yahan se hum bahut bahut pyar dete hai aur swagat karte hai hamare Tony ji. जनता SLM के बारे में भैया ऑफिशियल बोले सु ऑफिशियल खलान से दोर अंबासादर इन SLM बताना सु का है तोनिया लिखले SUSU सु लिखले भैया सु ऑफिशियल खलान से दोर अंबासादर इन SLM भाई तो एकर बारे में बताई सु है कौन सी है बोले इन सुरीनाम से म्यूजियम फंड छौतारी यूनक ऑफिशियल बोले हैगा प्लाच फन सु अन इनिशिएटिव ऑन 27 अप्रैल 2027 में बोले duizenden invloedrijke personen van Surinaamse afkomst en mensen met een warm hart van Suriname blijven wil brengen in een passenger terminal Amsterdam. Het doel is om de gezamenlijke projecten te identificeren en te ondersteunen die bijdragen aan de duurzame ontwikkeling van Suriname. De Susu ke matlab hai de heel land vreugde van de Susu summit die april to ee baat hai an Amsterdam ke bare mein dosto lekin hum aur aage batai bhaiya
Wak, ja. Suriname des met lonje jood dat ik je bord hangen leed. Met een rastake bord hangen leed. Uto officieel, hè. Maar die bord toa met een chargo bord hangen leed. Tony, ja, likkele persil te koop. Te taxiba, te ihe, te uba. To मामी जी के भी हमारा नमस्कार तोनी जी तो बात ये है कि अब क्या हुआ तू जाने है दमुआ पे पाल गाड़ल ले तो ओमा दुनिया भर के भैया बहुत आदमी अपन अपन रिक्लाम ठोके रहे हैं तो अब का बोली सेगा श्री नाम के रखीरिंग बोले आनोमाख बोले बूटू लगी बोले अपरे तुलो निकाल लो नहीं हम अपन ओ तो पठावे हम में तेल जरी कि सब पाल मजत लोग के रिक्लाम बहुत निकाल के तुल अपरो निकाल नहीं तुल के कस के बूटू लगेगा तो जब कोई अपन बोर्ड टांगी से और लांटी के ने ने स्ट्रातन पाल में हाल तू दिन वेख में से अंदर क्राइक तुल खरोट खरोट बिगी बिगी बूटू वन तू जाने लांटी तो पैसा खोजे कि कहां से हम निकाली न तुल अब देखो का भइल है अब का भइल है अब बातचीत ये हो रहा भैया अंत फ्रीड ओवर आउट ब्लेवन van KKV uitbetaling ontvangers wachten op de 1800 SRD. Toen ketra admi bole he ki KKV konchi he. KKV konchi he. KKV na he kamer van koophandel. KKV ka he. KKV asa is sa naam me sa pawe he. Aur konchi he okar bole he ga. Koopkrachtversterking. Santoki ke tijd pe 1800 rupia admi log ke extra mile hai. JK yani ki inko kam thi bhaiya. Ab kaam bhail hai. का भइल है कितना आदमी ना पाई से कितना आदमी ना पाई से तुलन जानो ही रखे रहेंगे जब बैठे हैं तो कम करतन के पैसा ना रहे भरे तो ई ना अब देखो काका फेल लोन आदमी लोन हमार बुढ़िया पुरनियन बैठ के अगोरे है रोई काली कि कैसे हम अपन कोप क्राफर्स तैर के वो पाई तो यारी कावासी गीता सी गुलाम भी आग के पहुंच गए हमारा प्रोग्राम में तो गीता जी आपको भी यहां से बहुत बहुत प्यार देते हैं साथ ही साथ रोई काली को भी बहुत प्यार देते हैं जो लंगड़ाम से हमारा प्रोग्राम को और इतना जोर तोर से सुन रहे हैं तो रॉय अब देखो काफी जोन है और हैगा कोप क्राफ्ट्स टैंक आदमी ना पाई से आदमी लोन अब सोच में पड़ गए हैं कि हम कैसे मुर्गिया की न हां भैया ने रकेश केप तक को भात केप तक को भी पलवन में मार ले अंदर दांत तो राजेश जंगली आपको भी हम स्वागत करते हैं तो जोन बर्तुआ पे टांगल ले भैया कि यहां मुर्गी बिका बकुआ बिका खेत बिका है कोंची बिका है दिमुत आलमाल दराई जनानी करे लांटी तो के बूटू दे जब तू लांटी के रास्ता वाला पाल में मल्ले रही है तब और हो सके एबीएस भी ना मांगे दोस्तों तो बातचीत यहाँ ये हुए है का काफी के बात आदमी क्लाख करे है बोले हम पैसे ना पहली बाटी बोले हमार पैसवा कब है रोज जाए जाए बंकुआ में पैसवा डाले हैं अपन और देखे ने बड़ा दुख के बात है राजेश बड़ी दुख के बात है कि लांटी के चाहेंगे कोप क्राफ्ट फर्स्टेरकिंग 1800 तो देवे के और हमार बुढ़िया पर नियन जे के पैसा ऐसा ना है उ सब जा है और जाए के पर बंक पास डाले हैगा खेल ऑटोमेट में और देखे हुआ नल है तलेर खस्तल को मनी मेंशनर है उ सब सोचे ओइसी से हम और जाबे का बोले हैं और मुर्गिया किन लेबे अने रकेश मुर्गिया किन लेबे अपन लड़कन खाट बना देबे दाल किन ले चाउर किन ले कुछ सौदा पानी किन के जाबे वही पैसों 1800 वो मसे किने और वही से हाथ झुलावत तो लेर खस्तेर और थूक लीला बिचारन झुरान ओट ऊपर से बरसात के मौसम में पानी में बिचारन भीजत जा है गोड टब टब पानी में जा है और पैसा ना मिलल भाई तो मेरदर परसोलिनिक अफंक्लेक्सेंट फन ओवरहेड स्टीन ट्रोकन ना द पेन ऑटो maanden om het te goed te opnemen, maar constateerde dat het bedrag nog steeds niet zo had overgemaakt naar hun moneycarta. Sommigen vergeleken de huidige situatie met de onder vorige regering. Toen iemand ziet, hey dosto, de bollega, toen Chan er was, werd de KKV op tijd gestoord. Oude bollega's en tokieraten,
बोले हम लोग के कोप करा फर्स्टेरिंग के पैसा अब तेईस तोड़ थो बतरा जब से सीमोन रेस्लांत आयल है पैसों हम लोग के ऑप्शन में तो ही लोन ना बैठा ही लो बाटो मौसी मौसी लोन बैठा इसे तो अब जाओ अब ना रो बोले जब खेत चिड़िया चूम गया तो बात में पछताने में क्या रह गया है ना गीता जी। तो ये बात है तो यहाँ पे लिखा गया मीनो अबिनो वामोनी एनमी रेकन तापा काका फे आला लेसी ते आयू रखे रे दिस मुझ पाई आका काफे न वन प्रॉब्लम देन सानी दिस नो बूम सही है फॉल्क het haar had zij de moment zelf geen geld om voedsel te kopen terwijl zij bij de automaat stond vroeg zij een voorbijganger om hulp een andere bijvoorbeeld riep haar toe dat er sprake zou zijn van een storting waardoor de uitbetaling nog niet was verwerkt via sociale zaken kan bolle he bolle administratieve afhandeling met de financiën bolle he ga servin falis bevestigd dat de betaling van de KKV nog in de administratieve afhandeling is. Volgens hem ligt de verder verwerking momenteel bij het ministerie van Financiën. O, atala sawa khatin. Abhaya non rowe hai. Jeke na hai. O roi ga na bhaiya jangli. Jeke ghepet me bhook lagal hai. Chota chota ladkan hai. Maya ke na hai. Bappa ke na hai. Ka kari bhai. Tab us sab ke muh mein se sarap nikri ga. होई आंख में से पानी चोई और ये रखे रे ऊंची जुआ ना देखे है और ना देखे तो अब बोले संतोखी समय पे हम लोग के पैसा ऑप्टाइट मिलत रहा और अब ना मिले है तो ये सब शराब लगी भैया सबके शराब लगी खाई क्यों है आदमी लोग के इस्तलीफ बहुफता है जो उतर पास ना है तो कुछ ना है वो तो हुआ धर के आदमी विश्व पे चल सके है वो तो हुआ ना रही प्रॉब्लम ना है बुरा मुआ ना है प्रॉब्लम ना है फिल्मुआ ना गई ले देखे प्रॉब्लम ना है मैं घरवा में खाइकवा चाहिए रहे के तो इस सब के साथ हम इस सब के दुख में हम शामिल है एंड या व्हाट मुते शेख में से अब जनता जनता मुते खून खलुल थे अब पैसा लेनी ही नहीं करके अब अपन जीवन को नो रकम तुलन प्रॉब्लम ऑफ लॉस कर तो दैट द 1800 नीट वेयर एन गेस्टोर्ट वर्ड हमारी जनता और आगे हम जाई है हाइटियान के भैया हाइटी देर द हेल ऑफ वेका हाइटी को दोंगन तो नहीं तो वैसे कर फन वेका और लोग सिंबोलिक ओकर देश में बड़ा लड़ाई हुए हैं और तू जा रहे ईरान के और कौन कौन देश के कपड़ी लोन जो लड़े उस सबके नाम अमेरिका में वेकुआ हुए तरी से बता दे तो ये सब बात है हमारे जनता और हाइटी बोले हैं ओपनिंग वेस्ट रहे जो फीफा में रहा वेरल कैंपियंस का पे खुद दोंगन है अंतवेर फंड तीनों ही तो फरांदर ना दर वेरल फुटबॉल बॉन्ड अल अफबेली फन ओलोक सेन ऑफ द शर्ट फॉर बोट कि तो के बोट अपन ट्राई पे नमक है कुछ और लोग के चीज के तीकन फीकन करे के और एक मारे उस सबके फरबीर के तो के कौन कम तू सपोर्टर बाटे तू सपोर्टर बाटे भैया तो के चाहेगा स्पोर्ट के चीज जाए के और लोग फल लोग के चीज कौन चीज जो यहाँ पर कपड़ा फपड़ा पे धर के हुआ पे स्टेडियम में करिए तो ठीक करी से हमारे कहना ई है आज जो स्पोर्ट मैन मैन द मुझे स्पोर्टिव ओक आई कैन यहाँ पे नेक्स्ट वहां के मैंने और लोग फन वीरल ए वार दर ओ मैं दर नोमिए दर मुझे कहीं स्पोर्ट सो इस मेन्स सो इस तो तुलन जाने नीदरलैंड भी बलवा खेली हाँ तो और आइए भी बाल खेली दोस्तों एक बारे में आप लोग जइयो और हमारा दोस्त राजन द्वार का स्पोर्ट के बारे में जाना बतिया है तो कर काम में हम दखल नहीं वो कर काम है तो अब देखा भैले पोलैंड पोलैंड क्लीम ऐ सुंदर ऐ टोनी हाँ पोलैंड भैया कुछ बताई तू बड़ा जोर पोलैंड जा है तो द पोलैंड क्लीम ऐ सुंदरिंग ऑफ यूरोपीय मिग्रेशन पैक्ट ओकर मतलब है गा भैया पोलैंड है गा इस नर एखर अपरेस उ बोले यूरोपी से जो यूरोपा के असील सुकर से मिग्रेशन है
ter vrijdag in werking is getreden. Het land zal geen extra asielzoekers accepteren. Oese bolem ikko extra asielzoekers namangila Polen bole he. To bole hega, het land is vrijgesteld van de herverdeling van migranten binnen de Europese Unie en daarbij horende onkosten. Dus Tony, jij mag gaan, jij bent geen asielzoeker, jongen. Dus vakantie je kooi mangen jij, dan mag je gewoon naar de Polen gaan. Dit is puur namelijk voor die immigranten. Doen awe bhaiya de koka bhail he. Aur aage ko apna hum program ko sunate he. Aur sunate hi rahenge. Aur yahan pe dekho bhaiya suro paviro jun bole 300 million bhaiya dwangsom ke hega janta ke bhare ke lanti ke bhare ke aur jitna aadmi ke ek dom jagara conference ne कॉन्फ्रेंसी के ओके मांगे हैं सब तरह करे तो आशा समझ भी आ गया है तो क्यूबांस औरत भैया क्यूबा एक औरत के बाद सुरीनाम में बड़ा ढेर क्यूबान हो गए है ना आशा जी तो यहाँ पे बतावे क्यूबांस फ्राउन बफ्राइड उट मेंशन हांदन दर्दस स्लाक्टोफर मेल्ट सेख ओप अन ओप द लुख्त हाफन भैया इस सबके सबन ले के आवे है सुरीनाम देश में क्यूबान के इस सबसे ले जा प्रोटेस्टवे हौसल करवावे भैया जबरदस्ती चलो हौसल करो जाने कौन हौसलवा ना चापू वाला हौसलवा मौसी समझ गए ले तो कौन हौसलवा करे राकेश मोई से जाने है बतिया ये है कि औरत के समान लावे है क्यूबा के औरत के और बोले चल तो के हुआ पे हम मोई मोई काम देवे रेस्टोरेंट में जइयो बामी बनइयो नासी गोरिंग बनइयो नहीं मोई मोई काम करी और ले जाए के प्रोस्टोस्टवी में धकेल ले है और ना कि शहर में ले जाए के जंगल वाला प्रोस्टोस्टवी में धर दे भैया कि जाओ हौसल करो और ऊपर जाओ हौसल कर लो पर शरीर बेच लो बाटे तो तोर पैसो ऊ ले लेवे तो ई अत्याचार है कि ना वो औरत अपन शरीर बेची से प्रोटेस्टवी करी से और ऊ सब औरत के तू जबरदस्ती लाई के मैं आंद्र बदूले और प्रोटेस्टवी में धर देले बाटे फॉर वेंसन ना सुरीनाम से खबरा और बोले 9 तारीख के एक क्यूबा के औरत या भगल है भैया भगल है और जाए किसी पाही नालिश करी से डियर वार्निंग पर हमारी फॉर ब्लेफन मोकलक्स लाख ऑफर वारफन मेंशन हैंडल और जाए के नालिश करी से तो एमा पकड़ान है आदमी भैया और बोले है तेजस द एक्सी वर्न टू फॉर मीन द लाख ऑफर्स आंगेट्रोफन दुगो मिलल है और बताए गए हैगा फॉल्स बिलीफ द सलाइसे और बोले लाइसेगा अनफरक्लारबार स्कूल फन 6000 अमेरिकन डॉलर के बोले उसे के स्कूल दीसे ना अनकम सो हन एन अनफरक्लार द स्कूल फन 6000 अमेरिकन डॉलर से opgeleerd ook zouden zijn beperkt in hun bewegingsvrijheid de vrouwen verklaarden verder dat zij verder gedwongen om de om als prostituee usapke zo maar bole 6000 dollar tu bhariye ab jao kamai kamai humme bharo to ye baat hai to kumar shanu casino ke baat cheez kare hai ki ab dekho क्या हो रहा है हमारे जब देखो भौजी के का भइल है हमारे प्यारी भौजी के का भइल है हाँ हवा पंपू करे हारजेस तो बात ये हुए भैया भौजी के का भइल हमारे भौजी के कटली से दौड़ैले माटे नानी ई चक्कल से देख हमार सुरीनाम में और एगो मन फाल पार्टनर एंड कॉन्शियस भौजी के और पपान में कटली से भैया मारी से ओ तो के आईना फैना सब झाड़ के नब चक्का चूर कर दे से ई बात हुए भैया बनवारी स्त्रात है बुधवार के तो बतावे सरनाम में पार्टनर एंड हार्शियस और बोले हैगा अन अन गटलीस लेके गए अनफाल करी से ओ तो फोटो तोड़ दे से हो टाइम के सिपाही एकर बारे में गए है और पार्टनर अल ट्वे यार सामन ऑफ इट एड्रेस वुंडन फॉर द फ्रॉम द मदर इज फ्रॉम बेबी तो ये सब बात है हमारे भौजी के सब कोई भौजी के देवे कुकू खाई के भौजी से प्यार करे है अई भौजी के कटलीस से गैला काटे आप लोग जानो है और ये हैगा यशरून के बारे में सफीरा
Safira Yesru, maar ja, Amerika meer ha, van de OES topmedewerker top, top ha. Hou ik ze mijn diplomaten paspoort ze beleken. Hou daar deze ga, punt ik waar met Amerika diplomaten visum ik er door ha. Yesru in ke, Safira je ingetrokken. Hou ik ke, ja ik een lange rechtmatig feest me verblijf kretra. Hou maar retra Amerika me, heb je Suriname met Chile al he. Amerikaanse minister van buitenlandse zaken bole bole ke visum intrekken li he. Om de Suriname ik is strafrechtelijke onderzoek naar vermoedelijke corruptie tegen Yesri loop corruptie bij jantje Johan Suna Suna tak gaili sarname bij jantje etana corruptie deswa kali corruptie se chale bij jantje 1 ghanta hoige hamara news awa haan 1 ghanta hoige da 1 ghanta je hoige tab to samajh gaili kya hone wala hai Shakti String तो दोस्तों इसी प्रोग्राम से Never know, दोस्तों never know. हमारा प्रोग्राम हर शुक्रवार को शाम को 6 से 7 बजे तक चलते हैं मंगलवार को शाम को 6 बजे सब रविवार को दिन में 1 बजे हम हर हाल करते हैं जितने लोग हमारा

दोस्तों हम चलते हैं एक मस्त भरी गाना के ओर, लता जी और राजकुमार। और इस फिल्म बहुत पुराना फिल्म है, फिल्म साधना का ये गाना है। लता जी इसमें यानी कि इस गाना को गाया है दोस्तों, और इस गाना आओ मिलकर सुना जाए। कुछ पुराने गाने से आज हम आप लोग को सेवा करेंगे।

बस ही हमारे प्यारे प्यारे सुनने वालों, ये एक बहुत मस्त भरी पुराना गाना है दोस्तों, और ये है लता जी इसका गाना, इस फिल्म में यानी कि इस गाना को गाया है। और आगे को हम अगला गाना की ओर बढ़ते हैं, और आज हम आप लोग को मस्त भरी गाना से, और जैसे हर हर प्रोग्राम में चलाते हैं, आज भी हम चलाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों हम और आगे चला जाएं, और ये भी एक पुराना गाना है, सब कुछ सीखा, सब कुछ सीखा है हमने, मैं सिर्फ एक ही बात नहीं सीखा है, और वो क्या है भैया, हम तो है अनारी, और ये अगर अनारी होगा तो क्या सीखेंगे, ये बात हम नहीं कहते हैं, मुकेश जी कहते हैं, आओ मिलकर सुना जाए।

0: सब कुछ सीखा हमने और सिर्फ एक बात जो नहीं सीखा है तो वो है होशियारी। दोस्तों होशियारी, हम अपना प्रोग्राम को और आगे को बढ़ाते हैं और मस्त भरी पुराने गाने से आप लोग को आज हम फिर सेवा करेंगे हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों। और कहते हैं जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे संग तो तुम भी गुनगुनाने लगोगे। तो हमारा आपसे यही बात है कि जो गाना हम यहाँ पर चलाने जाते हैं रवि जी की है फिल्म, जो इसमें काम किए हैं वो शमी कपूर आशा परेख ने। और अगर आप ये गाना सुनेंगे तो मुझे यही विश्वास है, यही गारंटी है कि आप भी गुनगुनाने लगेंगे, मुझे यही उम्मीद है दोस्तों। तो आओ मिल के सुना जाए कि जॉनी कौन गाना ट्राई करे कि हम में भी बैठ के गुनगुनाने पड़ेगे। तो आओ सुना जाए।
1: तुम मुझसे यही सवाल किया था
2: क्या
1: मैं तुम्हें भूल जाऊं तो
2: तुमने क्या जवाब दिया?

और जो तुम मुझे भुला ना पाओगे जब तुम मुझको देखोगे तो कैसे आप आएंगे। ये बात मुकेश जी ये गाना को आपको सुनाई है दोस्तों। अपना प्रोग्राम को हम और आगे को बढ़ाते हैं और आज भी आप लोग के मस्त भरी पुरानी गाना से हम आज आप लोग को सेवा करेंगे। हम चलते हैं, राज कपूर का फिल्म है और मुकेश जी ये गाना को गाए हैं।

उस देश के वासी हम हैं, और वो देश कौन है दोस्तों, जहाँ पे मुकेश रहते थे, और वो है गंगा जहाँ पे बहते हैं, और हम उस देश के वासी हैं दोस्तों, सूरीनाम के देश के वासी तो हम सब है। और मुकेश जी ये गाना को आपको सुनाए हैं दोस्तों, अगर आप मुकेश की सुन चुके होंगे तो हम चलते हैं रफी जी के गाना भी सुनना चाहिए, और वो है इशारों इशारों में। क्या होता है इशारों इशारों में, तो कभी दिल चला जाता है, नहीं दिल दिल को चुरा लेता है, दोनों होता है ना। तो आओ मिलके सुना जाए मोहम्मद रफी जी की आवाज।

इशारों इशारों में दिल देने वाले परमान श्री मोहम्मद रफी की आवाज़ में इस गाना के आपने सुना है और आशा भोसले की आवाज़ में दोस्तों। और अगर रफ़ी जी जब पिक सुनाया है तो हम तुरंत जाते करोड़ों दिल को चुराने वाले और वो है मुकेश। फिल्म का नाम है श्री 420 नेकंती होंदित 515 तक का ये फिल्म है जिसमें राज कपूर और नरगिस ने काम किया है दोस्तों। आओ मिलके सुना जाए।

और फिल्म श्री 420 का ये गाना हमने निकाल कर आप लोग को सुना दिए है। नई खतीर 5/5 तक का फिल्म राजकुमार और नरगिस का इस गाने में गाया है मुकेश जी और लता जी। दोस्तों हम बढ़ते हैं फिर अगला गाना की ओर, वो है परमाशी मोहम्मद रफी का ये गाना है और इसमें काम किया है शायरा बानो राजेंद्र कुमार। फिल्म का नाम है अरमान, फिल्म के नाम है अरमान और ये गाना क्या है धोरो मस्त भरी पुरानी गाने से आज हम आप लोग को सेवा करेंगे। मिशिक है शंकर जय किशन का और इस गाना को लिखा है हसर जयपुर का ये गाना है और आओ मिलकर सुना जाए।

तुम्हारी हर बांस पे है मुझे बहुत नाज दोस्तों। शेरा बानो राजेंद्र कुमार ने फिल्म अरमान में काम किया है और परमाशी मोहम्मद रफी जी के गाना है हसर जयपुर के साथ में। और हम और आगे को चलते हैं अपना प्रोग्राम को लेकर हमारे दोस्तों, और ये फिल्म का नाम है और देवानंद उषा क्या उषा किरण फिल्म के नाम है पतिता का ये फिल्म है। दादा हेमंत कुमार और दीदी लजा जी के आवाज़ में इस गाना को आओ सुनिए।

दादा हेमंत जी के आवाज में आप लोगों इस गाना को सुना है और एक मस्त भरी रोमांटिक हिंदी सॉन्ग है दोस्तों। इसमें काम किया है देवानंद जी और उषा किरण ने। फिल्म का नाम है पतिता दोस्तों। और उसके बाद हम चलते हैं और एक गाना के ओर और वो भी है फिल्म के नाम है, ये भी एक बहुत पुराना फिल्म है अलबेला का ये गाना है। हमारे दोस्तों लता जी इस फिल्म में इस गाना को गाया है और इसमें भगवान ने बहुत कमाल किया है दोस्तों। आओ मिल के सुना जाए ये गाना क्या है भाई, बहुत पुराना गाना है ये, और सुना जाए।

भोली सूरत दिल के खोटे और नाम बहुत बड़ा है कितरूर कितरे को, लेकिन कर्म बहुत छोटे है दोस्तों। भोली सूरत दिल के खोटे नाम बड़े हैं, बाकी दिल से बहुत खोटे हैं हमारे दोस्तों। और हमारे दोस्तों और ये गाना को जिसके सपने में हम रोज आते हैं और महेंद्र कुमार और लता जी बताए गए हैं, नई खंती सीफन तक का ये गाना है, आओ मिल के सुना जाए।

जिसके सपने हमें रोज आते रहे और गुना गुनगुनाते रहे, वो कहते कि क्या तू ही रह ले भैया। और जो गाना अब हम आप लोग को सुनाएंगे ये है गोरी तेरी नैनों में हम बस गए हैं, हम बस गए हैं। गोविंदा करिश्मा का ये फिल्म है और ये गाना को गाया है हमारा कुमार शानू, कुमार शानू।

वाह क्या बात है शारदा जी, शारदा जी आपको सुनाए ये शानदार गीत हमने पेश किया ऊपर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। चलिए एक नंबर हमने और रखे हैं। जी हाँ, क्या ख्याल अगर जब मैं आपको ये सुनाऊँ इस तरह से।

क्या बात है, मुस्कुराए जा दर्द भाग जाएंगे। ये शानदार गीत चला फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं, तो क्या ख्याल है अगर जब मैं आपको ये सुनाऊं? जी हाँ, ये बहुत पॉपुलर गीत था अपने ज़माने में, तो आप सोच रहे होंगे कौन सा गीत है। चलो सुनते हैं।

कभी भूला कभी याद किया, अलका जी और मुकुल अग्रवाल, ये दोनों मिलके ये शानदार द्वैत आपको सुनाए फान हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम पर। आप चुने जो लोग चुन की मीटर पर, आपका हृदय से स्वागत है। चलिए आपका स्वागत करते हुए, क्या ख्याल है अगर जब मैं आपको ये गीत सुनाऊं, रफ़ी साहब के फिल्म तुम हसीन ए तुम हसी मैं जवां, नई गिनती सईफ अंत का ये गीत।

दिल अच्छा है, अच्छी सूरत, रफ़ी साहब छेड़छाड़ रहा था ना, तो रफ़ी के छेड़छाड़ देखकर सुनकर और जानकर तो महेंद्र कपूर जी भी भड़क उठे। तो लीजिए, महेंद्र कपूर भी कहता है चलिए मैं भी छेड़खानी करूँ ना, इसलिए महेंद्र कपूर जी इस तरह से फिल्म किस्मत में से निकितिन अख्तिन शस्त्र का ये गीत

One, two, three, baby, या, ये शानदार गीत चला ओ बी नैयर के साज पर हमने फिल्म किस्मत में से निकाले हैं। तो मुकेश जी कह रहा है, भैया अगर आप लोग छेड़खानी कर रहे हो तो मैं भी पीछे तो रही हूँ।

जाना तुम्हारे प्यार में शैतान बन गया हूँ, ये गीत आपको सुनाया गया। मैं तो मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस, ये भी एक शेरखानी का गीत था। तो चलिए आशा जी और शमशाद बेगम जी, आशा और शमशाद बेगम जी भी अपने में छेड़खानी कर रहे हैं, तो चलिए आप सुनते इस तरह से आशा जी और शमशाद बेगम का छेड़खानी।

आशा जी और शमशाद बेगम मिलके आपको सुनाए ये गीत और हमने पेश किए कार्यक्रम में। चलिए अगला गीत हम आपको कुछ सुनाने वाले हैं और वो है, चलिए आशा जी चलिए सुनते हैं वो कौन सा राज बताना चाहती है। हाँ, मैं भी सुन जानना चाहता हूँ, आप भी जानना चाहते होंगे, तो लीजिए आशा जी के राज क्या है।

अच्छा तो ये बात है, आशा जी ने न कहा भी न बताया भी। चलो अच्छा, अभी सुन लेंगे कैसा राज वो बताना चाहती थी। फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर आप चून हैं, तो अगर जब आप चून हैं फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर, तो हम आपको ये गीत सुनाते हैं।

दिल विल प्यार व्यार मैं क्या जानू रे। जी हाँ लता जी, आप खुद सुनाए निगेती से अपने शस्त्र का ये गीत 1967 का ये गीत फिल्म शागिर्द में से निकाल कर हमने पेश की फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। चलिए सुनते हैं मंगल सिंह क्या कह रहा है, ये भी छेड़खानी की बात कर रहा है। चलो सुनते हैं मंगल सिंह क्या कह रहा है।

टाइटल सॉन्ग रफ़ी साहब की हम आपको सुनाए हैं, और शंकर जय किशन के साज पर फिल्म प्यार ही प्यार में। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं, ये गीत आप सुनिए, बस इस तरह से आ रहा है श्याम जी, हाँ ये गीत।

मैति मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस आपको सुनाए ये शानदार गीत फॉन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में हमने निकाले हैं नेघिनती नेघिन शस्त्र से 1969 से ये गीत। चलिए प्रोग्राम में हम पेश करते हैं क्या ख्याल है अगर जब मैं आपको ये सुनाऊं। जी हाँ, एवरग्रीन किशोर कुमार फिल्म धर्मात्मा में से नेघिनती फेफड़े से इफ्फत का ये गीत 1975 का ये गीत क्या ख्याल है। हाँ

एवरग्रीन किशोर कुमार आपको सुनाए ये शानदार गीत नेगेटिव 5 & 6 में, तो 1975 का ये गीत फिल्म धर्मात्मा में से हमने निकाले हैं। चलिए आप भी हैं और मैं भी हूँ, मैं चला रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, आप सबका हृदय से स्वागत है। आपका स्वागत करते हुए चलिए हम आपको ये गीत सुनाते हैं इस तरह से।

जी हाँ, तुम बिन रफ़ी साहब की आवाज़ में सुनाया गया ये शानदार गीत काफ़ी प्रचलित था, अब भी है और शायद ऐसा रहेगा भी, यानी बहुत पॉपुलर था, है और पॉपुलर रहेगा। ये शानदार गीत हमने पेश की। चलिए अगला नंबर हम चलाने वाले हैं राहत फ़तेह अली खान। जी हाँ, राहत फ़तेह अली खान आपको क्या सुना रहा है।

0: राहत फतेह अली खान जी और सुशांत जी मिलके फिल्म दे दना दन में से हमने निकाल कर आपको सुनाए हैं। चलिए विज्ञापन से पहले हम आपको ये गीत सुनाते हैं, क्या ख्याल है अगर जे ये हम आपको सुनाए।
1: लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।

0: वाह क्या बात है, लता जी की आवाज़ में आपने सुने ये शानदार गीत फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के www.fawn.fm पिंतनाल पर आप चुने जो लोग चुन की मीटर पर आपका हृदय से स्वागत है और कार्यक्रम आप सुन रहे जहाँ भी होंगे जो भी कर रहे होंगे एक बार फिर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो द्वारा आपको हृदय से स्वागत किया जा रहा है.
1: Geschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden.

मधुमन खुशबू देता है, सागर सावन देता है. फिल्म साजन बिन सोहागन निगतिन अख्त सैफ इंतक येसुदास उषा खन्ना के साज पर हम आपको ये गीत सुनाए हैं. आप चुने फान हिंदुस्तानी रेडियो पर आपका हृदय से स्वागत है. चलिए आप कार्यक्रम नज़दीक से बैठ कर सुन रहे हैं जहाँ तक मेरा ख्याल पता चला है, तो हम आपको ये सुनाते हैं इस तरह से.

आतिफ असलम आपको सुनाए। ये शानदार गीत हमने पेश की फॉर हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। चलिए हमने ये गीत रखे हैं, क्या ख्याल है? आ रही है सलमा आगा जी। जी हाँ, सलमा आगा जी।

0: सलाम आगा, आपको सुनाए ये शानदार गीत और हमने पेश की कार्यक्रम में, आपको अवश्य अच्छा लगा होगा ये गीत। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं और वो है, चलो सुनते हैं ये गीत। हाँ
1: संग रहने की।
0: अच्छा
1: आए।

0: लता जी आपको सुनाए हंस परदेसी और कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जो लोग ऐप करते हैं, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप कार्यक्रम सुन रहे हैं। जैसे अल्फानंद रैन के रहने वाला श्रीमान। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं और क्या ख्याल है अगर मैं आपको ये सुनाऊं
1: के आ गई रुत मस्तानी ओढ़ो।

ढोल सजना ढोल जानी रफी साहेब और लता जी मिलके आपको सुनाए हैं ये कार्यक्रम में हमने पेश की। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं, क्या ख्याल है? चलो सुनते हैं कि राहत फतेह अली खान जी, जी हाँ, अपने झड़कने वाले जिया के बारे में क्या कह रहा है। चलो सुनते हैं, बहुत दिन हुए हम भी नहीं सुने कि धड़कते हुए दिल कैसा होता है। राहत फतेह अली खान जी।

जिया धड़क धड़क जाए। तो चलिए अगला गीत हम आपको सुनाने वाले हैं। क्या देखते हैं शारदा जी, राहत फतेह अली खान के धड़कने वाला दिल को राहत दे सकती है। चलो सुनते हैं।

वाह शाबाश, क्या बात है। लता जी की आवाज़ में हम पेश किए फ़ौन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में शकील बदायूं की लिखी हुई गीत लता जी की आवाज़ में फिल्म आदमी में से निकाल कर नौशाद अली के साज पर। चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं, ये भी एक लता जी का गीत है और साथ दे रही लता जी और मुकेश मेरी सूरत तेरी आंखें में से निकाल रहे हैं। ये प्यारा गीत सुन लीजिएगा मुकेश जी और लता जी।

ये किसने गीत छेड़ा और किसने किसकी जुल्फ बिखरी। जी हाँ, लता जी और मुकेश जी मिल के आपको सुनाए हैं फिल्म मेरी सूरत तेरी आंखें में से निकाल कर हमने पेश किए। चलिए, आप कार्यक्रम सुन रहे हैं, मैं चला रहा हूँ, बहुत आप पसंद कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो लीजिए, क्या ख्याल अगर जब मैं आपको ये गीत सुनाऊँ इस तरह से।

फिल्म सुर में से निकाल कर महालक्ष्मी ने आपको सुनाए द्रमर, तो पीट पाट कर द्रम रख दिया। बहरहाल फान हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम आप सुन रहे हैं, जो लोग चुन के मीटर पर, आपका स्वागत है। फिल्म सुर में से निकाले जैसे मैंने कहा और हमने पेश की। चलिए अगला गीत। ठहर जाओ अगर आपको कहीं जाना है थोड़ी देर रुक जाओ, हाँ थोड़ी देर रुक जाना।

थोड़ा सा ठहरो, लता जी आपको सुनाए ये शानदार गीत फिल्म फिक्टोरिया तूनो द्री में से निकाल कर हमने पेश किया है ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं और ये है एवरग्रीन किशोर कुमार और आशा जी आरती बर्मन के साज पर। फिल्म तो आपने अवश्य देखे होंगे, फिल्म सीता और गीता नेगेटिव तो 1972 का ये गीत है, 72 का ये फिल्म है और रमेश सिप्पी और जीपी सिप्पी बनाने वाले इस फिल्म का। रमेश सिप्पी जीपी सिप्पी ये दोनों सिप्पी जो है ये दोनों फिल्म शोले के बनाने वाले हैं और साथ मिलकर क्या नाम है सलमान खान का पिता का सलीम खान, सलीम खान और जीपी सिप्पी ने मिलकर ये फिल्म बनाए हैं फिल्म सीता और गीता। हम इसे निकाल कर ये गीत हम आपको सुना रहे हैं।

अच्छा जी, ओ किशोर कुमार जी, फिल्म सीता गीता में से निकाले हैं और आपको सुनाए हैं। चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं। जी हाँ, ये गीत रफ़ी साहब का ये गीत है, बहुत पुराना गीत है, निगेटिव फिर शस्त्र का। ये गीत को लेकर कितने बैठक गाना में भी गाए हैं, लेकिन ये बैठक गाना निकाले कहाँ से? फिल्म फिल्म जी हाँ, फिल्म सजनी से भैले मुलाकात, फिल्म का नाम है सजना से भैले मुलाकात, फिल्म का नाम है सजना से भैले मुलाकात। रवि साहब आपको सुना रहे हैं निकिति फिर शस्त्र का ये गीत, सुन लीजिएगा।

0: दिखली।
1: रफी साहब की आवाज में आपको सुनाया गया है ये गीत, जब से दिखली सूरतिया तुहार गोरिया। जैसे मैंने कहा नहीं कि फिर से असख का गीत है, फिल्म है सजना से भैले मिलनवा, उसी फिल्म में से निकाल कर हम आपको सुनाए हैं। तो क्या ख्याल है अगर हम ये चलाएं आपके लिए कि लोग तो कहते हैं लेकिन पता नहीं निर्णय आपका क्या है, दिल उसे ही देना चाहिए जो आपके लिए जान दे, पता नहीं सुनते हैं।

उदित नारायण जी आपको सुनाए चांद की चांदनी गुलाबों की कली मेरे लिए तुझे रब ने बनाया है। हमने बहुत कोशिश की ढूंढने के लिए कौन सा फिल्म का या नॉन फिल्म का होगा, मुझे नहीं पता। अगर आपको पता हो, अगर मुझसे बता देते तो बहुत अच्छा होता। हमने बहुत ढूंढे, नहीं मिला, और शायद सुनने वालों श्रोताओं को भी अच्छा लगे। ये फिल्म का नाम, कौन सी फिल्म का ये गीत है, चलिए गीत हम आपको सुनाते हैं। चलिए जी हाँ, रफ़ी साहब की आवाज़ में ये गीत है।

0: जले।
1: रफी साहब आपको सुनाए शमा जले या न जले। VVV.FM.NL पर आप चुन है, जो लोग चुन की मीटर पर आपका हृदय से स्वागत है। चलिए कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं और बढ़ाते हुए चलिए हम पेश कर रहे हैं ये गीत इस तरह से।

दीवाने को प्यार से देखो, प्यार से पूछो। रफी साहब ने तो छेड़ दी। जी हाँ, प्रेमिका को छेड़ दी तो क्या मुकेश जी ये कह रहा है, अगर आपने प्रेमिका को छेड़ दी तो चलो उनकी तारीफ कर देते हैं हम। दर्पण को जे देखा मैं तो मुकेश द हार्ट ऑफ मिल।

दर्पण को देखा जब तूने किया सिंगार, बार बार किया सिंगार। मैं तो मुकेश, द हार्ट ऑफ मिलियंस आपको सुनाए ये शानदार गीत। इस तरह से फिल्म उपासना में से निकाल कर हम ये गीत पेश किए ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो।

फ्रॉम द मूवी जवान से हमने पेश किए है सुनने वालों जिंदा बंदा, शहजादा है फिल्म का नाम। चलिए इसी फिल्म से ये नाइस सॉन्ग हम पेश करते हैं, छेड़खानियां।

0: शहजादा है फिल्म का नाम, और इसी फिल्म से हमने पेश किए हैं छेड़खानियाँ। छेड़खानियाँ के बाद चलिए मिलकर सुनते हैं मैं निकला। क्या लेकर मैं निकला? गड़ी लेकर।
1: ओ मैंने एक मोटरसाइकिल दिला दो ना।
2: कुछ और मांग लेना, मोटरसाइकिल लो।
3: दिला दीजिए ना।

मैं निकला गड्डी लेके, अभी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी गदर 2, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। इसी फिल्म से हम पेश करते हैं आप सभी के वास्ते वत झुमका।

रॉकी और रानी की प्रेम कहानी इसी फिल्म से हमने पेश की है, वह झुमका चुक चुक जियो इसी फिल्म से। चलिए द पंजाबन सॉन्ग।

द पंजाबन सॉन्ग अभी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी जुग जुग जियो। तू झूठी मैं मक्कार फिल्म का नाम है सुनने वालों, और इसी फिल्म से हम पेश करते हैं शो मी योर ठुमका।

Show me your thumka from the movie Tum Jhooti Main Makkar. इसी फिल्म से हमने पेश किया है सुनने वालों. एक और गीत हो जाए from the movie जवान से, not रमैया वस्तावैया.

फ्रॉम द मूवी गणपत से आपने सुने हैं हम आए हैं, पठान है फिल्म का नाम, और इसी फिल्म से आप सुनेंगे बेशरम रंग।

हमें टुलू टिलिया मिलके हुस्न वालों ने अभी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी पठान से हमने पेश किए हैं मेरा पिया घर आया।

फिल्म भेड़िया से हमने पेश किए हैं ओ ठुम केशवरी, और ओ ठुम केशवरी के बाद हम आपको सुनाने वाले हैं कुड़ियेनी तेरी।

अभी आप सुन रहे थे कुड़ी नी तेरी, और अगला गीत जो हम पेश करने वाले हैं, गीत का बोल है तुम क्या मिले।

The title from the movie तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया भी आप सुन रहे थे सुनने वालों. Fighter है फिल्म का नाम और इसी फिल्म से हम पेश करते हैं इश्क जैसा कुछ.

0: फ्रॉम द मूवी फाइटर से भी आप सुन रहे थे इश्क जैसा कुछ। तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया, इसी फिल्म से एक और गीत हम पेश करने वाले हैं आप सभी के वास्ते, अखिया गुलाब।
1: लाइन मार रही
2: हूँ, लाइन मार रही हूँ।

अखिया गुलाब, अभी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया। जवान है फिल्म का नाम सुनने वालों, और इसी फिल्म से हम पेश करते हैं चलिया।

फ्रॉम द मूवी जवान से अभी आप सुन रहे थे चलिया। रॉकी और रानी की प्रेम कहानी इसी फिल्म से हम पेश करते हैं वो झुमका।

0: What chumka?
1: अभी आप सुन रहे थे वो झुमका, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी से हमने पेश की है सुनने वालों। पठान है फिल्म का नाम, इसी फिल्म से ये सॉन्ग हो जाए।

हमें तो लूट लिया आमिर के हुस्न वालों ने। अभी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी पठान से हमने पेश किए हैं सुनने वालों, दिल का टेलीफोन, ड्रीम गर्ल टू से आप सुनेंगे।

दिल का टेलीफोन अभी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी ड्रीम गर्ल, तो उसे हमने पेश किए है सुनने वालों। टाइगर ट्री है फिल्म का नाम और इसी फिल्म से हम पेश करते हैं लेके प्रभु का नाम।

लेके प्रभु का नाम अभी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी टाइगर 3 से हमने पेश किए हैं। जरा सा हम देखे, जी हाँ, फिल्म का नाम है डंकी और इसी फिल्म से हम पेश करते हैं लुटपुट गया

लुटपुट गया अभी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी डुंकी से हमने पेश किए हैं सुनने वालों जवान। इसी फिल्म से एक और गीत हम चलाने वाले हैं नौतरमैया वस्तावैया।

फ्रॉम द मूवी जवान से भी आप सुन रहे थे रमैया वस्तावैया। हीरिये रेस थ्री इसी फिल्म से हम पेश करते हैं आप सभी के वास्ते, चलिए मिलकर सुनते हैं।

0: subscribe now.
1: हीरी अभी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी रेस 3 से हमने पेश किए हैं ला पीली अखिया फ्रॉम द मूवी तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया.

0: useless.
1: Okay.

लाल पीली अखियां भी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया फाइटर। इसी फिल्म से एक और गीत हम चलाने वाले हैं, शेर खुल गई।

फाइटर है फिल्म का नाम। इसी फिल्म से हमने पेश किए हैं शेर खुल गए। मैंने पी रखी फ्रॉम द मूवी तू झूठी मैं मकार।

अभी आप सुन रहे थे मैंने पी रखी है फ्रॉम द मूवी तू झूठी मैं मक्कार, इसी फिल्म से हमने पेश किए हैं आप सभी के वास्ते।

दिल लेके दर्दे दिल दे गए फ्रॉम द मूवी वांटेड से हमने पेश किए हैं सुनने वालों। मैं रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी अरिजीत सिंह आपको सुनाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी फटा पोस्टर निकला हीरो।

रंग शरबतों का मैं मीठे घाट का पानी अभी आप सुन रहे थे। फटा पोस्टर यानी फिल्म का नाम है, फटा पोस्टर निकला हीरो, तेरा फितूर जब से चढ़ गया रे।

मेरा फितूर जब से चढ़ गया रे, अभी आप सुन रहे थे अरिजीत सिंह जी की आवाज़ में तेरे वास्ते मेरा इश्क सूफियाना। द डर्टी पिक्चर है फिल्म का नाम।

तेरे वास्ते मेरा इश्क सूफियाना भी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी द डर्टी पिक्चर। अतीफ असलम आपको सुनाने वाले हैं दिल मेरी ना सुने।

दिल मेरी ना सुने, अभी आप सुन रहे थे अतीफ असलम की आवाज़ में। सुल्तान है फिल्म का नाम। इसी फिल्म से हम पेश करते हैं जग घूमिया थारे जैसा ना कोई।

जग घूमिया अठारे जैसा न कोई, अभी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी सुल्तान से हमने पेश किए हैं। तेरे नैना बड़े कातिल मार ही डालेंगे।

मेरे नैना बड़े काते हो मार ही डालेंगे, अभी आप सुन रहे थे फलक तक चल साथ मेरे।

फलक तक चल साथ मेरे, अभी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी तशन से हमने पेश किए हैं। सजदे की यह है लाखों लाखों दुआएं मांगे, पाया है मैंने फिर तुझे। खट्टा मीठा है फिल्म का नाम, चलिए मिलकर सुनते हैं।

अभी आप सुन रहे थे सजदे किए हैं लाखों लाखों दुआएं मांगी, पाया है मैंने फिर तुझे। प्रोग्राम को हम आगे में बढ़ाते हैं सुनने वालों, और फ्रॉम द मूवी फिदा से हम पेश करते हैं

अभी आप सुन रहे थे दिल मेरे ना और इंतज़ार कर फ्रॉम द मूवी फिरा से हमने पेश किए हैं सुनेवा।

अवतार कर सकते हैं। सोमवार से लेकर शुक्रवार थे सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 9736523247। मेरे इन्फो radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070 365 22.

हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम आप श्रोताओं की सेवा में लाइव ब्रॉडकास्ट है। आप चुन है अब द प्लस रेडियो पर नतीलक उक्त बलैस्त्रफिया इंटरनेट के लहर द्वारा फाहुन एफएम पिंटनल पर ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। हमारे फुल टीम की तरफ से आप श्रोताओं को एक बार फिर से स्वागतम कार्यक्रम में। तमाम टैक्सी ड्राइवर जो कार्यक्रम को भी सुन रहे हैं आप सभी को फिर से एक बार स्वागतम। अनतिलक वर्क्स बॉयज एंड गर्ल एंड बदंत है जहां पर भी हो जी साल में हो फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का ढेर सारा प्यार दुलार और प्रेम मोहब्बत के साथ आप सभी तक पहुंचे मैं थिल फील लश्तर प्लेजीर के साथ अनतिलक। तो जो भी रेडियो का काम हो खास फरमाई से हो जरूरी खबरें या तो आप एक व्यापार हो तो अपने व्यापारी के बारे में जरूर कमर्शियल बनवा कर या तो आप एक ऑर्गामान हो ऑर्गा वुमन हो इफनमेतन और खानी साथ और तो जो आप ऑर्गेनाइज करते हैं या अपने व्यापारी के बारे में जरूर कमर्शियल बनवा कर और फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से ब्रॉडकास्ट ऐलान करवाना यारो तो देखना कैसे चमककार पे चमककार हो जाएगा। ये बात मैं आप श्रोताओं से इसलिए कह रहा हूं क्योंकि तमाम लोग फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम को सुनते रहते हैं। किफायत सस्ते दाम सर्विस गारंटी और क्वालिटी स्टार बाय ऑन्स ऑफ द ईस्ट प्लाट्स सभी जानकारी इसके बारे में आप तार करें अब 07-213-65-98 पर या तो आप तार करें अब 07-362-2047 पर। तो जो भी रेडियो का काम हो देन कैन फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो। इसी तरह हम लोगों के बारे में रिक्लाम बनाते रहना यारो चर्चा करते रहना हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू और फूल टीम की तरफ से इसके लिए तह दिल से धन्यवाद। हिंदुस्तानी रेडियो तो गुजारिश बिनती निवेदन प्रार्थना किया जा रहा है कि आप भी जल्द से जल्द फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का मेंबर बने और ओ को भी बनाए। सभी जानकारी इसके बारे में आप तार करें तय कंटोर यूरोपनोल पर आप तार करें या तो अब 07-365-2047 पर। तो जो भी रेडियो का काम हो देन कैन फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो या तो आप भी जल्द से जल्द फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का मेंबर बने औरों को भी बनाए। En niet te vergeten om een beetje reclame voor ons te maken. Fahun Hindustani Radio 24 hours at your service. Wat ik moet ik nagma suna dit aan aap je dono bhai behen jo yaar 80 mein duniya bhar mein halchal macha di thi met het nummer aap jaisa koi mere zindagi mein aaye। एक अति सुंदर बयान है भाई बहन हमने मिल के गाए हैं बीबीसी लाइफ 1980 तेरे कदमों को चूमूंगा नासिया एंड सोहेब हसन।

0: ब्यूटीफुल सॉन्ग तेरे कदमों को चुमूंगा, भाई और बहन सोहेब अंत नासिया हसन के मधुर आवाज में इतनी सुंदर बयान आप श्रोताओं ने सुना। 1980 बीबीसी लाइव ऑन द हाई क्यू ऑडियो टेलीविजन स्टूडियो। तो दोस्तों, वादा के मुताबिक जैसे मैं आप सभी से कह चुका था, कुछ कहानियां और कुछ बातें सुनेंगे आप ये महान गाने वाली के बारे में। महान अभिनेत्री बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का तबस्सुम ने एक इंटरव्यू लिया था एडियार तख्तख इन बॉलीवुड मुंबई। तो मिलके सुनते हैं
1: ये शेर। सुनिए, फूल खिलता है बिखरने का तसव्वुर लेकर, फूल खिलता है बिखरने का तसव्वुर लेकर, जिसको हंसता हुआ पाओगे परेशान होगा। पाकिस्तान की मशहूर सिंगर नाजिया हसन से मेरी मुलाकात हुई, मैंने उनका इंटरव्यू लिया और मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई थी। लेकिन उस वक्त बहुत ज्यादा तकलीफ हुई जब मैंने ये सुना कि उनकी डेथ हो गई और वो भी सिर्फ 35 साल की उम्र में, उन्हें कैंसर हो गया था। और उसके बाद उनकी बहुत सी प्यारी प्यारी बातें मुझे याद आने।
2: उनसे जब दिल की बात होती है, वजद में कायनात होती है, क्या करें बात बेवफाओं से, बात वालों से बात होती है। आइए आज उस लड़की से बात करें जिसके एक ही गाने से फिल्म इंडस्ट्री में उसकी बात बन गई, नाजिया हसन। नाजिया
3: जी,
2: कैसी हैं आप?
3: ठीक ठाक।
2: बिल्कुल ठीक ठाक। मैं ये चाहती हूँ कि आज प्रोग्राम की शुरुआत करने से पहले क्यों ना हम आप ही की आवाज़ में, खालिस शुद्ध आपकी आवाज़ में, यानी बगैर साजों के, वो गाना सुन लें जिसने तहलका मचाया था।
3: आप जैसा कोई।
2: बिल्कुल
3: ठीक है,
2: जरा गुनगुनाइए।

0: पर।
1: अरे रे रे रे, ऐसा लगा जैसे दिल चलते चलते दिल की धड़कन बंद हो गई हो।
0: आगे बढ़ने से पहले मैं जो आपको देख रही थी उसे देखते हुए एक ख्याल मेरे जहन में आ रहा है, वो ये कि आप में निस्वानियत ग्रेस बहुत ज़्यादा है, और ये लोच ये लचक खास तौर पे गाते हुए जो आप मगन हो जाती हैं और आपके अंग अंग से रिदम फूटा पड़ता है, ऐसा लगता है कि आपने डांस भी सीखा है।
2: नहीं
0: नहीं सीखा?
2: नहीं।
0: तो यानी सारी कारस्तानी जो है बगैर सीखे हुए हो रही है?
2: कारस्तानी,
0: कारस्तानी मतलब ये कयामत, ये गॉड गिफ्टेड टैलेंट जो है बगैर सीखे हुए सब चला आ रहा है। तो आपको ये महसूस नहीं होता कि अगर आप थोड़ा सा पॉलिश करने के लिए अगर वाकई गाना भी और सीख लें और डांस भी सीख लें तो सोने पे सुहागा हो जाएगा?
2: पता नहीं, अभी तो नहीं सीखा। अभी स्कूल है ना, तो इतना टाइम नहीं मिलता। जब शायद स्कूल के बाद या कॉलेज के बाद देखूंगी, लेकिन अभी तो नहीं कर रही कुछ।
0: कर तो कुछ नहीं रही, लेकिन करने की ख्वाहिश है, तमन्ना है कि वाकई और सीखा जाए और ज्यादा परफेक्ट हुआ जाए इस लाइन में?
2: नहीं
0: नहीं, ये तमन्ना बहुत बहुत खुशकिस्मत हो, वरना तो लोग इतनी ज्यादा तमन्नाएं करते हैं कि तमन्नाओं के बोझ से दम निकल जाता है। अच्छा, हमने सुना है और अखबारों में भी बहुत पढ़ा है कि आपको फिल्मों में काम करने की ऑफर भी मिल रही है।
2: जी,
0: तो क्या आप एक्सेप्ट कर रही है?
2: नहीं,
0: मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ।
2: क्यों?
0: बस जो मैं सवाल करती हूँ उसका जवाब आप देती हैं। नहीं
2: नहीं
0: ये जी और नहीं, नहीं चलेगा
2: नहीं,
0: बिल्कुल।
2: मैं आपको बताती हूँ जी, ऑफर्स हैं लेकिन मुझे शौक नहीं है फिल्म्स में एक्ट करने का। तो मैंने सबको कहा कि नो, तो सब कहते हैं नो, आई सेड नो।
3: एक शेर याद आ गया, जो बीत गए हैं वो जमाने नहीं आते, जो बीत गए हैं वो जमाने नहीं आते, आते हैं नए लोग पुराने नहीं आते। ऐसी ही यादें आपके साथ शेयर करती रहूंगी, देखते रहिए तबस्सुम टॉकीज़।

0: तो भी आप श्रोताओं ने सुना कुछ बातें तबस्सम महान अभिनेत्री हमारे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का इंटरव्यू कर रही थी मशहूर गाने वाली नासिया हसन जी को। अब आप सुनेंगे कुछ अनसुनी बातें इस महान गाने वाली की जो 14 साल की उम्र में हलका मचा दी थी हमारे दुनिया भर के सभी संगीतकारों सभी संगीत प्रेमियों के दिलों में। She created history in Bollywood at the age of 14. But आगे सुनिए।
1: वो ऐसी कलाकार थीं जिन्होंने भारत और पाकिस्तान में म्यूजिक इंडस्ट्री का नक्शा बदल डाला था। उन्होंने महज 15 साल की उम्र में संगीत जगत में ऐसे रिकॉर्ड्स बनाए जो आज भी कायम हैं और फिल्म जगत में एक मिसाल हैं। उनकी आवाज और खूबसूरती को देखकर दोनों देश ही नहीं दुनिया भर से फिल्मों में काम करने के प्रस्ताव आने लगे थे और फिल्म निर्माता उन्हें ब्लैंक चेक तक दे रहे थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि संगीत के शिखर पर पहुंचने के बावजूद ये गायिका एक्टिंग और ग्लैमर से कोसों दूर रहती थी?
2: मुझे दिलचस्पी नहीं है अदाकारी से।
3: कोई दिलचस्पी नहीं?
2: नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जरूर है कि मुझे अपनी एजुकेशन से बहुत लगाव है।
1: क्या आप सोच सकते हैं कि इस गायिका को अपनी सीधी सादी जिंदगी जीने के बदले पति के धोखे और घरेलू हिंसा जैसी कीमत तक चुकानी पड़ी थी?
4: लेकिन मेरा
1: और क्या आप यकीन करेंगे कि बहुत कम उम्र में ही इस गायिका की मौत हो गई और उनकी लाश को भी सुकून पाने के लिए महीनों तक इंतजार करना पड़ा।
5: The fancy?

0: कौन थी ये सिंगिंग सेंसेशन जिसने स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर गाना शुरू किया और तहलका मचा दिया?
1: जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए।
0: क्या खासियत थी उनकी आवाज में जो आज दशकों बाद भी उनका जादू कम नहीं हुआ है? क्यों इतनी उपलब्धियों के बावजूद निजी जिंदगी में नहीं मिल पाया उन्हें कोई सुख, और क्यों उनके दिलफेंक पति पर लगा था उन्हें जहर देने का संगीन आरोप? जानेंगे और भी बहुत कुछ, आप बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं ड्रामा सीरीज भारत और मैं हूं आरजे कंगना। जी हां, वही फिल्मी किस्से वाले आरजे कंगना। जो लोग बॉलीवुड को कुछ दशक पहले से जानते हैं उन्हें समझ में आ गया होगा कि आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं 80 और 90 के दशक की मशहूर गायिका नाजिया हसन की। की पीढ़ी बेशक इनके नाम से कम वाकिफ होगी, लेकिन उस दौर के संगीत प्रेमियों के लिए नाजिया की आवाज दीवानगी से भी कहीं बढ़कर थी। दुनिया नाजिया की आवाज की दीवानी थी, लेकिन उनकी निजी जिंदगी दर्दनाक थी। आज हम आपको सुनाएंगे इस गायिका को 15 की उम्र में मिली करिश्माई पॉपुलैरिटी और 35 साल में हुई दर्दनाक मौत के दरमियानी उथल पुथल भरे 20 साल की अनसुनी दास्तान। लेकिन उससे पहले एक नजर उनके छोटे से शुरुआती जीवन पर। नाजिया हसन का जन्म 3 अप्रैल 1965 को कराची, पाकिस्तान में हुआ। ये पाकिस्तान के नामी बिजनेसमैन बासिर हसन और सोशल वर्कर मुनीजा बासिर की बेटी थी। कराची में जन्म लेने के बाद इनकी परवरिश और पढ़ाई लंदन में हुई। नाजिया हसन की माँ मुनीजा और हिंदी फिल्मों की जानी मानी अदाकारा जीनत अमान अच्छी दोस्त थी। एक दिन वो बासिर दंपत्ति के लंदन स्थित घर पहुंची तो कमरे में उनके नजर गिटार पर पड़ी। वो झट से पूछ बैठी, अरे ये कौन बजाता है? मुनीजा ने जवाब दिया, मेरे दोनों बच्चे म्यूजिक में दिलचस्पी रखते हैं। नाजिया उस समय घर पर ही थी। उन्होंने जीनत को एक गाना सुनाया जो सभी को काफी पसंद आया। एक दिन बाद जीनत ने मुनीजा को कॉल किया और कहा, इंडिया में एक्टर फिरोज खान एक फिल्म बना रहे हैं और उन्हें इसके लिए एक नई आवाज की जरूरत है। मुझे लगता है नाजिया की आवाज उन्हें पसंद आएगी। ये किस्सा नाजिया की मां ने बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में सुनाया था। मुनीजा ने पहली बार में तो इनकार कर दिया, क्योंकि मुस्लिम परिवार की लड़कियों को इतना खुला माहौल नहीं दिया जाता था। लेकिन इसके बावजूद जब जीनत अमान ने जिद की तो उन्होंने कहा कि वो पति से बात करके ही कोई जवाब देंगी। शुरू में तो बासिर नाराज हुए, लेकिन कुछ मिनटों की बहस के बाद उन्हें अपनी पत्नी मुनीजा के आगे झुकना पड़ा। जीनत ने मुनीजा और नाजिया की मुलाकात फिरोज खान से करवाई। इस फिल्म के गानों और स्कोर के लिए वैसे तो कल्याण जी आनंद जी म्यूजिक दे रहे थे, लेकिन कुछ गानों के लिए उन्होंने लंदन के एक भारतीय मूल के संगीतकार बिद्दू से बात की थी। बिद्दू आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक वाद्य यंत्रों से कमाल का संगीत बना रहे थे, जो उन दिनों पश्चिमी देशों में बेहद लोकप्रिय था। 15 साल की नाजिया की आवाज से इम्प्रेस होकर फिरोज खान ने उन्हें अपनी फिल्म कुर्बानी में गाने का मौका दिया, जो 1980 में रिलीज हुई थी। नाजिया ने फिल्म के लिए बिद्दू के संगीत निर्देशन में आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए गाया, जो चार्ट बस्टर साबित हुआ।
2: Ultra Comfort Lokvleugels zijn zo ontworpen dat het maandverband beter...

0: की रिकॉर्डिंग यूके में ही हुई थी, जिसके लिए नाजिया अपने स्कूल से हाफ डे की छुट्टी लेकर स्कूल ड्रेस में ही रिकॉर्डिंग के लिए जाती थी। रिकॉर्डिंग के बाद नाजिया अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो गईं, लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई तो ये गाना चार्टबस्टर साबित हुआ। एक दिन मुनीजा के पास मशहूर निर्माता निर्देशक राज कपूर का कॉल आया। उन्होंने कहा कि इस साल बेस्ट प्लेबैक सिंगर का फिल्म फेयर अवार्ड नाजिया को मिलेगा। फिर पूछा, क्या आप अवार्ड लेने भारत आएंगी? ऐसा पहली बार हुआ था कि 15 साल की उम्र में किसी कलाकार को फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया हो। भारत में दिया जाने वाला ये पुरस्कार इससे पहले किसी पाकिस्तानी को नहीं दिया गया था। उनसे पहले और बाद में आज तक फिल्म फेयर अवार्ड के इतिहास में ऐसा दोबारा नहीं हुआ। संभवतः पहली बार इस अवार्ड को पाने वाले को फंक्शन से पहले ही बता दिया गया था। बहरहाल साल 1981 में पूरा परिवार भारत आया और नाजिया को शोमैन राज कपूर के हाथों ही फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया। बेस्ट फीमेल सिंगर का ये पुरस्कार नाजिया को आप जैसा कोई गाने के लिए दिया गया था। अवार्ड नाइट के दिन जिस होटल में नाजिया ठहरी थी वहां दर्जनों मीडिया कर्मियों का जमावड़ा उनसे बात करने के लिए इंतजार कर रहा था। पहले गाने के बाद ही कम उम्र की नाजिया एक नेशनल सेंसेशन बन गई। उन्होंने 1981 में ही संगीतकार बिद्दू के साथ मिलकर म्यूजिक एल्बम डिस्को दीवाने लॉन्च किया। ये एल्बम भारत और पाकिस्तान का बेस्ट सेलिंग एल्बम बन गया। भारत में तो पहले दिन ही इसके 1,00,000 रिकॉर्ड्स बिक गए। साथ ही इसे फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया के अलावा साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, लैटिन अमेरिका और रशिया में भी काफी पसंद किया गया। अपने पहले ही एल्बम से नाजिया इंटरनेशनल सिंगर बन गई थी। इससे पहले विदेशों में भारतीय फिल्मों के गाने ही लोकप्रिय होते थे, लेकिन डिस्को दीवाने पहला ऐसा नॉन फिल्मी एल्बम था जो बॉलीवुड संगीत पर भी भारी पड़ा। ब्राजील में ये पहला कोई दक्षिण एशियाई एल्बम था जो चार्ट बस्टर बना था। बेहतरीन सिंगर होने के साथ साथ नाजिया बेहद सुंदर भी थी। उनके पॉपुलर होने के बाद हर नामी फिल्म मेकर उन्हें अपनी फिल्म में साइन करना चाहता था। कहते हैं फिल्मों के प्रोड्यूसर उन्हें ऑफर में ब्लैंक चेक तक दे देते थे, लेकिन हर बार नाजिया ऑफर ठुकरा दिया करती थी। दरअसल परिवार वाले मानते थे कि नाजिया के लिए पढ़ाई ज्यादा जरूरी है। एल्बम डिस्को दीवाने इतना पॉपुलर हुआ कि नाजिया जहां जाती थी वहां भीड़ लग जाया करती थी। एक बार जब वो कोलकाता एयरपोर्ट पहुंची तो उन्हें देखने भर के लिए 1,00,000 लोग जमा हो गए थे। नाजिया की बढ़ती पॉपुलैरिटी देखते हुए बिद्दू ने उन्हें अगले साल 1982 में अपने म्यूजिक एल्बम बूम बूम में एक्टिंग करने का भी ऑफर दिया, लेकिन उन्होंने सिर्फ गाना गाया। बाद में इस एल्बम के गानों पर बॉलीवुड की एक फिल्म भी बनी जिसका नाम था स्टार। '84 में रिलीज हुआ नाजिया और जोहेब का एल्बम यंग तरंग पाकिस्तान का पहला एल्बम था जिसमें म्यूजिक वीडियो था। ये उस जमाने का एशिया का सबसे पॉपुलर एल्बम था। 1986 में नाजिया ने बॉलीवुड फिल्मों में गाने गाए जिनके नाम थे दिलवाला, इल्जाम और मैं बलवान। उसी साल उन्होंने अफ्रीका में बनी भारतीय फिल्म अफ्रीकाडली शीला के लिए भी प्लेबैक किया। '87 में नाजिया और जोहेब ने एक एल्बम बनाया जिसका टाइटल था हॉटलाइन। नाजिया गाने तक ही सीमित रही, लेकिन फिल्मों में काम करने के ऑफर उन्हें लगातार मिल रहे थे। कहते हैं अपनी जीवन के आखिरी दौर में जब राज कपूर अपनी फिल्म हिना के लिए हीरोइन की तलाश कर रहे थे, तब उन्होंने नाजिया हसन को भी अप्रोच किया था, लेकिन उन्हें भी निराशा ही हाथ लगी। 1992 में नाजिया ने अपने भाई जोहेब के साथ म्यूजिक एल्बम कैमरा कैमरा रिलीज किया, जिसके ठीक बाद उन्होंने अनाउंस कर दिया कि ये उनका आखिरी एल्बम है। नाजिया का परिवार वैसे तो पढ़ा लिखा था, लेकिन वो फिल्मों में काम करने को नीचा समझता था। पर्सनल लाइफ में फोकस करने के लिए नाजिया ने 1992 में हमेशा के लिए गाना छोड़ दिया। लंदन की रिचमंड अमेरिकन यूनिवर्सिटी से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद 1991 में नाजिया ने यूनाइटेड नेशंस में वुमेन्स इंटरनेशनल लीडरशिप प्रोग्राम में इंटर्नशिप की और बाद में उन्होंने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में नौकरी भी की। उन्होंने लॉ की डिग्री भी हासिल की। 30 मार्च 1995 को घर वालों ने नाजिया की शादी कराची के बिजनेसमैन मिर्जा इश्तियाक बेग से करा दी। इश्तियाक से नाजिया की अरेंज मैरिज थी। 1997 में नाजिया ने बेटे अरेज को जन्म दिया। हालांकि सूत्रों का कहना है कि शादी के कुछ समय बाद ही दोनों के बीच अनबन होने लगी थी। नाजिया का पति इश्तियाक बेग एक दिलफेंक किस्म का इंसान था।
1: Pleasure meeting you. You look prettier. Huh? You look smarter. You look younger. What is the secret of
2: Botox, darling?
0: कहते हैं उसका एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस से अफेयर था। जैसे ही ये बात उन्हें पता चली, तो घर में झगड़े और बढ़ गए। ऐतराज करने पर पति उनके साथ मारपीट करने लगा। नाजिया को बाद में पता चला कि उससे पहले इश्तियाक की 2 शादियां हो चुकी थीं, लेकिन ये बात उनके घर वालों से छिपाई गई थी। नाजिया से पहले इश्तियाक ने फिलीपींस की डांसर हेजल से शादी की थी, जिससे एक बेटा इमरान बेग था। उसकी दूसरी शादी पाकिस्तानी एक्ट्रेस शाजिया से हुई थी। दूसरी पत्नी ने बेग की मेंटल कंडीशन खराब होने पर तलाक ले लिया था। दोनों शादियां नाजिया के परिवार से छिपाई गई थी। 21 जून 2000 को नाजिया ने पाकिस्तान के नामी न्यूज़पेपर डेली जंग को एक इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने पहली बार मारपीट और पति के जुल्मों पर खुलकर बात की। नाजिया ने बताया कि उनका पति मारपीट कर उन पर दबाव बनाता था कि मीडिया में ये कहा जाए कि उनकी शादीशुदा जिंदगी खुशहाल चल रही है, हालांकि ऐसा नहीं था। इस बीच नाजिया गंभीर रूप से बीमार पड़ी और उन्हें फेफड़ों का कैंसर डिटेक्ट हुआ। नाजिया पर दुखों का पहाड़ तब टूट पड़ा जब उनके पति ने कैंसर के इलाज का खर्च उठाने से भी इनकार कर दिया। नाजिया कहती थी पति इश्तियाक बेग के साथ रहने की जगह वो मरना ज्यादा पसंद करेंगी। नाजिया के भाई जोहेब ने भी एक स्टेटमेंट में बताया था कि उनकी बहन को उसके पति ने बंदी बनाकर रखा था। परेशान होकर नाजिया ने साल 2000 में मुस्लिम लॉ के तहत पति से तलाक ले लिया था और अपने पेरेंट्स के साथ रहने लगी। इसके बाद नाजिया का इलाज उनके घर वालों ने लंदन में करवाया। वहां नाजिया की 5 कीमोथेरेपी हुई। इलाज के दौरान नाजिया ने अपने वकील और कुछ गवाहों के सामने एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा कि पति उन्हें जहर दे रहा था और स्लो पॉइजन के असर से उनके शरीर के अंग खराब हो रहे हैं। कहते हैं ये बात लंदन में नाजिया का इलाज कर रहे डॉक्टर्स भी जानते थे। नाजिया ने अपने स्टेटमेंट में कहा था कि अगर उनकी मौत हो जाती है तो इस बात की जांच की जाए। 10 अगस्त 2000 को नाजिया की हालत बिगड़ने पर उन्हें लंदन के नॉर्थ लंदन हॉस्पाइस हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। इलाज के दौरान उनकी हालत सुधर रही थी और डॉक्टर्स उन्हें घर भेजने वाले थे, लेकिन वो घर नहीं लौट सकी। 13 अगस्त 2000 को सुबह करीब 9:15 बजे हॉस्पिटल से नाजिया की मां मुनीजा को कॉल कर जानकारी दी कि उनकी बेटी जोर जोर से खांस रही है। मां अस्पताल के लिए निकली, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही नाजिया की मौत हो चुकी थी। हालांकि नाजिया की मौत बीमारी से हुई थी, लेकिन उनके शव का पोस्टमार्टम करवाया गया। वकील द्वारा नाजिया का आखिरी स्टेटमेंट मिलने के बाद लंदन पुलिस ने दोबारा नाजिया की ऑटोप्सी करवाई। इस हाई प्रोफाइल केस की गहराई से जांच करने के लिए नॉर्थ वेस्ट लंदन पुलिस ने नाजिया के पेरेंट्स का गोल्डर्स ग्रीन स्थित घर और पति का घर सीज कर दिया। दोनों घरों में फॉरेंसिक टीम ने डिटेल में जांच की। यूके में कुछ महीनों बाद एक जांच रिपोर्ट जारी की, जिसमें स्कॉटलैंड यार्ड के अनुसार नाजिया की मौत का कारण लंग कैंसर बताया गया था। उन्होंने पाया कि ये एक नेचुरल डेथ थी। पाकिस्तान के नामी न्यूज चैनल जियो टीवी के अनुसार 13 अगस्त को हुई नाजिया की मौत के बाद 5 महीनों तक जांच के लिए उनका शव लंदन के मुर्दा घर में रखा गया था। परिवार को उनका शव 5 महीने बाद 9 जनवरी 2001 को सौंपा गया था। नाजिया का अंतिम संस्कार लंदन के हिंडन कब्रिस्तान में हुआ था। पहले उन्हें पाकिस्तान लाया जाना था, लेकिन शव मिलने में देरी होने से लंदन में ही उनका अंतिम संस्कार किया गया था। नाजिया के पति ने उनकी मौत के बाद तलाक की बात को निराधार कहा। उसने कहा कि मौत के समय भी नाजिया उनकी पत्नी थी। हालांकि घर वालों का कहना था कि नाजिया ने मौत से 3 महीने पहले ही उसे मुस्लिम लॉ के तहत तलाक दे दिया था। इश्तियाक आज भी नाजिया को अपनी पत्नी मानता है, जबकि नाजिया के बेटे अरेज की कस्टडी उसे नहीं दी गई। नाजिया की मौत के बाद 2002 में पाकिस्तान के तत्कालीन प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ ने उन्हें प्राइड ऑफ पाकिस्तान का अवार्ड दिया। नाजिया की जगह ये अवार्ड उनकी मां लेने पहुंची थी। उनकी मौत के बरसों बाद 2012 में एक बॉलीवुड फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर में उनके गाए गाने का कवर वर्जन बनाया गया, जिसमें उनकी ओरिजिनल आवाज का भी इस्तेमाल किया गया था। इसी साल एक और फिल्म मिस लवली में भी उनके गाए पुराने गाने का इस्तेमाल किया गया था, जो खासा फ्रेश लगा। नाजिया हसन बेशक संगीत और फिल्मों में अपना लंबा करियर नहीं बना पाए, लेकिन उनकी पहचान बेहद सशक्त थी। वो दिल की बहुत दयालु थी और गानों से मिलने वाली अपनी सारी कमाई पाकिस्तान के जरूरतमंद बच्चों को दान कर देती थी। इसके अलावा वो फंड इकट्ठा करने के लिए भी कई कॉन्सर्ट्स करती थी। इन्होंने बैटल अगेंस्ट नार्कोटिक्स यानी बैन के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन भी शुरू किया था, जो ड्रग्स के इस्तेमाल को रोकने की दिशा में काम करता था। नाजिया अक्सर स्कूल में जाकर बच्चों को खिलौने बांटा करती थी। ये अपना हर बर्थडे बच्चों के साथ मनाती थी। मौत के बाद आज भी इनका परिवार ऐसे ही इनका जन्मदिन मनाता है। नाजिया ने यूनिसेफ के साथ भी काम किया था। उनके बेहतरीन काम के चलते उन्हें कोलंबिया यूनिवर्सिटी में लीडरशिप प्रोग्राम की स्कॉलरशिप भी मिली थी। हालांकि कैंसर डिटेक्ट होने के बाद वो ये कर ना सकी। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें अवश्य बताइए। अगर आपके पास भी नाजिया हसन से जुड़ी कोई और जानकारी हो तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में बताइए।
2: होता है यारो ये दर्द से भरा हुआ कहानी आपने सुने महान गाने वाली नाजिया हसन के कुछ नगमे और अंत में कैसा उनका आखिरी सांसें छुट्टी, ये सब बातें आप सुने मेरा तो दिल भर आया। क्योंकि पहला दिन से जब मैं ये महान गाने वाली की नगमे सुने निगदी ताख्तक फ्रॉम द मूवी कुर्बानी, आप जैसा कोई व्यवहार ओक या इन दी टाइट ओक बेसिक मेट म्यूजिक एक्सपेरिमेंटेर दिट नंबर फाक लाइव गस्पेल्ड आप जैसा कोई, दिस het blijft me altijd wat doen. Dus agri bayan aap suninge, aaj ke is haseen program me special the great great great gaane wali Nazia Hasan ke, to uske baad kuch Bollywood naye naye super hit songs taiyar hai aap sabhi ko sunane ke liye. To unke yaadi to hamesha rahenge hum logo ke paas. To passend nummer om afscheid nu van haar te nemen met dit programma Tiriyad, The Great Nazia Hasan.

अति सुंदर बयान नया प्यार नया एहसास महान गायक इस जमाने का द ग्रेट जुबिन नौटियाल और द ग्रेट पलक मुशल के आवाजों में हिमेश रेशमिया का लिखा हुआ और कंपोज किया हुआ ये सुपर हिट सॉन्ग।

अब के सावन में पानी बरसा बहुत, अब के सावन में पानी बरसा बहुत, पानी की हर बूंद में वो आए याद बहुत। इस सुहाने मौसम में साथ नहीं कोई, इस सुहाने मौसम में साथ नहीं कोई, बादलों के साथ इन आंखों से पानी बहा बहुत, और वो भी उनकी याद में। तो आज के मेरे हिस्से के कार्यक्रम में एक आखिरी बयान आप सुनेंगे यारो, वक्त भी धीरे धीरे करीब आ गया है, और ये अति सुंदर बयान सुनने को जा रहे हैं आप सभी को इस जमाने के महान गायक द ग्रेट अरिजीत सिंह साथ दे रही है, मशहूर गाने वाली द ग्रेट नीति मोहन कुणाल वर्मा का लिखा हुआ अति सुंदर बयान, कॉम्पोज बाय तानिक बख्शी एंड कृष्ण कपूर। तेरे संग इश्क हुआ,

हुआ और वो भी तेरे संग इश्क हुआ। ब्यूटीफुल सॉन्ग आप श्रोताओं के सेवा में पेश किया गया महान गायक अरिजीत सिंह और नीति मोहन के आवाजों में। कुणाल वर्मा का लिखा हुआ अति सुंदर बयान कंपोज बाय मैस्त्रो तानिक बाक्षी कृष्ण किशोर। तुम्हारे प्रिय श्रोताओं, यही तक था आज का मेरे हिस्से का कार्यक्रम जो समाप्त होने को आया। अभी आप विज्ञापन सुनेंगे, देश विदेश का समाचार, उसके बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाने वाला है फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का महान अनाउंसर साथी द वन एंड ओनली मास्टर अमित कुमार जी। तो मुझे आप सभी इजाजत दे या शोमीद लेकर घर को जा रहा हूँ यारो, कि मेरा पेश किया हुआ प्रोग्राम, ये आशा उम्मीद है कि आप लोगों को जरूर पसंद आया हुआ होगा। अगर जिंदगी कुदरत ने साथ दिया तो आने वाले दिनों में मैं फिर आप सभी से मिलने वाला हूँ आवाज के जरिए यारो। तो स्टे ट्यून ऑन, आप ही का तो आवाज है, जनता का आवाज है, फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का आवाज है। और जाते जाते हमेशा की तरह

सबै प्लस रेडियो सुनाते हैं साफ और स्पष्ट आवाज डिजिटल ऑडियो ब्रॉडकास्टिंग की राज आप भी ले द प्लस रेडियो और दूर दूर

फन होम टेन हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से ये कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेट होने के लिए तार कीजिए 9735 तक सेफ नफेटा फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

पावन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम आप श्रोताओं की सेवा में लाइव ब्रॉडकास्ट है। आप चुन है द प्लस रेडियो पर अनतुलक उक्त बलैस्त्रफिया इंटरनेट के लहरों द्वारा फाउन FM.NL पर ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। हमारे फुल टीम की तरफ से आप श्रोताओं को एक बार फिर से स्वागतम कार्यक्रम में। जहाँ प्रिपियो जी साल में हो, घर पे हो या तो मोटर कार में आप सफर कर रहे हो, दुनिया के जो भी कोने में कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं, फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का ढेर सारा प्यार दुलार प्रेम और मोहब्बत आप सभी तक पहुँचे। अब हमारे फूल टीम की तरफ से आप श्रोताओं को एक शुभ दिन प्रकट हो। मैं थील फील लजतर प्लेजीर के साथ तमाम टैक्सी ड्राइवर्स जो कार्यक्रम को भी सुन रहे हैं, आप सभी को भी एक बार फिर से स्वागतम कार्यक्रम में। अनतिलक वर्क्स बॉयज एंड गर्ल्स अनतिलक बदौत है। तो जो भी रेडियो का काम हो, खास फरमाई से हो, जरूरी खबरें या तो एपिक व्यापार हो तो अपने व्यापारी के बारे में जरूर कमर्शियल बनवा कर, या तो आप एक ऑर्गामान हो इवनिमेंट और खनिसात और या तो ऑर्गा वुमन भी हो सकते हो, जैसे कल हम लोग बड़े समारोह के साथ एवंस एफनमेंट यानी डेस्टिनी एवंस के जरिए ऑर्गेनाइज किया हुआ जबरदस्त शो जो फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से भी ब्रॉडकास्ट और उन लोगों का कमर्शियल हम लोग भी रोजाना एक दो बार चलाए थे। और आप देखें ना, हाउसफुल था कल, बड़ी जबरदस्त शो था। महान गायक हमारे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का इस जमाने का द मेस्ट खफराग्ड आर्टिस्ट मैस्ट्रो जुबिन नौटियाल जी का जबरदस्त शो कल हम लोग बड़े समारोह के साथ मिलकर सुने, खूब नाचे, खूब मस्तियाँ किए, मजे किए। एना तिलक मेट हेल फील फ्रेंडे एंड केनिस गजामलक वॉस हेल ड्रुक एंड गजेलग। तो आप भी अपना कमर्शियल जरूर फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से ब्रॉडकास्ट ऐलान कराना, तो देखना कैसे चमककार पे चमककार हो जाएगा। यारो ये बात मैं आप श्रोताओं से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तमाम लोग फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम को सुनते रहते हैं द प्लस रेडियो के लहरों द्वारा या नित्य फरखीत इंटरनेट के लहरों द्वारा वर्ल्ड वाइड। किफायत सस्ते दाम, सर्विस गारंटी और क्वालिटी के साथ आपका जो भी रेडियो का संदेश हो अब मात पर हम लोग बनाकर और जितने बार ही आप चाहेंगे बंधु उतने ही बार हम लोग ऐलान कर देंगे, और ये भी किफायत सस्ते दाम में। मैं तो सदियों से आप सभी से यही कहते आ रहा हूँ यारो कि फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो से सस्ता और अव्वल पता आप सभी को हॉन इंडेज भर में नहीं मिलेगा यारो। आप आजमा कर तो देख, सभी जानकारी आप तार करें तैरेंस कंतोर यूरोप न्यूजीफ तक ट्वी दैर दिन फैन सेस्तक, या तो आप तार करें अपने सीफ तक फैन सेस्तक ट्वीन ट्वेंटक सीफन फेर तक पर। तो जो भी रेडियो का काम हो, देंक ऑन फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो। U nog geen lid van Fahon Hindustani Radio to Gras? गुजारिस बिनती निवेदन किया जा रहा है कि आप भी जल्द से जल्द फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का मेंबर बने और रो को भी बनाए। आपको तो ढेर सारा फायदा ही फायदा है। सभी जानकारी इसके बारे में आप तार करें op 070 2365 98 पर, या तो op 070 365 2247। तो आप भी जल्द से जल्द फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का मेंबर बने और रो को भी बनाए। इवेंट वन हार्ट वेलकम। इसी तरह हम लोगों के बारे में चर्चा करते रहना यार और रिक्लाम बनाते रहना, हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू। और हमारे फुल टीम की तरफ से आप सभी को इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। वादा के मुताबिक एक दम लेकर चलते हैं आप सभी को कार्यक्रम की तरफ, और कुछ सरनामी संगीत, इंडियन सरनामी पॉप म्यूजिक आप सुनेंगे। कुछ नौजवान कलाकार हैं जो काफ़ी नाम कमा चुके हैं हमारे सरनाम देश हॉलैंड देश में, तो कुछ नगमे आज के लिए मैं सेलेक्ट किया हूँ, जैसे कि मिस्टर के फ्रॉम सूरीनाम, महान गायक कविश कालका जी का ये ब्यूटीफुल सॉन्ग आदत।

om trots op te worden, de great Mr. KK from Suriname, Kawish Kalka. Found Hindustani Radio पे आप चून है हमारे प्रिय श्रोताओं जो तो से सरनामी संगीत चल रहे हैं. अगला बयान एक और महान गाने वाली हमारे सूरीनाम देश का फुल टैलेंटेड कलाकार फरानास चिरागली के मधुर आवाज में आप सुनेंगे यही वो जगह है. सेल्फ स्क्रीव एन कॉम्पोनियर्ट डोर ब्रूर नाट्यलिक भाई बहन का ये जो जोड़ी है ना जिस पे हमें नाज है. म्यूजिक दिया है डेवन बीट्स हमारे सूरीनाम देश का. मिलके सुनते हैं अ ब्यूटीफुल सॉन्ग स्पेशल आप सभी प्रिय प्रिय सुनने वालों के नाम.

वो जगह है अति सुंदर बयान आप श्रोताओं के सेवा में पेश किया गया। गाने वाली थी हमारे सुरीनाम देश का मशहूर गाने वाली फरानास चिराग अली। अगला बयान एक और महान गाने वाली हमारे सुरीनाम देश का, जिस पे हमें नाज है, गर्व है और होना भी चाहिए, क्योंकि अब इन फन हार न्यूमर्स फॉर सुरीनाम्स आर्टिस्ट मेयर दान 3 miljoen views krijgen, mag ook gezegd worden, natuurlijk om trots op te zijn. De one and only Nisha Madaren met King Colony, Dangerous.

फन हंट हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यूं ही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेट होने के लिए तार कीजिए 97.3 FM से 20 तक सेफ नफेटा फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

बिना स्वार्थ किसी का भला करके देखे, आपकी तमाम उलझने ऊपर वाला सुलझा देगा। सभी सुनने वालों को मेरी ओर से नमस्कार। मैं फिर आप सबके लिए प्रोग्राम लेकर आ गई हूँ, जिसका नाम है सोपन विज्ञान।

सभी सुनने वालों को मेरी ओर से नमस्कार। मैं फिर आप सबके लिए प्रोग्राम लेकर आ गई हूँ। मैं हूँ आपकी सेविका बबली आसरा। मैं आप सबके लिए प्रोग्राम लेकर आई हूँ जिसका विषय है स्वप्न विज्ञान, यानी सपने। सपने तो हम सबको ज़रूर आते हैं, कभी अच्छे सपने तो कभी बुरे सपने। अच्छे सपनों में हम खुश होते हैं, बुरे सपनों में हम डर जाते हैं। सपने भी बहुत प्रकार के होते हैं सुनने वालों। सपने हमें क्यों आते हैं, सपनों का मतलब क्या है, सपनों से जुड़ी और भी बहुत सी जानकारी है जिसे सुनकर आप सबको कुछ ना कुछ जानकारी ज़रूर मिलेगी।

संबंध तो सुधामा और कृष्ण जैसा होना चाहिए। एक ने कुछ मांगा नहीं, दूसरे ने सब देके जताया नहीं।

सुनने वालों, तो मैं अपना प्रोग्राम शुरू करती हूँ। हंस के शकुन। आज मैं आप लोगों को हंस जो पक्षी है उसके क्या क्या शकुन है उसके बारे में बतलाऊंगी। हंस के दर्शन, उसकी आवाज़ सब शुभ होते हैं। यहाँ तक कि प्रवास करते समय यदि कोई हंस का नाम लेता है तो उसकी यात्रा अच्छी होती है। प्रवास करते समय यानी यात्रा पर जाते समय, एक बार बोले तो चोरी का भय, दो बार बोले तो धन की प्राप्ति, तीन बार बोले तो दुर्घटना का भय, चार बार बोले तो किसी से झगड़ा, पांच बार बोले तो राज्य से सम्मान मिले। सुनने वालों, यदि हम यात्रा पर जा रहे हैं और हंस एक बार बोलेगा तो उससे हमें चोरी का भय होता है कि चोरी होगी। अगर वो दो बार बोलता है तो हमें धन की प्राप्ति होगी कि हमें रुपया पैसा मिलेगा। अगर हंस तीन बार बोलेगा तो दुर्घटना का भय कि हमें चोट लगने का भय हो सकता है। अगर हंस चार बार बोलेगा तो किसी से झगड़ा भी हो सकता है सुनने वालों, और पांच बार बोलेगा तो राज्य से सम्मान मिलेगा।

अब हम आगे चलते हैं सुनने वालों। टिटहरी, टिटहरी एक पक्षी है, छोटी सी है चिड़िया जैसी, और ज़्यादातर खेतों में बोलती है। अगर वो हो तो उससे क्या लाभ है, अब मैं ये बताती हूँ आपको। टिटहरी प्रवास करते समय इसकी आवाज़ शुभ होती है। जब ये पक्षी बोलता है और हम यात्रा पर जा रहे हैं और इसकी आवाज़ कानों में पड़े तो शुभ मानी जाती है सुनने वालों। मोर, मोर तो आप सबको पता है सुनने वालों। मोर भूख से पीड़ित या उड़कर बाईं ओर आकर बोले, मिष्ठान की प्राप्ति। अगर मोर पक्षी हमारी बाईं ओर आकर बोलेगा तो हमें मीठा खाने को मिलेगा या मिठाई खाने को मिलेगी। यदि प्रवास कर रहे व्यक्ति को देखकर बोले एक बार तो धन की प्राप्ति, दो बार बोले तो स्त्री सुख, तीन बार बोले तो राज्य दंड का भय, चार बार बोले दुर्घटना का भय, पांच बार बोले कार्य की सिद्धि। सुनने वालों, मोर भी अगर हम कहीं यात्रा पर जा रहे हैं और किसी भी व्यक्ति को देखकर अगर वो एक बार बोलता है तो हमें धन की प्राप्ति होती है, दो बार आवाज़ करेगा या बोलेगा तो स्त्री का सुख होगा, तीन बार बोलेगा तो राज्य में दंड का भय कि हमें कोई दंड भी मिल सकता है किसी भी कारणवश, अगर चार बार बोलेगा तो दुर्घटना का भय तो चोट लग सकती है, पांच बार बोलेगा तो कार्य की सिद्धि, हम कोई भी कार्य करने जा रहे हैं तो उसमें हमें ज़रूर सफलता प्राप्त होगी। सुनने वालों,

मैना, हमेशा हम तोता के साथ मैना की कहानी जरूर सुनते हैं सुनने वालों। तोता मैना का एक जोड़ा होता है। तो मैना, यदि प्रवासी को मैना दिखे तो राह में अशुभ, किसी से झगड़ा तथा धन हानि। बिल्कुल सामने मैना दिखाई दे तो चोर डाकुओं से धन की हानि। पीछे की तरफ मैना दिखाई दे तो मित्र से धन हानि। बाई और मैना दिखाई दो पत्नी को रोग। दाई और मैना दिखे किसी पूजनीय से मन मुटाव। सुनने वालों, जब हमें मैना राह चलते दिखाई दे तो अशुभ, किसी से झगड़ा या धन हानि होती है। हमारे बिल्कुल सामने उड़कर आ जाए तो चोर और डाकुओं से धन की हानि होती है। हमारी पीठ पीछे आ जाए तो मित्र से धन की हानि होती है। बाई ओर से आ जाए तो पत्नी को रोग होता है। दाई ओर से आ जाए तो किसी पूजनीय से मन मुटाव, कि जो आपसे बड़ा है, पूजनीय है, उससे हमारा थोड़ा मन मुटाव हो जाएगा, हम उससे गुस्से हो जाएंगे या वो हमसे नाराज़ हो जाएंगे। सुनने वालों, अब हम एक गाने की ओर बढ़ते हैं सुनने वालों।

सुनने वालों, ये जो गीत आपने सुना है ये हमारे महान गायक सूरीनाम के महान गायक श्री रामदेव चेतु जी की आवाज़ में था। अब हम आगे चलते हैं सुनने वालों। बटेर, बटेर भी एक पक्षी है। यदि यात्रा करते समय बटेर दाहिनी तरफ आगे आकर वापस लौटे और यात्रा में वापस आते समय बाईं ओर आगे जाकर वापस लौटे तो उस व्यक्ति का आने वाला समय अति उत्तम व्यतीत होता है। तीतर, तीतर भी एक पक्षी है सुनने वालों। तीतर प्रवास कर रहे व्यक्ति के यदि तीतर बोलता है दाईं ओर बोलकर पूर्ण बाईं ओर उड़े तो उत्तम फल प्राप्त होता है। लौटते समय विपरीत अर्थात पहले बाईं ओर बोलकर बाद में दाईं ओर उड़े तो अर्थ लाभ होता है। बाईं ओर तीतर बोले कार्य में सफलता मिलती है। पहले पीछे बोलकर फिर दाईं ओर बोले अभीष्ट सिद्धि। पहले पीछे बोलकर फिर बाईं ओर बोले कार्य सफल नहीं। उच्च स्वर में आवाज़ करे कार्य में सफलता। विषम संख्या में आवाज़ करे शुभ। आकाश की ओर मुँह करके धन हानि। दोनों ओर आवाज़ करे उत्तम शगुन। सुनने वालों, तीतर अगर किसी यात्री के दाईं ओर बोलकर पूर्ण बाईं ओर उड़े तो उससे उत्तम फल अच्छा फल प्राप्त होता है। लौटते समय विपरीत अर्थ पहले बाईं ओर बोलकर बाद में दाईं ओर बोले तो अर्थ लाभ कमती मिलता है। बाईं ओर तीतर बोले कार्य में सफलता मिलती है। पहले पीछे बोलकर फिर दाईं ओर बोले अभीष्ट सिद्धि तो उसका गलत परिणाम होता है। सुनने वालों, पहले पीछे बोलकर फिर बाईं ओर बोले तो कार्य सफल नहीं होता। उस स्वर में आवाज़ करें कि ऊंची आवाज़ में बोले तो कार्य में सफलता मिलती है। सुनने वालों, विश्व संख्या में आवाज़ करें कि और भी ऊंचा बोले तो शुभ होता है। सुनने वालों, आकाश की ओर मुंह करके बोले तो धन की हानि होती है। दोनों ओर आवाज़ करें तो उत्तम शगुन, अच्छा शगुन माना जाता है। सुनने वालों,

खंजन, सुनने वालों खंजन भी एक पक्षी है, यदि यह इन स्थानों पर बैठा दिखाई दे, घुड़साल, फिलखाने, बाघ, महल, लिपि भूमि, दही का बर्तन, छायादार पेड़, फूल पत्ते, फल वाला वृक्ष, तो धन लाभ की आशा, नदी, तालाब, कमल का फूल, गाय की पीठ, पत्ते उपले, दूध वाले पेड़, भवन के मुख्य द्वार, अगर इस जगह पर दिखाई दे तो समस्त व्याधियों का नाश, लता कांटेदार वृक्ष, सूखा वृक्ष, पत्थर, अधजली हड्डी, मदिरा के घड़े, सुने घर में यज्ञ स्तंभ, अपमान और रोग प्राप्त होता है सुनने वालों। नीलकंठ, नीलकंठ तो आप सब जानते हैं कि एक बहुत नीले रंग की गाय है, यदि यह दिखे तो दाई और सदे फलदाई, सामने दिखे अनेक विधन, नीलकंठ और कौआ दोनों दाई और उड़े और कौआ आगे निकल जाए धन हानि, इसके विपरीत नीलकंठ आगे निकल जाए यात्रा सफल, धन का लाभ होता है सुनने वालों।

हम आगे चलते हैं। सुनने वाले, श्यामा चिड़िया, आपने श्यामा चिड़िया का नाम तो सुना ही होगा, क्योंकि रामायण में जब मन का 108 है उसमें भी राम जी कहते हैं श्यामा चिड़िया तू ही बता दे कि सीता जी कहाँ पर है। यदि श्यामा चिड़िया दिखाई दे बाई और बोलती कोयल अच्छे फल, दक्षिण और बोलती अनिष्ट फल, सामने आकर बोले यात्रा स्थगित के संकेत कि यात्रा टाल देनी चाहिए, पीठ पीछे बोलती शुभ सूचना सफलता, प्रसन्न भाव में क्रिया करती हुई सामने कार्य सिद्धि, प्रसन्न मुख इधर उधर फुदके धन लाभ सफलता, दाएं भाग को खुजाती हुई शत्रु नाश मित्र से लाभ, दाएं भाग को फड़फड़ाती हुई विजय, दोनों ही भागों में शुभ समाचार सफलता, चोंच पैरों से बाईं आंख खोलती हुई वस्त्र आभूषण लाभ, भोजन की तलाश करती हुई सिद्धि अच्छे भोज्य, भोजन पर झपटती हुई अति शीघ्र सफलता, रमन करती हुई स्त्री से लाभ, सूखो बियाबान से हरे भरे की तरफ आते हुए उत्तम फलदायक उन्नति की सूचना, दासियों में आ मिले प्रिय जन्म मिलन, पैरों से दाहिने नेत्र को खुजाती हुई प्रिय जन्म मिलाप, पूंछ जल्दी जल्दी ऊंची नीची करती हुई प्रेमिका मिलन, चोंच से सामने या गुप्त अंगों को स्पर्श करती हुई सुंदर से समागम, पैरों से मुंह खुजलाती इच्छित वस्तु प्राप्त, निर्जन सरोवर में नहाती हुई भू संबंध संपत्ति का लाभ, टेढ़ा मुंह करके देखे या भाग जाए झगड़ा हो, आलस्य भरी या बीट करे धन नाश विपत्ति, मुंह के आहार को नीचे फैलाती हुई सांचे धन की समाप्ति, एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाती हुई एक जगह झगड़ा दूसरे पर सफलता।

सुनने वालों, ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये सब बातें स्वप्न विज्ञान से निकाली गई हैं। अब हम एक गीत की ओर बढ़ेंगे सुनने वालों।

सुनने वालों, जो भी आपने गीत सुना वो हमारे सूरीनाम के महान गायक देसी रघु सिंह जी की आवाज़ में था।

सुनने वालों, मैं आप सबको सुना रही थी श्यामा चिड़िया के बारे में। अब हम आगे चलते हैं सुनने वालों। जोड़े से अलग भागे, स्त्री से कष्ट हानि, पति पत्नी दोनों के बीच में से पहले चिड़िया फिर चिड़िया निकले, निश्चय कार्य में सिद्धि। इसके विपरीत पहले चिड़ा फिर चिड़िया निकले, सिद्धि में संशय। नीचे से उड़कर ऊपर जाए, उत्तम फल। नीचे की तरफ जाए, अवनीत की सूचना। बाईं तरफ बोलती हुई अच्छी, दोनों तरफ बोलती हुई अति उत्तम फल। उड़कर किसी गंदगी पर बैठे, यात्रा टाल देनी चाहिए। किसी पतंगे को पकड़ने दौड़े और एक के बजाय दो पकड़ ले तो दो गुना लाभ की आशा।

पशु शकुन विचार। अब हम पशुओं की ओर चलते हैं सुनने वालों। बिल्ली संबंधी शकुन। यदि यात्रा आरंभ में बिल्ली हमें मिले तो क्या क्या शकुन होते हैं सुनने वालों, और क्या क्या हानि होती है। बिल्ली अगर रास्ता काट ले हानिकारक, बाईं से दाईं और रास्ता काटे निष्ठ फल, मुख में आहार लेकर आए शुभ, मुख में मांस भरे सामने आए सफलता, किंतु बोले भी तो शुभ, खाली मुख बंद करे शुभ नहीं असफलता, परस्पर लड़ती दिखे तो अशुभ, बाईं ओर रहे शुभ कार्य, घर लौटते समय दाईं ओर रहे श्रेष्ठ, सोते समय ऊपर आ पड़े मृत्यु कारक, किसी के पांव सूंघे स्वास्थ्य खराब रोग, माथे को चाटे राजभय पत्नी विरोध, किसी स्त्री के हृदय को चाटे पुत्र को अनिष्टकारक, किसी स्त्री के पांव को चाटे अहितकारक यानी हानि, घर में आकर शीघ्र चली जाए रोग शत्रु का नाश।

अगर हम यात्रा पर जा रहे हैं, अगर हमारा रास्ता काट ले तो वो सभी जानते हैं कि हानिकारक है, वो अशुभ माना जाता है। अगर बाईं ओर से दाईं ओर हमारा रास्ता काटे तो नेष्ट फल, वो भी थोड़ा सा अच्छा फल है। मुख में आहा लेकर आए, अगर उसके मुंह में कुछ है तो शुभ माना जाता है सुनने वालों। मुख में मांस भरे सामने आए तो सफलता होती है सुनने वालों। किंतु बोले भी तो, अगर बिल्ली बोलती है तो शुभ माना जाता है। अगर मुंह में कुछ भी नहीं है, खाली मुख है, खाली मुख शब्द करें तो असफलता होती है सुनने वालों। अगर बिल्ली लड़ती दिखाई दे तब भी असफलता होती है सुनने वालों। बाईं ओर आ रही हो तो शुभ कार्य, तो अच्छा माना जाता है। घर लौटते समय दाईं ओर से दिखाई दे तो श्रेष्ठ, तो भी अच्छा माना जाता है सुनने वालों। सोते समय ऊपर आ पड़े, कि अगर कोई सो रहा है तो किसी ने घर में बिल्ली रखी हुई है तो वो अशुभ माना जाता है सुनने वालों, वो मृत्यु का कारक होता है, कारण होता है। किसी के पाँव सूंघे, अगर बिल्ली किसी के पाँव सूंघती है तो स्वास्थ्य खराब और वो रोगी हो जाता है। और माथे को चाटे किसी के तो पत्नी विरोध, तो पत्नी से झगड़ा हो जाता है सुनने वालों। किसी स्त्री के हृदय को चाटे तो पुत्र को अनिष्ट कारण, तो पुत्र को हानि पहुंचती है सुनने वालों। किसी स्त्री के पाँव को चाटे तो अहित कारक, तो वो भी अशुभ होता है सुनने वालों। घर में आकर शीघ्र चली जाए, कि घर का चक्कर लगा के फिर बाहर चली जाए, तो रोग और शत्रु का नाश हो जाता है सुनने वालों।

ये है फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो सुनने वालों, आपका अपना फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो जो आप हर समय सुनते हो। अब हम एक गाने की ओर बढ़ेंगे सुनने वालों।

मस्तक को थोड़ा झुका कर देखिए, अभिमान मर जाएगा। आँखों को थोड़ा भिगा कर देखिए, पत्थर देर पिघल जाएगा। दांतों को आराम देकर देखिए, श्वास सुधर जाएगा। जीवा पर विराम लगा कर देखिए, कलेश का कारवां गुजर जाएगा। इच्छाओं को थोड़ा घटा कर देखिए, खुशियों का संसार नज़र आएगा। सुनने वालों, अगर हम ये थोड़ी सी चीज़ें करके देखें तो कुछ ना कुछ सुधार अवश्य होगा।

जीवन में परेशानियाँ चाहे जितनी भी हो, चिंता करने से और बड़ी हो जाती हैं, खामोश होने से काफ़ी कम हो जाती हैं, सब्र करने से ख़त्म हो जाती हैं और परमात्मा का शुक्र करने से खुशियों में बदल जाती हैं। सुनने वालों, जीवन में परेशानियाँ तो सबकी होती हैं, चाहे जितनी भी हो, अगर हम चिंता करेंगे तो वो और बढ़ जाती हैं, कम नहीं होती, और खामोश होने से थोड़ी कम हो जाती हैं। अगर हम खामोश रहेंगे तो थोड़ी सी कम हो जाएंगी, सब्र करने से ख़त्म हो जाती हैं। अगर हम भगवान का शुक्र करेंगे कि परेशानी आई है तो भगवान ही दूर करेंगे तो उससे थोड़ी ख़त्म हो जाएगी, और परमात्मा का शुक्र करने से खुशियों में बदल जाती हैं। सुनने वालों, हमें हर समय परमात्मा का, भगवान का शुक्र अदा करना चाहिए।

किसी अवसर की प्रतीक्षा में बैठना व्यर्थ है। आज का दिन जो किस्मत से हमें मिला है, यही अवसर है, इसे जाया ना करें। चुगली की धार इतनी तेज़ होती है कि वो खून के रिश्तों को भी काट कर रख देती है। कठिन रास्तों से कभी घबराना नहीं चाहिए। कठिन रास्ते अक्सर खूबसूरत मंजिल तक लेकर जाते हैं। ऑक्सीजन हो या मनुष्य के विचार, एक बार स्तर नीचे आ जाता है तो जोखिम बढ़ जाती है। मन के अनुकूल हो तो हरी कृपा और मन के विपरीत हो तो हरी इच्छा। जिसने इस तत्व को धारण कर लिया उसके जीवन में आनंद ही आनंद है। देर मैंने ही लगाई है तुझे पहचानने में मेरे ईश्वर, वरना तूने जो दिया उसका तो कोई हिसाब ही नहीं। जैसे जैसे मैं सिर झुकाता गया वैसे वैसे तू मुझे उठाता चला गया।

नीचे झुककर किसी को ऊपर उठाना इससे अच्छा व्यायाम दिल के लिए कोई और नहीं। सुनने वालों, मैं आप सबसे यही आशा करती हूँ कि जो मैंने आप सबको बातें बताई उसमें से कुछ ना कुछ आपने अवश्य लाभ उठाएंगे। और ये सब मैं स्वप्न विज्ञान से खोज खोज कर लाती हूँ, तो आशा करती हूँ अगर आपको प्रोग्राम अच्छा लगे तो कमेंट देना। सभी सुनने वालों को मेरी ओर से नमस्कार। मैं हूँ आपकी सेविका बबली आसरा।

की खूबसूरती कहीं से भी मिले चुरा लो, क्योंकि चेहरे की खूबसूरती तो उम्र के साथ बदल जाती है, मगर विचारों की खूबसूरती हमेशा दिलों में अमर रहती है। सभी सुनने वालों को मेरी ओर से नमस्कार।

हाँ सुनने वालों, अभी आपने सुने संजय जी और संजय जी से बात आप सुने बबली जी की और मेरी है, मैं तो शांता जी हूँ। तो शुरुआत करने से पहले और आगे बढ़ने से पहले ये ज़रूर कहूँगी कि कदम कदम चाहे छोटे हो या बड़े, मंजिल को पाने के लिए बस चलते रहना वो ज़रूरी है। स्वीकार कीजिए सभी का शांता की प्यार भरी राम राम प्रणाम।

0: सुनने वालों, हमारे साथ जुड़ गए हैं राजेंद्र सिंह जी, जो भारत देश से और हमारे साथ जो कार्यक्रम में और सहयोग देते हैं। तो राजेंद्र जी, आप अपना एंट्री लीजिए और फिर कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं।
1: यहाँ पे सब लोग खुशी से हैं, सबको दिक्कत नहीं है। तो फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के सभी श्रोताओं को हम सब लोग का भारत से हार्दिक शुभकामना और अभिनंदन। आज जो हमारा विषय रहेगा वो बहुत ही बढ़िया विषय रहने वाला है, जो कि नया विषय है। और उस विषय के जो बारे में बातचीत रहेगी, वो जो विषय है बहुत जबरदस्त विषय है। एक तो जौ जो होते हैं, जौ यानी बार्ली, उसका पानी पीने से क्या फायदा होता है। और दूसरा जो बात करेंगे, बातचीत रखेंगे हम लोग, वो ये रखेंगे भक्ति और विश्वास। भक्ति और विश्वास में क्या अंतर है, किस प्रकार भक्ति होती है, कैसे उसका विश्वास होता है, यही सब चीज की बातचीत रहेगी।
0: राजेंद्र जी, आपको हार्दिक से स्वागत किया जाता है। और किशुन सिंह जी भी भारत से ये कार्यक्रम को सुन रहे, जो हर बार दनहाक का संदेश लेकर और कार्यक्रम में सहयोग देते हैं। तो आप सभी को हार्दिक से स्वागत करते हुए हम उस ओर बढ़ेंगे। तेरा राम जी करे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को डड़े। राजेंद्र जी, पहले वही गीत चलाते हैं, फिर हम सभी जो इस कार्यक्रम जो और बनाया जाता है और खास करके 188 देशों तक इस कार्यक्रम को भी सुना जा सकता है। आज का संदेश, जैसे कि अभी आपने विषय रखी चुके हैं, तो हम पहले वही गीत की ओर बढ़ेंगे और सभी के साथ जुड़ जाएंगे।
1: जरूर।

0: सुनने वालों, यहाँ तक जो कार्यक्रम में ये सुंदर सा गीत रखा गया हरिओम सरन से, हम सब जो उन्हीं के गाया हुआ गीत जो हम सब हर बार ये कार्यक्रम में रखते हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं भारत से और राजेंद्र सिंह जी, जो अभी हम सब के लिए अपने ओर से संदेश रखने वाले। तो राजेंद्र जी, जरा आप अपना संदेश हम सब को लिए और रखिए।
1: हाँ, जैसा कि हमने बात करी थी कि आज बातचीत करेंगे भक्ति और विश्वास के बारे में, इसी के बाद बातचीत रहेगी। भक्ति क्या है, विश्वास क्या है, इसी को समझते हैं। तो भक्ति है समर्पण का नाम और भक्ति विश्वास का नाम है। भक्ति समर्पण का भी नाम है और भक्ति विश्वास का भी नाम है। भक्ति सदगुरु के प्रति श्रद्धा का नाम है। जो जैसे कि कोई सदगुरु है उसकी प्रति जो श्रद्धा रखते हैं उसका नाम भी भक्ति है। जब जीवन में प्रेम एवं विश्वास का समावेश होता है तभी भक्ति संभव होती है। जो जीवन है हमारा उसमें प्रेम होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। जब दोनों चीज हो जाती है तब भक्ति का जन्म होता है। माता सबरी को प्रभु श्री राम ने नवदा भक्ति का सार समझाया एवं पूरी जानकारी दी, तभी वो भक्ति पथ पर दृढ़ता से चल पाई। कहा भी गया है, भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खोई। यानी एक दोहे में समझाया है कि कोई एक सूरमा भक्ति करे और जाति जो वर्ण है उसमें खो जाए। यानी भक्ति सभी के हिस्से में नहीं आती। सदगुरु की जब अपार कृपा होती है तभी भक्ति मिलती है। सदगुरु मतलब जो गुरु रहता है उसकी जब महान कृपा होती है तब भक्ति होती है। इतिहास साक्षी है कि माता सबरी को भक्ति का दान मतंग ऋषि से मिला था, जिनकी उन्होंने खूब सेवा की थी। सबरी की बात आप जानते होंगे कि सबरी जो है जंगल में रहती थी, उसकी बहुत लंबी कहानी है सबरी की। कि जब सबरी की शादी हुई थी तो पहले क्या करते थे कि लड़की को देखा देते कि ना करते थे और केवल बातचीत करे आते थे। लेकिन जब वो उसकी शादी हुई और उसके घूंघट ओढ़ के आ रही थी और जंगल से उसका पति और वो जा रहे थे, तो एक जगह पे क्या हुआ कि उनका घूंघट उड़ा और पति ने उसका मुख देख लिया। जैसे देख लिया तो एकदम डर गया, इतनी वो अच्छी सूरत नहीं थी, तो उसने छोड़ दिया उसको। तो वही जंगल से वो जाके ऋषियों के साथ वहाँ आश्रम में रहने लग गई। तो ऋषि केवल वो दिन में साफ सफाई करती थी और भगवान की भक्ति करती। तो ऋषि जब ऋषि चले गए तो ऋषि ने बोला कि तुम्हारी जो भक्ति है, इस भक्ति के एक दिन भगवान राम तुम्हें स्वयं यहाँ मिलेंगे। तो उनको अपने जो गुरु थे मतंग ऋषि, उन पे पूरा विश्वास था कि अगर गुरु जी ने ऐसा बोला है तो जरूर मिलेंगे। तो उन्हीं का वो प्रेम है भक्ति का। कुटिया को सुबह शाम साफ सुथरा करती, फूलों की माला गूंथती, मीठे फल लाती और श्री राम जी के आने की वाट जोती। यानी वो रोज ये सोचती कि आज भगवान आएंगे, राम आएंगे, कल आएंगे, आज आएंगे, कल आएंगे। ऐसे रोज जो फूल लाके कुटिया साफ करके सजाती कि भगवान आएंगे दिखाएंगे।
0: राजेंद्र जी, सुंदर सा नखमा के बाद हम सब फिर ये जो वृतांत आप हम सब के लिए रख रहे हैं उसे आगे सुनेंगे। तो शांता जी जो पनेल के पीछे बैठे हुए हैं और वो एक प्लेयर पे एक सुंदर सा गीत रख चुके हैं।

0: सुनने वालों, ये सुंदर सा गीत जो निकाला गया रामायण में, ये गीत को चलाया गया था माँ शबरी के अंतर्गत और गीत रखा गया प्लेयर पे। हमारे साथ जुड़े हुए भारत से राजेंद्र जी, और राजेंद्र जी आगे का संदेश आप ले चलिए।
1: हाँ, जैसे कि बातचीत चल रही थी कि रोज जो कुटिया साफ करती थी और गुरु के प्रति बहुत श्रद्धा थी, गुरु ने कहा था कि एक दिन भगवान राम स्वयं इस कुटिया में आएंगे, तो श्री राम जी सबरी की कुटिया में एक दिन आए और अतिशय प्रेम में सबरी के जूठे बेर भी खाए। प्रभु श्री राम भक्तों के मन की पीड़ा को समझते हैं, उनकी भक्ति को समझते हैं। राजमहल में रहने वाली मीराबाई ने भक्ति के रस में डूबकर राजमहल का मोह त्याग दिया और गुरु रविदास जी के द्वारा ब्रह्म ज्ञान की दात पाकर बिना जग की प्रभा के गाने लगी। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कर कृपा अपनायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जो राजमहल में मीराबाई रहती थी वो इतनी भक्ति के प्रेम में डूब गई कि उन्होंने बोला कि जो मैंने क्या पाया, राम रतन धन पाया। और किसकी कृपा हुई? सदगुरु की कृपा हुई। इसलिए गुरु की जो भक्ति है, गुरु के प्रति जो भक्ति है, उसकी जब कृपा होती है

0: वही आगे जाके काम आता है। मीराबाई ने भक्ति के मार्ग पर चलकर समाज को नई सीख दी कि संसार की धन दौलत से बढ़कर भक्ति। संपूर्ण अवतार वाणी में भी लिखा है, प्यार बिना ना भक्ति हुई, बिन भक्ति नैया पार नहीं। यानी प्यार के बिना कोई भक्ति नहीं। भक्ति में जो प्रेम है उसमें विश्वास अनिवार्य, मतलब अनिवार्य मतलब वो चाहे, भक्ति में जो प्रेम है उसके बहुत विश्वास चाहिए उसमें, तभी भक्ति आगे बढ़ती है। और भक्ति का सुहाना अवसर सदगुरु की कृपा से ही हमें सुलभ हो पाता है। सदगुरु और भक्त का रिश्ता निश्चल प्रेम पर आधारित है। जब सदगुरु और भक्त जो होता है, जो निश्चल प्रेम, यानी उसमें कोई कपट नहीं होना चाहिए, गुरु के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, भक्ति होना चाहिए, और तब वो भक्ति उसको शिष्य को मिल पाती है गुरु की। जब निश्चल प्रेम मतलब उसमें कोई छल नहीं, तभी भक्ति संभव है। तो क्यों ना एक सुंदर सा नगमा की तरफ बढ़ लिया जाए, फिर आगे की बातचीत रहेगी।
1: जरूर राजेंद्र जी, एक सुंदर सा नगमा के और हम सब जरूर और बढ़ते हैं और फिर कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा। दोस्तों, हम सब अभी आपके साथ फिर दोबारा जुड़ जाएंगे।

0: गवाह रे, जैसे कि शांता जी ने कार्यक्रम में और ये सुंदर सा गीत जो निकाल करके रखे अपने पिटारा से, तो राजेंद्र जी भक्ति और विश्वास इस अंतर्गत में आपने संदेश सुनाए। यहाँ बबली जी भी बैठे हुए, शांता जी भी पैनल के पीछे है, तो इसमें थोड़ा से और संदेश रख दिया जाए, क्योंकि बबली जी आपको क्या लगते हैं भक्ति और विश्वास किस प्रकार से और जैसे कि अभी संदेश में रखा गया करना चाहिए और कैसे विश्वास रखना चाहिए?
1: जब देखो विषय की तरफ हम जाएं तो भक्ति और विश्वास, भक्ति तभी हो सकती है अगर हम विश्वास से करेंगे, विश्वास है तो भक्ति होगी, अगर मन में विश्वास नहीं है तो भक्ति भी नहीं हो सकती।
0: राजेंद्र जी इसमें आपके ओर से क्या संदेश है?
2: भक्ति और विश्वास एक दूसरे के पूरक हैं। जब विश्वास होगा तब भक्ति होगी, जब भक्ति होगी तब विश्वास होगा। जैसे कि उदाहरण के तौर पे मीराबाई का और सबरी का और बहुत सारे लोगों का आता है, लेकिन जैसे हमने मीराबाई और सबरी का बताया, विश्वास बहुत बड़ा चीज होता है। कि जो गुरुजी एक बार अपने शिष्य को बोले कि मलूक दास जी के बारे में बातचीत है कि मलूक दास एक हुए हैं गुरुजी, वो एकदम कहते थे कि कुछ नहीं होता, ऐसा होता है, ये होता है, विश्वास नहीं करते थे। लेकिन एक आदमी ने बोला, गुरुजी ने बोला कि विश्वास करो। वो बोले कि अगर नहीं हम कुछ करेंगे तो खाएंगे क्या? उन्होंने बोला विश्वास करो कि खाना मिल जाएगा। तो जब उन्होंने विश्वास नहीं किया तो उनकी परीक्षा हुई और वो पेड़ में जा बैठे कि मेरे को खाना यहाँ कैसे पहुँचता है। और उसी समय चोर लोग जा रहे थे नीचे से और वो किसी का भोजन चुरा के लाए और वहाँ नीचे रख दिया। जैसे वो डाकू लोग वहाँ से आए, वो भाग गए वहाँ से। तो फिर जब डाकू लोग आए, देखे ऊपर में कोई बैठा पेड़ के ऊपर, उन्होंने पहले उसको उतारा कि तुम जो है ये खाना खाओ, ये हो सकता है इसमें जहर हो। तो जब उन्होंने जबरदस्ती उनको खाना खिलाया था, फिर वो उस दिन से मलूक दास हुए। और मलूक दास की मलूक पीठ है वृंदावन के आगे, बहुत बड़ा, आज इस समय 10,000 गाय है वहाँ पे, और उन्होंने बहुत बड़ा बनाया वहाँ पे। और विश्वास किया उस दिन से कि हाँ भक्ति में शक्ति है। और धीरे धीरे करके बहुत सारे शिष्य हुए, शिष्य बनाए अपने। अभी राजेंद्र दास जी महाराज वहाँ के शिष्य हैं, जो कि बहुत बड़े गुरु हैं। और यही भक्ति का एक दूसरे के पूरक बताया गया कि जब तक विश्वास नहीं तब तक कुछ नहीं। तो भक्तमाल एक कथा है, भक्तमाल की उन्होंने लिखी है, और वही कथा के माध्यम से बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं भक्ति के और विश्वास के।
0: राजेंद्र जी ने अपने ओर से उदाहरण के माध्यम से हम सबके लिए जो संदेश रखे सुनने वालों, और इसमें शांता जी आप भी कुछ कहने वाले हैं, जरूर हम सबको सुनाइए।
3: राजेंद्र जी एकदम भारत देश से हम लोग के यहाँ ज्ञान भी दे रहे हैं, तो बात ये सही है, अगर जब तक विश्वास नहीं है तो भक्ति नहीं होगा। आप जानोगे सोचोगे, पर आप जब विश्वास नहीं करोगे तब तक भक्ति आप कर नहीं पाओगे। और जब विश्वास करके और भक्ति आप जैसे करोगे, जैसे अभी राजेंद्र जी ने उदाहरण में दी है, तो आप एकदम आनंद में रहोगे, एकदम बेफिक्र रहोगे, उसमें इतना आनंद मिलेगा कि उसे शब्द में हम बोल नहीं सकते, उसका सिर्फ अनुभव करना पड़ता है।
0: शांता जी जैसे अभी संदेश में रखे कि उसमें आनंद को प्राप्त करेंगे, तो आनंद प्राप्त करने के लिए तो हमारे देश में, हमारे भारत में कुछ चीज़ें हैं जो, और ऐसा ऐसा पकवान भी बनाया जाता है, और वो जो अपना अपना सीजन के माध्यम से यानी उसमें बनाया जाता है, उस अंतर्गत में आप हम सब के लिए क्या सुनाने वाले? क्योंकि मेरे ख्याल से बेल का जो एक फ्रूट होता है ना,
2: हाँ, जैसे कि बेल पत्री सूरिनाम में भी होती है और बेल का फल भी होता है, तो जो बेल का जो फल होता है, वो बेल पत्र तो 3 पत्ते का होता है, कोई एक कहीं एक 4 पत्ते का भी मिलता है हजारों में से। तो जो बेल का फल है वो बहुत ही अच्छा होता है, पेट के लिए अच्छा माना जाता है, ठंडक लाता है, पेट को ठीक करता है, खास करके पेट के लिए शीतलता देता है। शंकर जी यानी शीतल, तो उनका जो फल है वो भी तो शीतल ही होगा। तो आजकल भारत में बेल बहुत बढ़िया चल रहा है और जगह जगह बेल का जूस, हम लोग भी बेल का जूस बनाए, आज कल भी बनाए, परसों भी बनाए। तो जो बेल का जूस होता है वो गर्मी में पीना चाहिए, पेट के लिए एकदम बहुत अच्छा होता है, उसका जूस कैसे बनाया जाता है ये भी विधि समझने वाली है। बेल को लो, उसको दो भाग में तोड़ो, बीच का जो गूदा है उसको निकाल लो और फिर उसको पानी में मिक्स कर लो। अगर आपको लगे मीठा कम है तो थोड़ा चीनी मिला सकते हैं, गुड़ मिला सकते हैं, और फिर उसको मोटी छन्नी यानी सूप की छन्नी से छान लो और जितना पतला चाहिए उतना पानी मिला लो, जितना गाढ़ा चाहिए उतना कम मिलाओ। फिर जब छान लोगे तो सारे बीज और उसके जो गूदा बचा हुआ है उसमें निकल जाएगा और बेल एकदम रेडी हो जाएगा पीने के लिए। तो इसका शरबत पीने से बहुत ही अच्छा महसूस होता है गर्मी में। तो भारत में तो गर्मी की खूब भरमार है, बड़ी कृपा है गर्मी की, सूर्य भगवान की पूरी कृपा रहती है भारत में गर्मी से। तो उसके अनुसार यहाँ पे बहुत मात्रा में बेल भी होता है और लोग भी इसको पीना पसंद करते हैं।
0: जो बेल का और फ्रूट होता है उसका और शरबत बना दिए।
2: हाँ, शरबत एकदम तैयार है और पीने के लिए हम लोग उत्सुक है।
0: पीने के लिए उत्सुक है और जैसे कि आप कह रहे हैं उत्सुक है, तो हम लोगों भी यहाँ से भी उत्सुक हो रहे हैं, पर क्या हम लोगों का कभी अवसर मिलेगा ये जो शरबत आपने बनाया? क्योंकि देखिए राजेंद्र जी, पहले ऐसा होता था ना, सूरीनाम में जब जाओ कहीं पर, और जैसे कि कोई शहर से सरमक्का जाए, सरमक्का एक सेती होता है वहाँ पर, और जब सरमक्का में पहुँचो तो वहाँ कोई कोला नहीं देते थे कोई, और यानी कि जो आजकल जो शरबत प्राप्त होता है ना वो नहीं मिलता था। उस समय मिलता था, शरबत बनाया जाता था और ब्राउन शुगर से, और मेरे ख्याल से उसमें नींबू डाला जाता था ना, तो नींबू डाल करके, या कहीं कहीं एक और फ्रूट होता उसे कहते हैं सुआलैया, तो उसको गार करके और शरबत बनाया जाता था और गर्मी में दिया जाता था। और इस प्रकार से जैसे कि सूरीनाम में वो शरबत बनाया जाता था, आप लोगों वहाँ भारत में ये बेल का और जो फ्रूट होता उससे बनाते हैं। तो
2: शंत है, और उसमें बना रखी है, तो बहुत सारे प्रकार का शरबत भारत में बनता है।
0: तो शांता जी, जरा इसे नीदरलैंड्स में हम सबको थोड़ा से और सुना दीजिए, ताकि हमारे सभी सुनने वालों इसके बारे में ठीक से समझ पाए।
3: बेल फ्रूट, बेल जो है तो वो जो नहीं है जो शिव भगवान को समर्पण करते हैं, ये एक फ्रूट है जो खाना चाहिए, और एक नीदरलैंड्स में नाम है स्लेम एप्पल। ये पहले बार मैं भी सुन रही हूँ, तो जाने गूगल महाराज में जल्दी से सब चीज़ मिल जाता, तो हमने यहाँ गूगल महाराज के सर्च की तब मिल गए अते स्लेम एप्पल, तो आप जानते हैं।
0: हम एक गीत की ओर बढ़ेंगे और गीत के बाद हम सब फिर आपके साथ जुड़ जाएंगे, क्योंकि आज का और राजेंद्र जी ऐसा जो फिल्म डॉन से निकाला गया ये गीत हम सब और प्लेयर पे रख रहे हैं, जिसमें अमिताभ बच्चन जो और उस समय पे और अपना कला से प्रदर्शन दिए थे। तो शांता जी यही गीत और प्लेयर पे चला रहे हैं।

अरे ऐसा झटका लगे जिया पे पुनर्जन्म हो जा। खई के पान बना रसवा।

कैसे चक्कर में पड़ गया, हाय हाय हाय कहाँ जान फंसाई मैं तो सूली पे चढ़ गया, हाय हाय कैसा सीधा साधा मैं कैसा भोला भाला, अरे कैसा सीधा साधा मैं कैसा भोला भाला, जाने कौन घड़ी में पड़ गया पढ़े लिखों से।

नौरस वाला खुल जाए बंद अकल का ताला।

गंगा किनारे वाला ओ छोरा गंगा किनारे वाला ओ खई के पहन बनो रत वाला खुल जाए बंद अकल का ताला।

0: राजेंद्र जी, जैसे कि अभी ये फिल्म दोन से निकाला गया ये सुंदर सा गीत, गीत जो शांता अपने पिटारा से भर के लाए थे और हम सब चलाए। राजेंद्र जी, जौ, जैसे कि आज का विषय में आप अभी शुरुआत में कहे थे कि जौ के अंतर्गत आप हम सब के लिए कुछ संदेश रखने वाले हैं, तो जरूर हम सब के उस ओर और छलांग लगाइए।
1: सब लोग जानते हैं कि नीदरलैंड्स में होता है और सरनाम में भी। जौ का पानी तैयार करने के लिए कुछ मात्रा में जौ ले लीजिए, यानी एक कटोरी में जौ ले लीजिए और उसे अच्छी तरह साफ कर लीजिए पहले। उसके बाद इसे करीब 4 घंटे तक पानी में भिगो कर छोड़ दीजिए। जब 4 घंटा हो जाए, इसके बाद इस पानी को 3 से 4 कप पानी मिलाकर उबाल लीजिए, पर इसे धीमी आंच पर ही उबाल लें, यानी सिम आंच करना है, गैस को सिम करना है, हल्की आंच रखनी है उस पे उबाल। लगभग 45 मिनट के बाद गैस बंद करो और इस पानी को ठंडा होने दीजिए। जब ये ठंडा हो जाए तो इसे एक बोतल में भर लीजिए और दिन भर 1 से 2 गिलास पीते रहिए। जौ का पानी पीने के जो फायदे हैं, वो क्या क्या फायदे होता है इससे, अगर आपको यूरिन से जुड़ी कोई समस्या हो, यानी पेशाब से जुड़ी कोई समस्या हो यूरिन से, तो जौ का पानी आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। इसके अलावा किडनी से जुड़ी ज़्यादातर समस्याएं में जौ का पानी बहुत अच्छा होता है। अगर आप वजन घटाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, यानी वेट कम करना है, और लाख कोशिश के बावजूद भी आपका वजन कम नहीं हो रहा, जैसे कि हमारा मामा जी का वजन कम नहीं हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो उनको जौ का पानी पीना चाहिए। वो रामबाण साबित होगा। जौ का पानी पीने से ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने के लिए भी जौ का पानी बहुत फायदेमंद होता है। जो कोलेस्ट्रॉल होता है, यानी कि जो कोलेस्ट्रॉल बनता है शरीर के अंदर, नसों के अंदर जम जाता है, वो ब्लड के उसमें थक्का बन बोलते हैं उसको, ज्यादा गाढ़ा हो जाता है वो कोलेस्ट्रॉल, जो नसों के अंदर चर्बी बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल, वो भी जौ का पानी पीने से ठीक होता है। कोलेस्ट्रॉल लेवल होने की वजह से दिल से जुड़ी कई तरह की समस्याएं होती है। जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो हार्ट अटैक आने का खतरा होता है, और ज्यादा बढ़ता तो हो ही जाता है हार्ट अटैक, तो ये ना हो इसलिए जौ का पानी पीना चाहिए। मधुमेह यानी शुगर डायबिटीज के रोगी जो होते हैं, उनके लिए जौ का पानी बहुत फायदेमंद होता है। ये शरीर में शुगर के स्तर को नियंत्रित करने में बहुत सहायक होता है। जो लोगों को डायबिटीज रहता है, आजकल मैंने देखा है कि 20% लोग डायबिटीज के शिकार हो गए हैं, अभी बढ़ता जा रहा है, तो जौ का अगर पानी पिए तो वो लोग ठीक हो सकते हैं। जौ का पानी पीने से शरीर के भीतर मौजूद विषाक्त पदार्थ बाहर निकल जाते हैं, जिससे चेहरे पर भी निखार आता है, साथ ही इम्यून सिस्टम को भी बेहतर बनाए रखता है। यानी अगर जौ का पानी शांता जी भी पिए तो, और सब लोग जिसको नहीं भी है ये सब चीज, तो सबको पीना चाहिए। चेहरे यानी फेस पे भी ग्लो आता है, अच्छा हो जाता है, और कोई बीमारी होती, इम्यून सिस्टम जो होता है, मतलब जैसे कोरोना में लोगों का इम्यून सिस्टम जिसका कम था तो उसको कोरोना पकड़ा, जिसका ज्यादा था इम्यून सिस्टम अच्छा था तो उसको कोई दिक्कत नहीं आई, तो इसको बनाता अच्छा करता है जौ, उस सिस्टम को जौ बेहतर बनाता है, मतलब जैसे उससे और अच्छा कर देता है, इसलिए जौ का पानी जरूर पीना चाहिए। और इसमें विधि भी बता दी, फायदे भी बता दिए, तो मैं चाहता हूँ कि लोग इसका फायदा उठाए जौ के पानी का।
0: राजेंद्र जी ने ये संदेश रखे, क्योंकि हमारे विशेषज्ञ लोग और जा करके जो हमारे विषय को खोज करके रखते हैं, तो उसमें जरूर ऐसा बनाया जाता है ये कार्यक्रम, जो अनेकों देशों में सुना भी जाता है और जो उसमें कुछ संदेश होता है, और ये संदेश के माध्यम से हम सब भी अपने जीवन में कुछ प्रभाव ला सकते हैं। और जैसे कि राजेंद्र जी ने जो अभी कहे, तो जौ कहाँ पर और कैसे मिलता है राजेंद्र जी, या हॉलैंड में हम सब ये इंडियन शॉप आदि में ये जौ मिल जाता है? बबली जी जरा आप बताइए, क्योंकि आप हॉलैंड वासी हो, आप स्वप्न विज्ञान का और कार्यक्रम बनाते हो, और जरूर आपको कुछ न कुछ तो जरूर होगा कि कहाँ पर जौ मिल सकता है।
2: जरूर, हॉलैंड में सब जगह जौ आजकल मिलता है, तुर्की दुकान में चले जाओ वहाँ पर भी है, इंडियन दुकान में भी है,
0: खुला भी ले सकते हो और पैकेट में भी ले सकते हो। और हम जब जाए और कैसे पहचानेंगे कैसे जानेंगे कि जौ क्या है? क्योंकि राजेंद्र जी, जौ का पहचान के बारे में हम सबको और थोड़ा सा और सुनाइए।
1: जैसे कि जौ की पहचान होती है, जैसे गेहूं होता है, गेहूं एकदम साफ होता है और जौ खुरदुरा होता है। गेहूं का जो कलर होता है वो गेहूं या रंग होता है, और जौ का कलर जो होता है वो हल्का सा भुरभुरा रहता है। तो जो दुकान में बेचने वाला है, सबसे अच्छा तो ये है कि उसको बोलो कि जौ दे दे, तो वो जो बेचता है उसको तो पता ही होता है। लेकिन जो लोग जानते हैं, जैसे भारत के लोग हैं, बबली जी सब जानती है, तो उनके माध्यम से भी लोग समझ सकते हैं कि जौ कैसा है। जब आप जाएंगे इस बार तो बबली जी को लेके जाना और वो दिला देंगे अगली बार आपको, स्वयं पता हो जाएगा। लेकिन जो सुनने वाले लोग हैं वो जो जानते हैं वो तो ले लेंगे, लेकिन जो नहीं जानते वो दुकान वाले को पूछेंगे कि हमें भाई 1 किलो जौ दे दो और 1 कटोरी जौ को भिगा के 4 कटोरी पानी डाल के 4 घंटे पहले भिगाया, इसके बाद 45 मिनट उबाला, 1 बोतल पानी डाल के फिर उस बोतल को दिन में 4 बार पिया, इस प्रकार से इसका सदुपयोग कर सकते हैं।
0: राजेंद्र जी, जरूर आप जैसे कि संदेश में रखते हैं कि अब जाइए दुकान में और कह दो कि जौ दे दो मुझे, तो दुकानदार कहेंगे कि जौ क्या होता है? क्योंकि ऐसा मेरा साथ हुआ एक बार ना शांता जी। अच्छा? ऐसा हुआ कुछ 20 साल पहले, मैं एक बार किसी ने हमें कहा जाइए और पनीर ले आना, तो हमने गया पनीर की खोज में, और पनीर खोजते खोजते और एक दुकान से दूसरे दुकान, दूसरे दुकान से तीसरे दुकान, और मैं और हर बार जहाँ जहाँ मैंने गया और पूछ रहा था कि पनीर मिलेगा, तो वो हमसे पूछ रहे वो क्या है, कैसा चीज़ है। तो बहुत खोजने के बाद एक पहले एक सूरीनामी दुकान था और वहाँ पर गया, तो वो हमें और प्रश्न किया हमसे कि क्योंकि वो सूरीनाम का था और पनीर शब्द शायद उस समय 20 साल पहले तो यहाँ उतना नहीं प्रयोग होता था, तो हमें फिर भी वहाँ पर जा कर के बड़ा मुश्किल से पूरा हॉलंत मैंने छान माला और तभी जा कर के और प्राप्त किया। तो ऐसा है कि यहाँ भी हम दुकान में पहुँच जाएंगे और कहेंगे कि हमें जौ दे दो, तो शायद वही हाल ना हो जाए शांता जी।
3: जो नवरात्र में जो हम उगाते हैं माता के लिए, वो है, वो जौ है।
0: राजेंद्र जी, जैसे कि शांता जी ने ये संदेश रखे कि जौ क्या है, और बिल्कुल सही उन्होंने कहा कि जौ जो नवरात्रि हमारे आते हैं ना, नवरात्रि जब आता है तो हम खेतरी करते हैं और उसी से और उसी को जौ कहा जाता है। हम न्यूज़ और कमर्शियल की ओर बढ़ेंगे, और न्यूज़ और कमर्शियल के बाद हम सब फिर आपके साथ जुड़ जाएंगे।